ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की तिथि 12, तदनुसार 2 जून सन 2026 ईस्वी। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:48 हो चुके हैं। आरंभ होती है आज की हमारी पहली सभा।

0: हम अक्सर जप और जाप की चर्चा किया करते हैं, लेकिन इन दोनों शब्दों में मौलिक अंतर है। जप एक व्यक्तिगत क्रिया भाव है, लेकिन जाप एक सार्वभौमिक प्रक्रिया का सूत्र है जो प्रायः समूह में या फिर स्वयंभू रूपक से संपन्न होता है। यह आवश्यक नहीं है कि जप करते समय किसी फल की इच्छा मन में रहे, लेकिन जाप जब भी किया जाता है वो फल की अभिलाषा से ही किया जाता है। ईश्वर की जो वाणी है भगवद गीता में, उसके अनुसार जाप एक उचित प्रक्रिया नहीं है, लेकिन ये अव्यवहारिक भी नहीं है। जप कल्याण के भाव से होता है, जबकि जाप में कहीं नहीं कहीं स्वार्थ छिपा होता है। ये स्वार्थ कितना ही श्रेष्ठ और पवित्र क्यों न हो, स्वार्थ तो बस स्वार्थ है। सकारात्मक स्वार्थ कभी कभी ईश्वर से भी मिला देता है, इसीलिए साधना से उपलब्धियां हासिल होती हैं। सकारात्मक स्वार्थ का तात्पर्य हितबद्ध साधना से लगाया जा सकता है। ये ठीक है कि निस्वार्थ प्रेम सदैव भक्ति का द्वार खोलता है, लेकिन यदि हम मोक्ष की चाहत रखते हैं तो वो भी एक स्वार्थ ही है। जप साधना का एक विनियोग है, जप भक्ति का सूत्र है, लेकिन जाप इससे बिल्कुल अलग है। स्मरण, ध्यान और नाम का उच्चारण ये जप के विशेष अंग हैं। इसमें सबसे सरल होता है नाम का जप करना। नाम की महिमा शास्त्रों, पुराणों और स्मृतियों में व्यक्त हुई है। अनेक मुनियों ने नाम के जप से परम पद पाया। देवर्षि नारद से बढ़कर इसका मर्म कौन जान सकता है। और वाल्मीकि की बात करें तो उनके बारे में जो दंत कथाएं प्रचलित हैं हम सब ने सुनी है। पहले एक डाकू जिसने बाद में अपने हिसाब से मरा मरा का जाप करके उल्टे में राम राम अभिव्यक्त हुआ और वो एक ज्ञानी व्यक्ति बना। सच्चे भाव सहित नाम जप का स्वतः अभीष्ट फल देने का महत्व होता है। संसार के जितने भी भय हैं, ताप हैं, कष्ट हैं, इससे दूर होते हैं। ये अखंड यज्ञ के समान प्रभावी होता है। इस समय कलिकाल चल रहा है तो जप एक सर्वोत्तम उपाय है, लेकिन एक बात और भी है, आचरण धर्मानुकूल हो और शरीर शुद्ध रहे। नाम जप से पापों का नाश होता है, लेकिन ये तभी होगा जब अंतःकरण में प्रायश्चित का भाव विद्यमान रहे। प्रभु पुकारने से दौड़े चले आते हैं, लेकिन इसमें भाव प्रधान है। द्रौपदी ने जब पुकारा प्रभु उल्टे पांव आए, उन्होंने उनकी सहायता की, लेकिन वहां भाव था, समर्पण था कि अब आपके सिवा हमारा कोई नहीं, हमारे पर जो कष्ट और संकट आया है इससे आप ही उबार सकते हैं। इस तरह का भाव तभी जप का लाभ होता है। सांसारिक चाह पूरी होना कोई कठिन काम नहीं है, यह अपने कौशल और श्रम से संपन्न हो सकता है, लेकिन जहां अलौकिक संपन्नता की बात आती है वहां नाम जप एक शक्ति का प्रवाह बनती है। इसीलिए नाम जप को लौकिक और पारलौकिक दोनों आयाम दिए जाते हैं। अपनी अंतः प्रेरणा को स्थिर करके नाम जप योग साधना द्वारा कोई भी साधारण मनुष्य जीवन में अभावों को दूर कर सकता है, खालीपन को भर सकता है।
1: अभी आप चिंतन सुन रहे थे, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। कृषि चर्चा के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है

0: शंकर कुमार चौधरी की वार्ता, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना।
1: शंकर कुमार चौधरी से सुनल जाए। स्नेही किसान श्रोता भाई बहन लोकन, हमरा लोकन खेती जो करैत छी तो ताहि में पटौनीक बड़ बेसी आवश्यकता अछि, जकरा ध्यान में रखैत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाओल जा रहल अछि। ई योजना केंद्र प्रायोजित योजना अछि, जकरा अंग्रेजी में PMKSY सेहो कहैत छी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के मुख्य उद्देश्य ई अछि जे स्नेही किसान श्रोता भाई बहिन लोकन के कृषि के लेल सब खेत में पानि उपलब्ध कराओल जाएन, जाहि सँ खेत में पटौनी के लेल पानि सहजता से भेट सके, संगे जल संरक्षण पर सेहो ध्यान देल जाए। खेती योग्य जे क्षेत्र अछि तकर विस्तार भ सके, खेत में कृषि कार्य हेतु पानिक व्यवहार में दक्षता आबे, सुधार हुए, स्थायी जल संरक्षण के व्यवस्था कैल जाए इत्यादि। स्नेही किसान श्रोता भाई बहन लोकन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लाभ उठेबाक लेल हमरा लोकन के किछ शर्त अछि जकरा पूरा करय पड़ैत अछि। जेना एकर कार्यालय के वेबसाइट पर जाकर आवेदन करय पड़ैत अछि, आवेदन ऑनलाइन कैल जाइत अछि। एहि योजना सँ लाभ स्वयं सहायता समूह सेहो उठा सकैत छथि। एकर संगे हमरा लोकनि के एकर जे अन्यान काज अछि ताहू पर ध्यान देबाक चाही। स्नेही किसान श्रोता भाई बहिन लोकनि, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सँ लाभ उठेबाक लेल हमरा लोकनि के पात्रता में इहो अछि जे जाहि गाम मे ई लाभ लेबऽ चाहैत छी ओतऽ के निवासी होयबाक चाही, भूमि अपन होयबाक चाही, अथवा लीज पर भूमि लऽ कऽ सेहो लाभ उठा सकैत छी। बैंक में खाता होयबाक चाही, आधार कार्ड होयबाक चाही, मोबाइल नंबर होयबाक चाही इत्यादि। आवेदन ऑनलाइन कैल जाइत अछि। एहि योजना अंतर्गत पंजीयन करेबाक चाही जे अनिवार्य अछि। एहि योजना अंतर्गत पटौनीक उपकरण किनबाक लेल 80-90% धरि अनुदान सेहो देल जाइत अछि, जकर 75% केंद्र सरकार ओ 25% राज्य सरकार राशि दैत अछि। एकर लाभ किसान लोकनिक संग संग ट्रस्ट, सहकारी समिति, किसान उत्पादक समितिक सदस्य लोकनि के सेहो भेट सकैत छनि। हमरा लोकनि के इहो ध्यान देबाक चाही जे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सँ लाभ उठेबाक लेल पटौनीक जे उपकरण होइत अछि ओहि लेल जे भेटैत अछि राशि तकर हमरा लोकनि के ओहिमे उपयोग करबाक चाही, ई नहि जे अन्यान काज में उपयोग कयलहुँ। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत पानि के बचत के ध्यान रखैत पटौनी के जे विधि अछि ताहि पर जोर देल गेल अछि, जेना स्प्रिंकलर विधि, सूक्ष्म सिंचाई विधि, नाली विधि, बोर्डर विधि, फब्बारा विधि इत्यादि। ई सब पटौनीक आधुनिक विधि अछि। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत जे हमरा लोकनि के आर्थिक सहायता देल जाइत अछि तकर लाभ उठाबी आ अपन फसलक उपजा नीक जकाँ करी। एहिक संग आब आजुक कृषि चर्चा सम्पन्न भेल।
0: अभी आप कृषि चर्चा सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। सुबह के 6 बजने को हैं अब समाचार होंगे।

0: अभी आप कृषि चर्चा सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। सुबह के 6 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध हैं। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए 2 उच्चस्तरीय समितियों का गठन किया है। हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुचेरी में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेल उद्योग के राज्यस्तरीय समन्वयक ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। ईरान ने चेतावनी दी है कि लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल के हमलों से अमेरिका के साथ संघर्ष विराम पर असर पड़ सकता है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाकों में हमले का आदेश दिया था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने कहा कि अमेरिका के साथ हुए समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम शामिल है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। और वहीं 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। इनमें ओलंपियन बलराज पवार, एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में भी आज गरज के साथ

0: तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा के कार्यक्रम में डॉक्टर जय शिव मिश्रा की भेंटवार्ता, जटिल चर्म रोग और होम्योपैथ भेंट करता है संजय कुमार।
2: आज की स्वास्थ्य चर्चा में हम चर्चा करेंगे जटिल चर्म रोगों और उसके होम्योपैथ निदान के विषय में। डॉक्टर जय शिव मिश्रा जी, आकाशवाणी स्टूडियो में आपका स्वागत, नमस्कार।
3: जी नमस्कार।
2: जटिल चर्म रोग की जब हम चर्चा करते हैं तो ये रोग हैं क्या, ये बताइए।
3: जी, असल में पहले तो रोग के बारे में थोड़ा सा समझना होगा। असल में होता क्या है कि हम लोग जिस रोगों के बारे में जानते हैं सामान्यतया, उसमें क्या होता है, कुछ कैरेक्टर्स, कुछ सिम्टम को, दो चार सिम्टम को एक साथ रख के कुछ नाम दे देते हैं, उसको नोमेनक्लेचर ऑफ डिजीज बोलते हैं हम लोग।
2: जी।
3: वास्तव में ऐसा है नहीं। होता क्या है कि जब आपके बॉडी के सिस्टम को जब किसी मॉर्बिड इन्फ्लुएंस की वजह से जब डीअरेंजमेंट होने लगता है तो मॉर्बिड सेंसेशन आने लगता है आपके बॉडी में,
2: मतलब चीजें अव्यवस्थित हो जाती है।
3: जी बिल्कुल। तो क्या होता है कि वो डीअरेंज होने लगता है तो आपको गलत गलत सिम्टम आने लगता है। बेसिक स्टार्ट वहीं से हो जाता है, फिर से उसका जो आप अभी डिजीज की चर्चा कर रहे हैं वो सब तो उसका इंड प्रोडक्ट होता है।
2: अच्छा,
3: वो दिखने लगता है बाद में, लेकिन प्रॉब्लम पहले से शुरू हो जाता है।
2: यानी एक्जिमा, सोराइसिस या फिर मस्सा या सफेद दाग, ये सारी चर्चा जो हम
3: इन प्रोडक्ट पे आता है।
2: अच्छा अच्छा।
3: लेकिन धीरे धीरे आप उसको इग्नोर करें या इलाज भी करते हैं तो प्रॉपर वे में अगर ना हुआ तो ये सब इंड प्रोडक्ट आना शुरू हो जाता है।
2: होम्योपैथ लक्षणों पर आधारित चिकित्सा पद्धति है।
3: बिल्कुल।
2: अगर हम एक्जिमा की बात करें तो फिर क्या देखते हैं आप एक्जिमा में?
3: अब एक्जिमा का भी बहुत सारा टाइप है। हम लोगों को ये देखना होता है कि वो एग्जैक्ट किस टाइप पे है और कहाँ जाके ये ठीक होने वाला है, क्यूरेबल आएगा या फिर बहुत देरी से ठीक होगा। आप अगर किसी को प्रॉपर वे में दवा दे रहे हैं और वो भी फॉलो कर रहा है और दवा सही है तो ठीक हो जाएगा बिल्कुल।
2: यानी अगर चिकित्सा एक बार होम्योपैथ में शुरू कर दी गई है तो उसे बीच पे छोड़ना अच्छा नहीं है।
3: नहीं है, नहीं
2: है ना।
3: जी।
2: ये एक्जिमा या सोराइसिस ये जो है ऑटो इम्यून डिजीज की श्रेणी में रखी जाती है।
3: जी,
2: ये बीमारियाँ, इसमें कहा जाता है कि कई बार जो है लक्षण समाप्त हो जाते हैं, सब चीज़ अच्छा होने लगता है, फिर से दोबारा से।
3: अब दो प्रॉब्लम है, अगर आपने गलत मेडिसिन का सिलेक्शन किया
2: जी,
3: और तो क्या होता है कि वो एक्जिमा ठीक ना हुआ या सोराइसिस ठीक ना हुआ, वो दब गया है।
2: कैसे मानेंगे कि ये एक्जिमा है और ये सोराइसिस है?
3: बिल्कुल, एक्जिमा दोनों का कैरेक्टर बिल्कुल अलग अलग है। अगर आपको एक्जिमा देखना है तो कई प्रकार का होता है, जिसमें तीन चार प्रोमिनेंट जो जनरली लोग समझते हैं, जैसे उसमें कहीं इरप्शन हो जाना, फिर से उसमें क्रस्ट पैदा हो जाना, फिर क्रस्टी वहां से एलिवेट परत पर दर परत पैदा हो जाता है और वो एलिवेट उभार टाइप का बनने लगता है और वो खुजलाता भी है, नोच देने पे वो लहरता भी है थोड़ा सा, तो ये एक्जिमा की श्रेणी में है। अब सोरियासिस है कि पूरा बॉडी एक समान जलन के साथ एक इरप्शन आना शुरू होता है, शुरू शुरू में वो ठीक भी हो जाता है।
2: अच्छा।
3: लेकिन धीरे धीरे धीरे वो भी फैलने लगता है, क्रस्ट उसमें भी आता है, लाल होता है, वो दर्द भी करता है और दर्द ना भी कर सकता है, इचिंग भी कर सकता है, इचिंग ना भी कर सकता है, इसीलिए हम आपको होता है
2: खुजलाहट ऐसी होती है डॉक्टर साहब कि पूरी परत चमड़े की उधर
3: बिल्कुल ब्लड आ जाता है उसमें से खुजलाने में,
2: नारियल की भूसी के समान जो है हमने छिलका।
3: बिल्कुल। शुरुआती दौर में क्या होता है कि नारियल की भूसी के समान वो आता है, अगर प्रॉपर वे में उसका ट्रीटमेंट ना किया गया तो वो भी क्रस्टी हो जाता है बाद में।
2: तो इस तरह के मरीज जो एक्जिमा, सोरायसिस या फिर मस्सा या सफ़ेद दाग, इस तरह के जो मरीज होते हैं उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए?
3: देखिए, सफ़ेद दाग और मस्सा दोनों दो चीज़ हैं। सफ़ेद दाग जो है वो स्किन का डिस्कलरेशन की वजह से होता है, वो मेलानिन का फॉर्मेशन आपके स्किन में होता है,
2: सही बात।
3: और जब मेलानिन का फॉर्मेशन किसी वजह से कम हो जाए, ये साइकोटिक लेवल का प्रॉब्लम है, तो वो तब उसमें ये प्रॉब्लम होता है, दोनों साइकोटिक लेवल का प्रॉब्लम है।
2: अच्छा।
3: अब अगर किसी को मस्सा होता है तो उसका भी टाइप अलग अलग है, किसी को स्मूथ होता है, किसी को कैलीफ्लावर लाइक होता है, आप दवा देते हैं तो किसी किसी का साफ भी हो जाता है जल्दी से, लेकिन सबका मस्सा ठीक हो सकता है अगर एक्वायर्ड है, मतलब बाद में आया हो तब। अगर किसी को कंजनाइटल है तो हम लोग ठीक नहीं कर सकते जल्दी से।
2: तो जो लोग इस तरह के चर्म रोग से पीड़ित हैं उनके खान पान, रहन सहन के बारे में क्या कहेंगे?
3: जी, इसमें से दो चीजें ध्यान उनको रखनी चाहिए। जैसे अगर किसी को सामान्य चर्म रोग है तो जैसे अंडा है, और जैसे वेजिटेबल में वो बैगन है, इससे थोड़ा सा खुजलाहट बढ़ जाता है।
2: अच्छा।
3: तो हम लोग वो मना करते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए।

0: सामान्यतया
1: मांस मछली,
0: मछली में अगर किसी को सोरायसिस है तो मछली बिल्कुल नहीं खाना चाहिए।
1: तो कुल मिलाकर बात इतनी कि अगर किसी को भी जटिल चर्म रोग है और होम्योपैथ की चिकित्सा वो ले रहे हैं या लेना चाहते हैं तो निदान वहाँ संभव है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन पूरे धैर्य के साथ दवाएं ले, परहेज से रहें। डॉक्टर जयशिव मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: जटिल चर्म रोग और होम्योपैथ, अभी आप डॉक्टर जयशिव मिश्रा की ये भेंटवार्ता सुन रहे थे। भेंट करता थे संजय कुमार, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। स्वास्थ्य चर्चा के कार्यक्रम के बाद आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। पहले संवेद स्वर में ये देश वंदना।

संवेद स्वर में अभी आप देश वंदना सुन रहे थे। आइए अब सुनते हैं ये भक्ति वंदना नितिन मुकेश के स्वर में।

ये स्वर था हरिहरन का। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में ये राम भजन।

हरिहरन के गाए इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। आइए अब प्रस्तुत है रामचरित मानस गान।

पक्षीराज गरुड़ को काकभुशुंडी अपने एक पूर्व जन्म में शाप मुक्ति की कथा सुना रहे हैं। हजार योनियों में जन्म लेकर उन्हें भटकना तो पड़ा, किंतु कृपालु शंकर ने उस दुस्सह दुख से मुक्त कर दिया जो जन्म लेने और मृत्यु को प्राप्त होने में होता है। उन्हें ये भी वरदान मिला कि किसी योनि में भी जन्म लेकर उनका ज्ञान लुप्त नहीं होगा, किंतु साथ ही चेतावनी भी मिली कि वे फिर कभी किसी द्विज का अपमान न करें, क्योंकि विप्रद्रोह उसे भी भस्म कर देता है जिसे इंद्र का वज्र, स्वयं शंभु का त्रिशूल या हरि का चक्र भी नहीं मार सकते।

अभी आप रामचरित मानस गान सुन रहे थे। गायक कलाकार थे ए हरिहरन और सुरेश वाडेकर। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। श्रोताओं, आइए अब जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों के विषय में।

अभी से थोड़ी देर बाद यानी 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। इस सभा में सुबह 10 फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा। बज्जी का कार्यक्रम अंगना आप सुनेंगे सुबह 10:30 पर दिन के 11:00 उप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा। दिन के 11:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT और दिन के 12:00 फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो जिंदगी। दिन के 1:10 पर हम आपको सुनवाएंगे देशभक्ति गीत। दिन के 1:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुनः हम आपको सुनवाएंगे दोपहर 2:30 पर। भज्जी का लोक गीतों का कार्यक्रम होगा दोपहर 3:00 और संध्या 5:00 आप सुनेंगे युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम युवानी के अंतर्गत कार्यक्रम तरुण मिथिला। इस कार्यक्रम में संध्या 5:40 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा। संध्या 6:10 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। इसे फिर से सुन लें, संध्या 6:10 पर आप सुनेंगे विद्यापति गीत। संध्या 6:30 पर आप सुनेंगे गामघर कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम नव ऊर्जा। खेती गृहस्थी कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 7:00 और संध्या 7:52 पर हम आपको एक बार फिर से फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनवाएंगे। मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार का प्रसारण होगा रात्रि 8:15 पर। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे विधेता। इसे फिर से सुन लें, रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे विविधा कार्यक्रम का प्रसारण। देववाणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा रात्रि 9:45 पर और रात्रि 10:00 आप एक फनकार का कार्यक्रम सुनेंगे। रात्रि 10:30 पर एक बार फिर से आप फिल्म संगीत का आनंद लेंगे।

अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर रहे थे। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231

0: 1.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर 6 AM
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग इत्येषश्च ह्यः नवदिल्ल्यां द्विपक्षीयोपवेशनं कृतवन्तौ। उभयोः मध्ये ऐतिहासिक सभ्यतागत संबंधान इतोपि सुदृढ़ीकर्तुं वार्ता अभवत्। संवादे म्यांमार भारत देशयोः मिथः सुरक्षां संपर्कं च समेत्य देशद्वयोः संबंधानां समेपि पक्षाः चर्चिताः। उपवेशनस्यानन्तरं विदेश सचिवः विक्रम मिसरी अवोचत् यत् देशद्वयेन विदेश व्यवहार विकास शिक्षा स्वास्थ्यादि विषयेषु कार्याचरणाय साहमत्यं प्रकटितम्।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
3: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
1: राष्ट्रपतेः द्रौपदी मुर्मुः अवदत् यत् भारतस्य नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट महासागरादि नीतिषु म्यांमार देशः महत्वपूर्णः सहभागी अस्ति। ह्यः राष्ट्रपति भवने म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग वर्यस्य स्वागतं कुर्वन्ति राष्ट्रपतेः मुर्मुः अवदत् यत् उभयोः देशयोः मध्ये पुरातनाः सम्बन्धाः सन्ति। राष्ट्रपतिः अवदत् यत् म्यांमार देशः भारतस्य दक्षिण पूर्व एशिया देशस्य प्रवेशद्वारः अस्ति, अपि च एकमात्रः आसियान देशः अस्ति यस्य भूसीमा भारतेन सह संलग्नास्ति। भारत ओमान व्यापकार्थिक सहभागिता सन्धिः CEPA इति ह्यः क्रियान्वितः अभवत्। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अवोचत् यत् अयं सन्धिः देशद्वयोः आर्थिक रणनीतिक संबंधान् दृढ़यिष्यति। वार्ताहरान् संबोधयन् श्री गोयलः अवोचत् यत् अयं सन्धिः नूतनापणम् उद्घाटयिष्यति। अनेन निर्याते वृद्धिः भविष्यति, निवेशः अपि वृद्धिं यास्यति। व्यापकार्थिक सहभागिता सन्धेः अन्तर्गतं भारतीय निर्यातकेभ्यः ओमाने उत्पाद समूहेषु विपणौ प्रतिशत 98 मिता शुल्क मुक्त कार्यानुमतिः भविष्यति। श्रीगोयलेन उक्तं यत् अनेन आजीविका संवर्धनाय विद्यार्थिभ्यः श्रमिकेभ्यः महिलाभ्यः कृषकेभ्यः मत्स्यजीविभ्यः सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमेभ्यः च महत्वपूर्णरूपेण लाभो भविष्यति।
4: I am confident that this comprehensive agreement
5: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
1: भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः रक्षा मंत्रिणोः द्वितीय संवादोपवेशनम् ह्यः नवदिल्ल्याम् अभवत्। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अथ च ऑस्ट्रेलिया देशस्य उपप्रधानमंत्री रक्षामंत्रीश्च रिचर्ड माल्सः उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवन्तौ। श्री सिंहेन प्रोक्तं यत् उपवेशनावधौ भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोर्मध्ये सुरक्षा सम्बन्धः सुदृढः अभवत्। श्री माल्स अवादीत यत् ऑस्ट्रेलिया भारत देशौ रक्षा सहभागितां सुदृढः अकुरुताम्। देशद्वयं सामुद्रिक क्षेत्रे मिलित्वा कार्यं करिष्यतः। वार्तायां द्विपक्षीय रक्षा सहयोग विषये प्रगतिः समीक्षिता, यया सहभागितायाः नूतन मार्गस्य अन्वेषणं भविष्यति। भाजपेति दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षः नितिन नवीनः ह्यः नवदिल्ल्यां दलस्य वरिष्ठैः पदाधिकारिभिः कार्यकर्तृभिः च सह उपवेशनं कृतवान्। प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् दलस्य सांसदः प्रवक्ता च डॉक्टर संवित पात्रावर्यः नरेन्द्र मोदी प्रशासनस्य 12 वर्षाणां सेवायाः विषये, संघटनात्मक विस्तारस्य विषये तथा च समाजस्य विभिन्नेषु वर्गेषु दलस्य

0: प्रसारस्य विषये विवरणानि विनिमयीकृतवान् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की है। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्र

0: शीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की है। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध हैं। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रैंडन लिंच कर रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। उन्होंने बताया कि भारत को ओमान की 98% टैरिफ लाइनों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी, जो ओमान को होने वाले भारत के 99% से अधिक निर्यात को कवर करती है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले CBI ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार अनिल धीरू भाई अंबानी के विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए 2 उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है। इस हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुचेरी में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेल उद्योग के राज्य स्तरीय समन्वयक ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किए। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। इनमें ओलंपियन बलराज पंवार, एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता अरविंदर सिंह और जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला। नमस्कार मिथिला सुनिहाल समस्त श्रोतागण के आजुक अइ अंक में हम प्रवीण हमरा सने प्रतिभा जी अहाँ समस्त श्रोता के स्वागत नमस्कार करे छी।
1: नमस्कार प्रवीण जी, साथ ही समस्त श्रोताओं को प्रतिभा प्रीति का स्नेह भरा नमस्कार। और प्रवीण जी, हम सभी हर दिन अपने इस कार्यक्रम नमस्कार मिथिला की शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ
0: जी।
1: तो आज का सुविचार है, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं, नेल्सन मंडेला।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और एक सुविचार गांधी जी के हम कह दी, शिक्षा से मेरा मतलब मनुष्य के नैतिक मूल्यों से है। उनका सीधा कहना है जे शिक्षित बने और शिक्षा प्राप्त को लेना है मात्र लक्ष्य नहीं हुई है मनुष्य के, शिक्षित भ के अहाँ के नैतिक मूल्य केहन है, ओ विवेक केहन है, ओहि पर बहुत किछ जीवन निर्भर करते है। तो दुनू के तात्पर्य एक अहू वह बात हमू वह बात जे मूल भाव में शिक्षा और शिक्षित भेनाए के सही की अर्थ हो जान लेना शिक्षा शिक्षित भ गए हो।
1: बिल्कुल, देखिए शिक्षा प्राप्त करना मतलब आप बहुत सारे डिग्री बहुत सारे आप सर्टिफिकेट हासिल कर लिए हैं ये नहीं होता है, उसका मतलब ये हुआ कि आपकी नैतिकता में क्या परिवर्तन हुए हैं, आप नैतिक मूल्यों को कितना आगे तक ले गए हैं।
0: बहुत सुंदर।
1: तो ये है असली शिक्षा का असल रूप से महत्व है
0: जी।
1: और जो इस तरह के व्यक्तित्व हुए हैं वो इतिहास में अमर हो जाते हैं
0: जी।
1: बहुत सारे
0: जी।
1: हमारे जी। देश के महान व्यक्ति
0: जी। शिक्षित होना है मतलब सत्य असत्य अहाँ के ज्ञान अछि कि नहीं, विवेक अविवेक के अहाँ पास में समझ है कि नहीं, और आपसी सामंजस्य जे मनुष्य के एकटा सही अनुभव होइ छै तकर ज्ञान अछि। जीव के प्रति अहाँ के प्रयास में केहन प्रयास अछि, के अपने ला अहाँ जीवै छी कि शिक्षित भेनाइ के मूल कर्तव्य जे छै जे दोसर जे पिछड़ल अछि छूटल अछि दबकल अछि ओकरा आगू लऽ कऽ ओकरो शिक्षित केनाइ यानी मूल धारा में समाहित केनाइ शिक्षित भेनाइ के मूल कर्तव्य छै। राष्ट्र के प्रति सद्भावना रखनाइ, राष्ट्र के प्रति हमेशा विवेक रखनाइ।
1: बिल्कुल, तो शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है ये हम इन सुविचार के माध्यम से जाने करेंगे आगे बातचीत। जानते हैं आज के दिन का इतिहास क्यों है आज का दिन अर्थात 2 जून इतिहास के आईने में खास। तो आज ही के दिन अर्थात 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों को विभाजित करके तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बनाया गया। 2 जून 1974 को ब्रिटिश भारत के तत्काल वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारतीय विभाजन और सत्ता के हस्तांतरण की घोषणा भी की थी। 2 जून 1966 को अमेरिका का पहला अंतरिक्ष यान पहली बार जो सर्वियर 1 ने चंद्रमा की सतह पर अपनी सॉफ्ट लैंडिंग की थी। 2 जून 1946 को इटली में जनमत संग्रह के बाद राजशाही समाप्त हुई और गणराज्य की स्थापना हुई। भारतीय सिनेमा के दिग्गज फिल्म निर्माता निर्देशक और पटकथा लेखक मणिरत्नम का जन्म 2 जून 1956 को हुआ था।
0: इछल इतिहास के किछ अंश आप कार्यक्रम के आगू बढ़े छी और सुने छी एकटा सुंदरतन मैथिली गीत।
2: निज

0: आबै छी नित नैहर मिथिला नेह जनावा हे जननी। एखन सुमधुर ई मैथिली गीत सुनलहुँ, आशा करै छी नीक लागल हैत। प्रतिभा जी
1: अरविंद कुमार झा का इन्हें धन्यवाद देते हैं
0: जी।
1: और नेह अर्थात कि स्नेह की बात इन्होंने की है, तो माँ भगवती से माँ देवी से हम सभी यही प्रार्थना करते हैं कि आपका स्नेह आपका प्रेम हमारे ऊपर सतत बने रहे, हमेशा आशीर्वाद अपना बनाए रखे
0: और सब प्रसन्न रहे, यह आशा करते रहे छी। जे देवी महाराज हमरा सके मूल भाव में गप कने छलहुँ हैं शिक्षा पर, आई गपो सब हम शिक्षे पर करब, खास कर हमर सबके जननी माता यानी महिला बच्ची जे छथि हुनक शिक्षा दीक्षा के की असर समाज पर पड़ै छै, पड़ि रहल छै आ पड़ैत एलैए, एहि विषय पर हमसब गप सप करब। ओहिके बाद गप सप करब इहो जे आधुनिक युगमे जे मशीन तंत्र आबि गेल अछि, विज्ञान एक से एक चमत्कार चीज सामने में आनि रहल अछि, ओ जे उपकरण अछि ओ हमरा सबके हाथ से लऽ कऽ घर में तक में आबि गेल अछि, ओहि उपकरण के समुचित उपयोग नेना भुटका केना करे, ओहि में अभिभावक गण के की भूमिका, की बेसी उपयोग केला से ओकर मस्तिष्क पर कोनो एहन असर पड़ै छै या आगू आबै वाला दिन में ओकरा असहज करै छै, एहि सब विषय पर हम सब गप करब।
1: देखिए विज्ञान का युग है, विज्ञान के आविष्कार से जो हमारे जीवन की जो शुरुआत होती है वहाँ से लेकर और जब हम रात में सोने के लिए जाते हैं तब तक जो दैनिक जीवन में जितनी भी वस्तुओं का हम सभी उपयोग करते हैं, बिजली के विभिन्न तरह के उपकरण को ले लीजिए, मोबाइल फ़ोन की आप बात करते हैं, टेलीविज़न की बात करते हैं या फिर हम आकाशवाणी केंद्र में बैठ के अभी बातचीत कर रहे हैं, अपने श्रोताओं के साथ जुड़े हुए हैं, ये सब विज्ञान का ही तो चमत्कार है। तो विज्ञान वरदान है, इसे वरदान ही हम सभी कैसे रहने दें, इसे अभिशाप ना बनाए, इसके पीछे हम सभी को ध्यान देनी होगी कि इसका सदुपयोग हम किस तरह से करें, दुरुपयोग इसके उपकरणों का नहीं करें। मोबाइल फ़ोन की बात की है तो मोबाइल फ़ोन से बहुत कुछ ऐसा है कि हम सभी घर बैठे मिनट में नहीं सेकंडों में ही कर लेते हैं। देखिए ना, कहीं पे कुछ ज़रूरी जो जानकारी भेजनी होती है या फिर मनी ट्रांसफ़र करने होते हैं या बहुत कुछ ऐसा है जो हम सभी सेकंड में मिनट में या हमारे अपने जन परिजन देश विदेश में बैठे हुए रहते हैं तो उनसे हम बातचीत कर लेते हैं, इस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हम जुड़ पाते हैं उनसे। तो विज्ञान का आविष्कार हमारे लिए वरदान है, करेंगे हम सभी बातचीत आगे और भी। अब जानते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को जिसे हालचाल के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे प्रवीण कुमार झा। आइए सुनते हैं प्रवीण से हालचाल।
0: नमस्कार, हालचाल संग हम प्रवीण कुमार। दरभंगा जिला में बनत 11 नव पावर सब स्टेशन, बिजली व्यवस्था होयत सुदृढ़ मजबूत। दरभंगा किलकारी बिहार बाल भवन के सौजन्य से 22 दिवसीय समर कैंप के भव्य उद्घाटन कल भेल। चक चक धूम धूम समर कैंप नाम छल एकर और एमे 1400 बच्चा बच्ची सब पंजीकरण कलेने अछि। ई कैंप कल से लऽ कऽ 22 दिन तक चलत। एमे किलकारी द्वारा आयोजित चक चक धूम धूम समर कैंप के उद्घाटन जिला शिक्षा पदाधिकारी विद्यानंद ठाकुर संगहि ANDC पदाधिकारी पवन कुमार केलाइन, किलकारी के प्रमंडल समन्वयक रवि भूषण मुकुल गुब्बारा उड़ा कर कार्यक्रम के शुभारंभ केलाइन। एहि में

0: बच्चा सबके 22 दिन तक विभिन्न तरहक ओकरा में नैसर्गिक जे गुण छे कला के ओकरा निखारल जाए और नव नव कला ओकरा सिखाएल जाए। ज्ञातव्य हो कि बच्चा सबके एखन गर्मी छुट्टी भ चुकल अछि, तै विद्यालय सब एखन बंद हो चुकल अछि। समर कैंप में बच्चा सब नव नव तकनीक सँ गीत संगीत नाट्य विधा और अन्य अन्य विधा के जानकारी प्राप्त करत। ई समर कैंप सब साल लगैत अछि जे काफी सफल होइत अछि। बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा अधिसूचना देलनि अछि। दरभंगा मधुबनी भागलपुर पूर्णिया गया आजी में विशेष कोर्ट के गठन होयत। मिथिला आ सीमांचल के न्याय व्यवस्था के सशक्त और सुदृढ़ करवाक हेतु ई अहम फैसला भेल अछि। एहि सँ आमजन के न्याय व्यवस्था सुलभ होयत और ससमय होयत। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के मुख्य सतर्कता अधिकारी बनला डॉक्टर मनोज कुमार। मिथिला विश्वविद्यालय में उप परीक्षा नियंत्रक तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा सह राजनीतिक शास्त्र विभागाध्यक्ष सहायक आचार्य डॉक्टर मनोज कुमार सोम दिन विश्वविद्यालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी के पदभार ग्रहण कयलनि। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर दर्शन शास्त्र विभाग में नव नियुक्त विभागाध्यक्ष डॉक्टर शिखर वासनी के स्वागत और निवर्तमान विभागाध्यक्ष डॉक्टर शिवानंद झा की विदाई सम्मान समारोह आयोजन कयल गेल। एहि अवसर पर विश्वविद्यालय के विशेष पदाधिकारी सब उपस्थित सेहो भेलाह। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग में नव अध्यक्ष बनला डॉक्टर रविन्द्र नाथ तिवारी, विभाग में हुनकर स्वागत भेलैन। ई हालचाल एखन आकाशवाणी दरभंगा सँ सुनि रहल छी। जानकी पुनोत्सव के सफल बनेबाक लेल अपन अमूल्य योगदान देबाक लेल सबके सम्मानित कयल गेल। घर घर जानकी जी के पहुँचेनाइ पूजन अभियान के सफल बनेबा में जन जन तक अपन आसंकल्प के देनाइ, एहि अभियान में जे सब भाग लेला हुनका सबके काल्हि मिर्जापुर नवरत्न मंदिर में कामेश्वर सिंह मिथिला संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति सस्निया झा के द्वारा स्वागत और सम्मान देल गेल और कहल गेल कि ई योजना अहाँ सब सफल केलहुँ, माँ जानकी के घरे घरे पहुँचेलहुँ। जेई एडवांस 2026 बिहार के बेटा देश भर में डंका बजेलक। 360 अंक में सँ 303 अंक प्राप्त कर देश भर में प्रथम स्थान ऑनलाइन गया जी के कुमार शुभम। ओ कहला जे सोशल मीडिया सँ दूरी बना कर अपन तैयारी हम केलहुँ। पठन पाठन में हम कोनो सोशल मीडिया के उपयोग नहीं केलहुँ। संगे संगे हम दिवा रात्रि मेहनत केलहुँ, तकर परिणाम सामने में अछि। एहि संग हाल चाल संपन्न भेल। नमस्कार।
1: हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: हालचाल सुन लो और किस मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त कर ली प्रतिभा जी।
4: ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर।

0: बिहार एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी 30 मई से 3 जून 2026 तक के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 48 घंटों तक उत्तर बिहार के जिलों में वर्षा की संभावना बने रहने की संभावना है। उसके बाद मौसम में आमतौर पर शुष्क रहने का अनुमान है। इस दौरान अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 48 घंटों में जिस क्षेत्र में वर्षा होगी हवा की रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। उसके बाद हवा की रफ्तार कम होने की संभावना है। अधिकांश क्षेत्रों में 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 85 से 90 प्रतिशत तथा दोपहर में 35 से 40 प्रतिशत रहने की संभावना है।
1: हाँ, ये मौसम की जानकारी दे लो कार्यक्रम के आगाम बढ़ेत।
0: देखिए मौसम अपने जो कह सकते हैं कि रंग में है, कभी तेज धूप, कभी जो अचानक से बारिश या फिर तूफान इस तरह के झेलने पड़ते हैं। तो मौसम के साथ हम सभी को अपने सेहत का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि इस मौसम में खास करके अभी जो तुरंत सर्दी तुरंत गर्मी का अनुभव हो रहा है, ऐसे में हम सभी कैसे स्वस्थ रहें। इन सब चीज़ों का ध्यान, अपने खान पान, अपने जो घर से हम निकलते हैं तो पानी पी के निकलें या फिर किस तरह से अपने बच्चों की देखभाल, अपने बुजुर्गों की देखभाल ये करनी होगी, इस पर विशेष ही ध्यान देना होता है। प्रवीण जी,
1: जी सती कहै छी। और मौसम के उतार चढ़ाव तो एक प्रकृति के नियम है, गर्मी बरसात ठंडा बहुत तरह झंझवात मौसम देखिए हमरा सबके। लेकिन अई में ध्यान ई राख के छे जे हम कते सतर्क भ क अपन अपना संगे अपन परिवार के और समाज के रखें।
0: और देखिए ना, विज्ञान की बात हम सभी ने की थी तो विज्ञान के ही आविष्कार से या चमत्कार से यह संभव हो पाता है कि हम सभी को हमारे मोबाइल फ़ोन पे भी मैसेज पहुंच जाता है कि अगले 3 घंटे में क्या होना है, कहीं पे तेज़ तूफान आने वाली है, कहीं पे आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। तो ये सब पहले से ही अलर्ट कर दिया जाता है। तो विज्ञान के चमत्कार का बात किए थे तो ये सब है। तो इस हिसाब से हम सभी यदि निकल रहे हैं तो घर से बाहर तो सुरक्षित हो के या ये सोच के निकले कि कहीं रास्ते में परेशान ना हो जाएं।
1: जी, और एक जानकारी विशेष रूप से ग्रामीण स्तर पर जो महिला गण हो या शहरी स्तर के विशेष से ध्यान हुनका ऊपर रहे छन, परिवार के बच्चा के जिम्मेदारी संगे संग अभिभावक के बेसी जिम्मेदारी वह उठा भार उठेने रहे छ। तई नारी शक्ति के और सशक्त बनेबाक हेतु शिक्षा कतेक महत्व रखैत अछि या एखन तक हम सब कतेक आगा बढ़ा सकल ने या वो सब आत्मबल से हमरा सब के आगा बढ़ेलनि, एहि पर किछु गप सब प्रतिभा जी कोली।
0: देखिए सुविचार में आज हम सभी ने जाना कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। तो हम दुनिया को बदलने की बात जो करें तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना होगा, अपने परिवार को बदलनी होगी। तो इसमें शिक्षा खास करके जो हमारे पहले के समय में कुछ साल पहले महिलाओं की शिक्षा पर या बेटियों के पढ़ाई लिखाई पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था। जो गांव में स्कूल है वहां तक पढ़ाई कर ली, अब इसके बाद आगे कहते हैं कि हायर एजुकेशन, इसके लिए बेटियों को दूर भेजना, अकेले जाना आना, वहां रहना, इन सब चीज़ों के लिए माता पिता तैयार नहीं होते थे। लेकिन प्रवीण जी अब समय बदल चुका है, आज की महिलाएँ एकदम कदम से कदम मिलाकर पुरुषों के साथ चल रही हैं, चाहे वो शिक्षा जगत हो, विज्ञान जगत हो, खेल का मैदान हो या फिर जेट फाइटर उड़ाने की ही बात क्यों ना हो। हमारे देश की राष्ट्रपति एक महिला हैं और हमारे देश में बहुत सारे पद पर जो महिला कार्यकर्ता हैं, चाहे राजनेता हो या फिर अभिनेत्री हो, तो हर क्षेत्र में महिलाएँ कहीं भी कम नहीं है और ये सब शिक्षा का ही कह सकते हैं कि परिणाम है।
1: जी, और तैं कहल गेल छे जे शिक्षा शेरनी के दूध होइत अछि, जे पिबैए वह जनै छे जे कतेक आत्मबल हमरा अबैए। तैं सबसे बेसी जरूरी भ जाइ छे घर परिवार में जे अपन जे बच्ची ओकरा शिक्षित भेनाइ केना जरूरी छे और आगा आवा वाला भविष्य केना ओकरा द्वारा तैयार होइ छे,

0: ई बात अहम जानकारी से हेबाक चाहिए हमरा सबके। हम सब चाहे छी जे हमर सबके माय बहिन शिक्षित बेसी से बेसी हुए आगू बढ़े, जे बच्ची सब है वो अपन विकसित और हेबाक लेल और आवा वाला ये जे स्मार्ट दुनिया है तैमे अपन से मने की कहे छे ओकरा सौजन्य से अपन सौजन्य से किछ नव देबाक लेल
1: योगदान
0: योगदान देबाक लेल पढ़ा लिखे और निक करे राष्ट्र के नाम शिखर तक पहुंचावे।
1: देखिए प्रवीण जी, हम सभी ये जानते हैं कि परिवार हो, समाज हो, गांव शहर या फिर देश का ही विकास निश्चित रूप से शिक्षा पर आधारित होती है। जितने अधिक संख्या में व्यक्ति शिक्षित होंगे उतनी ही तेजी से विकास दर बढ़ता है। और शिक्षा की बात की है तो शिक्षा से संस्कार का जन्म होता है, जैसा कि हम सभी ने पहले ही बात की है। और इसके साथ ये भी कहना चाहेंगे कि पुरुष ही शिक्षित नहीं हो, महिलाओं की शिक्षा की बहुत ही आवश्यकता है शिक्षित होने की। एक महिला जब शिक्षित होती है तो केवल स्वयं ही जागरूक और आत्मनिर्भर नहीं बनती बल्कि अपने परिवार और समाज को भी उन्नति की ओर ले जाती है। और शिक्षा हर महिला के लिए आवश्यक है क्योंकि इससे न कि छोटे छोटे कामों के लिए दूसरों पर निर्भरता दूर होती है बल्कि आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। शिक्षित महिलाएं स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता को समझ पाती हैं, पोषण टीकाकरण क्या है, सबसे बड़ी बात की स्वच्छता के महत्व को जान पाती हैं और इससे खुद भी स्वस्थ रहती हैं और अपने बच्चों को अपने परिवार को भी स्वस्थ रख पाती हैं। पढ़ी लिखी माँ जो होती हैं अपने बच्चों को के स्वास्थ्य का तो ध्यान रखती हैं, साथ साथ शिक्षा के महत्व को भी जानती हैं कि बच्चे हमारे कैसे पढ़ें। हमने कहा कि बेटे और बेटियों में कोई फ़र्क नहीं करती हैं, वो आज उनकी बेटियां भी हायर एजुकेशन के लिए बाहर जा रही हैं। अब उनके मन से ये भ्रम दूर हो गया है कि बेटी है तो घर में रहेगी, चूल्हा चौका ही देखेगी, चूल्हा चौका देखना होता है। लेकिन ये कहीं नहीं है लिखा हुआ कि बेटी सिर्फ चूल्हे चौके को ही संभालेगी, बेटी भी आज आगे बढ़ रही है और दिनानुदिन आगे बढ़ती जाएंगी।
0: सत्य कहे छी और हमरा सबके ए बात के लेल विशेषतः अपना मन में आनंद होइ है जे और सबके होइ छन जे बेटी कल माँ बनै है, वो हमर देश के मान सम्मान शिक्षित भक आगू बढ़वै है, एक लेल खुशी है। लेकिन प्रश्न चिन्ह एखनो अछि जे दूर देहात गांव घर में जे एखनो बहुत बच्ची शिक्षा से वंचित रह जात अछि ओकरा लेल कनिक दुख अछि। ओना तब सरकार आप घरे घर पहुँच कर शिक्षा के अलग जगह चुकल अछि और आवा वाला जे दिन हम देखे छे ओ खुशहाली के देखे छे। बालक बालिका सब सब शिक्षा के प्रति से अपन समय दे छथिन और शिक्षा ग्रहण करे छथि, शिक्षा के मूल भाव से ओ जुड़ल छथि। तै में बालिका सब के विशेष उत्साह देखे छे, खास कर जखन सब बालिका सब के प्रोत्साहन राशि संगे साइकिल वगैरह देल गेल तो बालिका में एक नव ऊर्जा आयल। नहीं तो सत्य बात छलैया जे पहले किछु पढ़ेला के बाद हमर सब के अभिभावक गण सब कहि छलखिन जे बेटी आब अहाँ सासुरे में पढ़ब लिखब, हम अहाँ के ब्याह करा दै छी। ई भाव सबके लगभग रहे छलै, कारण होइ छलै बहुत किछु, ओहि पर चर्चा नहीं करब। लेकिन समय काल परिस्थिति बदललै, आब नव ऊर्जा संग हमर बच्ची सब आगू उड़ान भरि रहल अछि और संगे जे किछु छूटल अछि ओकरा हम सब मिलकर उड़ान भरेबा के साहस दिए या कहब।
1: देखिए आज सरकारी योजना की आपने बात की है तो कहते हैं कि पढ़ेगी बेटी तो बढ़ेगा देश, और सरकारी योजना केंद्र सरकार की बहुत योजनाएं इस तरह की है जो बेटी को पढ़ने में आपने कहा कि मदद मिल रहा है उससे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है और इससे इसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना है और उड़ान योजना, CBSE उड़ान योजना है, ये सब कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये है नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, ये सारी योजनाएं जो है प्रगति स्कॉलरशिप है, राज्यों के लिए स्पेशल योजनाएं हैं। बिहार के लिए बात करें तो मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना जो 10वीं पास होने पर 10,000 रुपये से लेकर और फर्स्ट करने पर मतलब पहले स्थान पाने वाले को 25,000, ग्रेजुएशन यानी कि जो BA करते हैं बच्चे हाँ तो उसमें 50,000 रुपये की जो योजनाएं हैं। वहीं राजस्थान की बात करें तो बेटी जन पर जो योजना है वहाँ 2,500 रुपये और टीकाकरण के लिए, इसके बाद पढ़ाई के लिए, ये सब बहुत कुछ है योजना जो सरकार मदद दे रही है
0: जी,
1: कि बेटी आगे कैसे बढ़े।
0: जी ये स्लोगनों बीच में बहुत किस देखे छी, बेटी पढ़ाओ

0: बेटी बढ़ाओ
1: जी, बहुत दिनों से
0: बेटी स्लोगन चले बहुत दिन चले। सत्य बात जे बेटिए हमर आगा आवा वाला भविष्य के नींव है। ओकरा जतेक हम सब शिक्षित करब और क्या जरूरी है बेटी के पढ़ेनाइ, महिला के पढ़ेनाइ, शिक्षित नहि क्या जरूरी, सब बात के यहाँ चर्चा करूँ प्रतिभा जी। एहि दुआरे जरूरी जे नीक परिवार बने, नीक परिवार से नीक समाज बनते, नीक समाज से नीक राष्ट्र के निर्माण हेतै। और राष्ट्रीय क्षितिज पर पढ़ल लिखल जाइ छै आ कोनो मूर्ख जाइ छै, ओहिमे बहुत अंतर होइ छै। जे एकटा पढ़ल छल संस्कृत और व्यवस्थित कार्य करत, ओकर कार्यशैली के एकटा अपन समय सारणी हेतै, ओ एकटा से निरक्षर आदमी नहीं कह सक, ओ काज कर सकैए। लेकिन जे व्यवस्थित ढंग से पढ़ल लिखल करत ओ नहीं कह सके। तैं महिला के बच्ची के पढ़नाए अति आवश्यक छै आधुनिक जीवन के लिए।
1: बिल्कुल, जो आज की बेटी है हमारी वही कल माँ बनती है। और कहते हैं ना कि माँ सबसे बड़ी गुरु होती है, सबसे पहली गुरु होती है अपने बच्चों के लिए। तो महिलाएं जो शिक्षित होती है, तो देखिए प्रवीण जी आर्थिक रूप से भी अपने परिवार को संभल कर रही हैं महिलाएं, आज की महिलाएं। हमारे घर की आमदनी दुगनी हो जाती है, जिससे कहीं ना कहीं परिवार को सुख और समृद्ध बनाने में, जो हम सुखी बनाते हैं समृद्ध बनाते हैं, उसमें मदद मिलती है। साथ ही नौकरी करेंगी महिलाएं तो टैक्स देंगी, स्टार्टअप खोलेंगी, बहुत तरह के जो रोजगार सब हैं योजनाएं हैं वो इस तरह से। पढ़ी लिखी महिलाएं ये जानती हैं कि छोटा परिवार खुशियां अपार, ये उन्हें ये समझदारी हो गई है उनमें कि कम ही बच्चे हों पर उसकी अच्छी परवरिश हो, ये बात उनके समझ में आ जाती है। इसके साथ ही शिक्षित माँ अपने बच्चे को अच्छा संस्कार दे पाती हैं। महिलाओं को शिक्षित होने के कारण दहेज प्रथा, देखिएगा कि कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, इन सब में आज के युग में कमी आई है, घरेलू हिंसा में कमी आई है और समाज में जागरूकता फैली है। लगभग 70% की कमी देखने को मिलता है। पहले जो दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाते थे महिलाओं को, महिलाओं के ही द्वारा, घर घर में तो दोनों जन होते हैं, पुरुष वर्ग भी होते हैं महिलाएं भी, लेकिन वो कहते हैं ना कि महिलाएँ ही महिलाओं की शत्रु होती हैं, यानी कि जो सास के रोल में है या जो परिवारजन है वो सभी ही अपने बहू को प्रताड़ित इस तरह से करती थी कि अपने मायके से दहेज में ये नहीं आया वो नहीं आया। तो इन सब चीजों में अब आज की भावना में शिक्षा के कारण ही बदलाव देखने
0: ये अलग मात्र एक शिक्षित अलग है जो हम देख रहा थी। सामाजिक व्यवस्था में बहुत किछ परिवर्तन आयल है, अगर मूल भाव में यदि जाए तो निश्चित रूप से हम देखे जो जो हमारे बच्ची सब शिक्षित भेल और महिला भेल तो समाज में इस सब विसंगति के वो सब दूर धीरे धीरे केलक। आ जीविका दीदी सब गाँव गाँव आई हमार सहायिका सब गाँव गाँव आंगनबाड़ी सब में की करे सब अलग आशा दीदी सब की करे एक पढ़ल लिखल महिला सब गाँव समाज के सुधारा में दिवारात्रि लगेने तै हम कहब जे महिला के शिक्षित भेनाए और ओकरा व्यवस्थित भेनाए अति आवश्यक, तखने हम सुदृढ़ राष्ट्र के परिकल्पना तैयार कर सकै छी।
1: एक और बात कहना चाहेंगे प्रवीण जी की, शिक्षा महिलाओं के लिए इसलिए भी जरूरी है कि इससे इनमें सही निर्णय लेने की क्षमता होती है, जैसे कि अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए, करियर से जुड़े कोई भी यदि महत्वपूर्ण निर्णय होता है तो बेहतर ढंग से इसमें सहजता के साथ वो सोच पाती हैं, ये अपना भला बुरा जो है बेहतर ढंग से समझ पाती हैं। और जब महिलाएं शिक्षित होती हैं तो विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देकर राष्ट्र की प्रगति में भी सहयोगी बनती हैं, क्योंकि शिक्षा महिलाओं के लिए केवल उनका अधिकार ही नहीं है प्रवीण जी, बल्कि समाज और देश के उज्जवल भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हमारे परिवार, समाज और देश के प्रत्येक बेटी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलना ही चाहिए। देखिए ना, बहुत सारे जगह पे देखिएगा कि बैंक में हो या कहीं हॉस्पिटल जाना हो या कहीं और कुछ ऑनलाइन कुछ काम है, तो बहुत सारी जो ऐसी महिलाएं होती हैं देखने को मिलता है कि जो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं तो थोड़ा सा एक छोटा सा फॉर्म भरने में भी उन्हें परेशानी होती है। लेकिन आज वो संख्या बहुत ही कम रह गया है, गिन चुन के एक दो आपको देखने को मिलेगा, वरना आज की महिलाएं बैंक का काम हो, ऑनलाइन कोई काम करना है, मनी ट्रांसफर है या फिर कोई भी काम है वो खुद से ही कर पाती हैं, वो उनमें आत्मशक्ति की वृद्धि हुई है, वो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ी हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज की बेटियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, चिकित्सा जगत हो, खेल जगत हो या दुनिया की राजनीति जगत हो, हर तरफ जो है हमारे देश की महिलाएँ आगे बढ़ी हैं, अग्रणी रह रही हैं।
0: और यही कारण
1: है कि शिक्षा पे हम सभी बहुत
0: आशा ही करे छी जे या शिक्षा या अलग हमर

0: आधे जे भाग छथि महिला आबादी, हुनका सबके सम्मान जगह और राष्ट्र में एकटा मान सम्मान के संग हुनकर सबके योगदान के राष्ट्र कखनो नहीं भूल सकैए। और एखन का अर्थव्यवस्था में हम तो बुझै छी जे पुरुष से बेसी महिला के योगदान छै, किया तो महिला ऑफिसों में काज क क और घरों में काज क क अर्थव्यवस्था के एकटा समन्वय बनबै छै। और जतेक समन्वय एकटा महिला दुनू जगह बनबै छै, ओ एकटा कखनो हम पुरुष छी हम जनै छियै जे हम कखनो ओ समन्वय नहि बना सकै छी। या हम ऑफिस में खटला के बाद कोशिश करै छी घर में बेसी काज नहि करी, लेकिन महिला वएह चाहत यदि ऑफिस करै छथि तऽ घरों में आबि कऽ वएह काज करती जे परिवार के लेल नीक होए। ई एकटा शिक्षित महिला के लक्षण
1: हो। वो कहते हैं ना प्रवीण जी की किसी भी परिवार का विकास तभी संभव होता है जब उस घर की महिला शिक्षित होती है या समझदार कह सकते हैं कि होती है, और समझदारी शिक्षा से आती है। तो हम सभी को इन सब बातों पे बहुत अधिक ध्यान देनी है और कार्यक्रम में भी ध्यान देनी है। सिर्फ हम सभी बातचीत करते जा रहे हैं तो अपने श्रोताओं तक पहुँचाते हैं अब देर न करते हुए एक फिल्म संगीत।

0: प्रवीण जी, अभी बहुत ही प्यारा सा गीत हम सभी सुन रहे थे। उम्मीद करते हैं कि श्रोताओं को भी पसंद आई होगी। और हम सब ने पहले ही बात किया था विज्ञान का, विज्ञान विकास। निश्चित तौर पे विज्ञान विकास का साधन है। विज्ञान के आविष्कार से, चमत्कार से बहुत कुछ ऐसे वस्तुओं का निर्माण हुआ है जिससे हमारे जीवन में सहजता, सरलता आई है। तो इस तरह से शिक्षा जगत हो या स्वास्थ्य जगत की बात हम करें, तो विज्ञान का बहुत ही अच्छा योगदान में होता है। और लेकिन आवश्यकता है उसके जो सदुपयोग पे, हम सभी पहले ही बोले थे। और बच्चों की यदि बात करें तो देखिए ना, कुछ ही वर्ष पहले हम सभी जाते हैं तो कोरोना काल में तो हमारे बच्चे जो स्कूल को बंद कर दिया गया, तो इस विज्ञान के चमत्कार से कह सकते हैं, जो मोबाइल फ़ोन का निर्माण हुआ है या लैपटॉप कंप्यूटर का निर्माण हुआ है, तो उस माध्यम से पढ़ाई कर रहे थे घर बैठे। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि घर बैठे आप ऑनलाइन वर्क भी करते हैं। बहुत सारे लोग ऑनलाइन जॉब करते हैं, घर बैठे ही वर्क फ्रॉम होम रहता है उनका, या कोई इस तरह का स्टार्टअप है, बिजनेस है, जो घर बैठे वो कर पाते हैं ऑनलाइन माध्यम से। लेकिन जब बच्चों की बात आती है और बात आती है पढ़ाई के साथ साथ जो वो वीडियो गेम खेलने लग जाते हैं, तो अत्यधिक जब समय उस पे लगाते हैं, तो फिर उनके मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए वो हानिकारक हो जाता है।
1: एकदम सत्य कहै छी। और ओहिमे कतौ नहि कतौ हमर सबके योगदान, हम जे अभिभावक छी तकर योगदान से बेसी हम देख रहल छी। कारण हम जाइ छी बचपन में, हम आइ काल्हि देखलहुँ, काल्हि ट्रेन में रही, एकटा छोट बच्चा कानऽ लागल, माय तुरंत हुनकर स्मार्ट मोबाइल हुनका दऽ कऽ हुनका चुप करा देलखिन। यानी की देखलहुँ, की सीखलहुँ, निश्चित रूपसँ ई प्रभाव बेसी बच्चा पर एखन भऽ रहल अछि। बच्चा शिक्षा ग्रहण तऽ इसकुल जरूर जाइए, लेकिन इसकुलोमे तऽ कहीं ओकर ध्यान मोबाइले पर तो नहीं रहे छे।
0: बिल्कुल, देखिए ना, 6 से 8 घंटे की स्क्रीन देखना यदि, तो आंखें का सूख जाना, आंखों में धुंधलापन आना स्वाभाविक है। बहुत अधिक बैठे रहने के कारण भी वजन बढ़ जाता है, खेलते रहते हैं वीडियो गेम, उसके कारण नींद खराब होती है और साथ ही उनमें चिड़चिड़ापन भी बढ़ता है। और रात में ज़्यादा देर तक स्क्रीन देखने से प्रकाश, नीला जो प्रकाश है, उससे आँख पर बहुत बुरा ही असर पड़ता है। और आपने कहा कि क्लासरूम में, तो वहाँ भी वो ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। और कभी कभी गेम हार जाने पर उनके मन में चिड़चिड़ापन बहुत अधिक हो जाता है। साथ ही बच्चों का ऑनलाइन बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं, जो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। तो ये सब कुप्रभाव है बहुत अधिक इंटरनेट और वीडियो गेम आदि पे लगे रहने से। आजकल बहुत सारे ऐसे गेम हैं जिसमें बच्चे जो कभी कभी हार जाते हैं, तो उनके मन में बुरा प्रभाव आता है और बहुत बार कुछ गलत भी देखने को, सुनने को मिल जाता है। तो वीडियो गेम के गुलाम होते जा रहे हैं हमारे बच्चे। इन सब चीज़ों पे बहुत अधिक ध्यान देना है। बहुत समय उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन नहीं देनी है और ये ध्यान देना है कि सदुपयोग करें, उसका दुरुपयोग नहीं करें।
1: सत्य कहलाओ, आओ कार्यक्रम चलत चलत आप सुनै छी एकटा फिल्म संगीत।

0: इस प्यारे से गीत के बाद अब कार्यक्रम का समय सीमा समापन की ओर है। हम सभी फिर मिलेंगे कल एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए प्रतिभा प्रीति को
1: और प्रवीण कुमार के
0: दीजिए विदा। नमस्कार मिथिला।

0: भोर होते उठ जाओ किएक तक इजोतक पहल किरण संग फुलाए लगत फूल प्रकृति में घोराए लगत ऊर्जा आबा वाला काल लेल
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन
2: आ मनुख लेल त बुझू अत्यंत जरूरी पानी बुन्नी नहीं है त खेती नहीं है आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है त हमरा लोकन खाब की
3: मामा बने जाने बाबा देने ज्यादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
5: जिंदगी कैसी है बहेली हाय,
6: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी रविवार दिन में 11 बजे।
7: होती रही कुछ बातें गीतों की और कुछ उनसे जुड़ी हस्तियों की।
8: रंगत तेरी सूरत से किसी में नहीं, नहीं।
7: कानों से जब टकराई सुरों की शीतल फुहारें,
9: तुम नाचो रस बरसी,
7: मुंदी हुई आंखों में जागने लगी कई तस्वीरें।

0: स्याह तन्हा रात के अंधेरे में गीतों के रंग। बुधवार रात 10:30 पर आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति।
1: जिंदगी कैसी है पहेली हाय।
2: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
3: भोर होते उठ जाओ किएक ता इजोतक पहल किरण संग फुलाय लगैत अछि। फूल प्रकृति में घुराय लगैत अछि ऊर्जा आबे वाला काल्हि लेल।
4: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
5: आ मनुख लेल तो बुझो अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहि हैत तो खेती नहि हैत, आ खेती जँ नहि हैत उपजा नहि हैत तो हमरा लोकनि खायब की।
6: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
7: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
8: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में समाचार प्रभात।
9: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
10: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
9: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
11: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा।

मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। उत्तराखंड का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुला। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

0: बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। उत्तराखंड का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुला। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा भी उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से व्यापार और आर्थिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विकास सहयोग और क्षेत्रीय स्थिति पर बातचीत हुई। म्यांमार भारत का रणनीतिक पड़ोसी देश है और इसकी 1640 किलोमीटर लंबी सीमा नागालैंड और मणिपुर सहित भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों से लगी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भी श्री आउंलाइन से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। 5 दिन की भारत यात्रा पर आए राष्ट्रपति आउंलाइन व्यापार और उद्योग जगत से बातचीत के लिए आज मुंबई जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमेरिका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। अमेरिका पिछले वित्त वर्ष में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बैठक में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाने के प्रयासों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी है। श्री पात्रा ने कहा कि आज भाजपा और एनडीए सरकार को देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा का अवसर मिला है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
3: The help of this scheme, I started my...

0: रचना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
1: 2 to 3 ब्रांचेस ऑल्सो।
2: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और वुमेनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
3: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
2: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड में चमोली जिला स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी की समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पति संरक्षण में सहयोग की अपील की है। वर्तमान में घाटी में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और दुर्लभ वनस्पतियां मौजूद हैं। वन क्षेत्राधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि ये घाटी 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी।
5: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
4: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने आजमगढ़ जिले से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने का आरोप है। एटीएस ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी दिशा निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नव नियुक्त न्यायाधीश आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया। हिजबुल्ला ने कहा है कि अगर इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौ

0: चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कुल 22 रोवर्स को अब टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी 6 अलग अलग नौका समूहों का हिस्सा हैं। अब ये रोवर्स एशियाई खेलों और रोइंग विश्व कप जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल खिलाड़ियों में पेरिस ओलंपिक 2024 के प्रतिभागी बलराज पंवार, एशियाई खेल 2022 के रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और एशियाई खेल 2022 में 2 पदक जीतने वाले जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज बारिश की संभावना है। कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित लगभग सभी हिंदी समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खियों में आज राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को वरीयता देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मसलों को भी मुखपृष्ठ पर जगह दी है। लोकसत्य ने पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। लाखों रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाया। दैनिक जागरण ने नए ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 के सफल परीक्षण के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ड्रोन लगातार 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। पत्र ने CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी की जांच शुरू होने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की आला अधिकारियों के साथ मंत्रणा को दूसरा शीर्ष समाचार बनाया है। हिंदुस्तान ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के कथन को पहली खबर बनाते हुए लिखा है, अमेरिका से व्यापार समझौता जल्द। वीर अर्जुन ने म्यांमा के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भेंट का चित्र सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए म्यांमा के राष्ट्रपति के बयान को सुर्खी बनाया है, भारत के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दैनिक भास्कर ने अपने संपादकीय में भारतीय रिजर्व बैंक की नीति निर्धारक इकाई के 3 से 5 जून के मध्य लिए जाने वाले फैसलों का विश्लेषण किया है। शीर्षक दिया है, महंगाई से गरीबों को बचाने पर फोकस होना चाहिए। पत्र याद दिलाता है कि पिछले 10 वर्षों में खाद्यान्नों की कीमतें इलेक्ट्रॉनिक सामान के मुकाबले ज्यादा बढ़ी हैं।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। म्यांमार प्रेसिडेंट ऊ मिन आउन क्लाइन सेज हिज कंट्री विल नॉट अलाउ इट्स टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स। इंडिया एंड यूएस हैव फाइनलाइज्ड मोस्ट एलिमेंट्स of first phase of bilateral trade agreement, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Uttarakhand's UNESCO World Heritage Site, Valley of Flowers, opened to tourists. 22 rowers included in TOPS development group ahead of Asian Games 2026. And in hockey, India registered dominant 4-1 win over Korea in Men's Under 18 Asia Cup. Myanmar President Ooh Min Aung Hlaing

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। म्यांमा के सदर ओमिन आउन लाइन ने यकीन दिलाया है कि म्यांमा के इलाके को भारत के सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका ने बाहमी तिजारती समझौते के पहले मरहले के बेशतर पहलुओं को हतमी शक्ल दे दी है। उत्तराखंड में यूनेस्को के आलमी विरसे के मकाम वैली ऑफ फ्लावर्स को सयाहों के लिए खोल दिया गया है। एशियाई गेम्स 2026 से कबल 22 कुश्तीरां खिलाड़ियों को टॉप्स तरक्याती ग्रुप में शामिल किया गया है। और हॉकी में 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों के एशिया कप में भारत ने कोरिया को 1-4 गोल से हरा दिया।

0: और उमानिया जैसी कलीदी स्कीमों की बदौलत बैंककारी बचत और कारोबारी प्लेटफार्मों तक ख्वातीन की पहुंच बढ़ी है। जनधन योजना के तहत ख्वातीन के 33 करोड़ जनधन खाते खोले जा चुके हैं। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए हिमाचल प्रदेश में शिमला की रिहायशी सरोज बाला ने कहा कि हुकूमत की स्कीमों से मुतालिक रकम अब सीधे उनके बैंक खाते में मुंतकिल की जाती है।
1: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास एक रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। इसलिए एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
0: इख्तराई प्रोग्रामों और मौजू पॉलिसियों के साथ ख्वातीन एक खुद कफील और सबकी शमूलियत वाली मईशत को तश्कील देने में अहम रोल अदा कर रही हैं। आकाशवाणी न्यूज दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कलीम अहमद।
2: सुप्रीम कोर्ट में 9 तकर्रर शुदा 5 जज आज हलफ लेंगे। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत उन्हें ओहदे का हलफ दिलाएंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत के चीफ जस्टिस से मुशावरत के बाद सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की तकर्री की है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने तलबा के लिए नंबरों की तस्दीक और इम्तिहान के पर्चों की फिर से जांच के लिए पोर्टल शुरू कर दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने ये जानकारी दी है। CBSE ने तलबा को ये सलाह दी है कि वो नंबरों की तस्दीक और इम्तिहान के पर्चों की फिर से जांच के लिए दरख्वास्त देने के तरीके के बारे में हिदायत के ताल्लुक से वीडियो को ध्यान से देखें। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। उत्तराखंड में यूनेस्को आलमी विरसे के मकाम वैली ऑफ फ्लावर्स को सैयाहों के लिए खोल दिया गया है। मजकूरा मकाम रियासत के चमोली जिले में है। जंगलात के महकमे ने सैयाहों से अपील की है कि वो वैली के मालामाल हयातियाती तनवो और पौधों की कमयाब अकसाम के तहफ्फुज़ में तआवुन करें। महकमे के मुताबिक वैली ऑफ फ्लावर्स में सरेदस्त फूलों की 300 अकसाम और पौधों की मुतअद्दिद कमयाब अकसाम हैं। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर चेतना खंडपाल ने बताया कि वैली 31 अक्टूबर तक सैयाहों के लिए खुली रहेगी।
3: वैली 1 जून से 31 ऑफ अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आए 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
2: काबिले जिक्र है कि वैली ऑफ फ्लावर्स एक ऐसे खित्ते में वाक़ है जहां मुश्किल जुग्राफियाई हालात हैं। मौसमी हालात और सलामती के मेयारात को मद्देनजर रखते हुए सयाहों को जरूरी रहनुमा खतूत जारी किए जा रहे हैं ताकि उनके सफर को महफूज और लुत्फानंदोज बनाया जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा दरिया पर जेर तामीर पुल का कुछ हिस्सा गिरने के वाक़े की तहकीकात के लिए आला सतह की 2 इंक्वायरी कमेटियां तश्कील दी हैं। इस सानहे में 6 अफराद की मौत हो गई थी। हमीरपुर के जिला मैजिस्ट्रेट अभिषेक गोयल ने बताया कि जिला इंतजामिया की जानिब से तश्कील दी गई 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी इस वाक़े से वाबस्ता सभी इंतजामी, तकनीकी और तरीक़ाकार से मुतालिक पहलुओं की तफसीली जाँच कर रही है। जिला मैजिस्ट्रेट ने बताया कि इस हादसे के सिलसिले में कुरारा थाने में केस दर्ज किया गया है। साल 2026 के एशियाई खेलों से कबल 22 कश्तीरां खिलाड़ियों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स तरक्याती ग्रुप में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी अब कश्तीरानी के मुकाबले वाले बड़े बैन अल-अक़वामी खेल मुकाबलों के लिए तैयारी करेंगे जिसमें एशियाई खेल और वर्ल्ड कप सर्किट शामिल हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
4: खेलों के महकमे की वजारत ने कहा है कि इन कश्तीरां खिलाड़ियों को टॉप्स तरक्याती ग्रुप में शामिल किया जाना तमकों के इनफरादी इम्कानात पर तवज्जो मरकूज करने के बजाय कश्ती के कई खेल मुकाबलों में पायदार इस्तेहकाम कायम करने की एक और कोशिश है। जिन खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया गया है उनमें 2024 के पेरिस ओलंपिक में खेलने वाले बलराज पंवर, एशियाई गेम्स 2022 में चांदी का तमगा हासिल करने वाले अरविंद सिंह और 2022 के ही एशियाई गेम्स में 2 तमगे जीतने वाले जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। शामिल किए गए बेशतर खिलाड़ियों को खासतौर पर 2026 के एशियाई खेलों को जहन में रखते हुए तैयार किया जा रहा।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज शेखपुरा और मुजफ्फरपुर जिले में विभिन्न विकास योजनाओं का करेंगे शुभारंभ। आम लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए पंचायतों की तर्ज पर प्रदेश के नगर निकायों में भी आज हो रहा है सहयोग शिविर का आयोजन। राज्य के प्रतिष्ठानों में 10 से कम कर्मी होने पर नहीं कराना होगा निबंधन। राज्य सरकार ने बिहार दुकान और प्रतिष्ठान रोजगार विनियमन तथा सेवा शर्त अधिनियम समाप्त किया। और राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकतर भागों में उमस भरी गर्मी का दौर जारी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज शेखपुरा जिले के बरबीघा में विभिन्न विकास योजनाओं का शुभारंभ करेंगे, साथ ही आमस पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में भाग लेंगे। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री शेखपुरा को 53 करोड़ रुपए के विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सामस स्थित विष्णु धाम के सौंदर्यीकरण की योजना के साथ अन्य योजना इसमें शामिल हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान रखा गया है कि मुख्यमंत्री पटना से यहां पहुंचते ही पहले सामस स्थित विष्णु धाम में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद सहयोग शिविर में शामिल होकर वहां मौजूद लोगों से सहयोग शिविर के बारे में फीडबैक प्राप्त करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए शेखपुरा से निरंजन कुमार।
0: मुख्यमंत्री आज मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड अंतर्गत परसौनी नाथ पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। आम लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए पंचायतों की तर्ज पर राज्य के नगर निकायों में आज से सहयोग शिविर की शुरुआत हो रही है। इसमें लोगों से प्राप्त आवेदन के आधार पर उनकी समस्याओं का समाधान 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। राज्य की पंचायतों में भी सहयोग शिविर आयोजित किए जाएंगे। सहयोग शिविर से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1100 पर संपर्क किया जा सकता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में उद्योगों, निवेशकों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और आम नागरिकों को विभिन्न सेवाओं को प्राप्त करने में जटिलताएं दूर की जाएंगी। पटना में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को लाइसेंस निर्गत करने, अनुमति प्रदान करने और प्रक्रियाओं को सरल तथा आसान बनाने का निर्देश दिया है। श्री चौधरी ने बिहार के लिए घोषित प्रधानमंत्री पैकेज और केंद्रीय बजट की

0: सूचनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने का भी अधिकारियों को निर्देश दिया। मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने समाज कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को प्रत्येक महीने की 10 तारीख तक उनके खाते में राशि भेजने को सुनिश्चित किया जाए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
1: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की 12 साल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में एक बैठक को संबोधित करते हुए श्री नवीन ने कहा कि संगठन पार्टी की शक्ति है और उसी के जरिए सरकार की उपलब्धियां और विचारधारा को जन जन तक ले जाना है। इसके तहत महिलाओं, युवाओं और किसानों के सशक्तिकरण के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। राज्य सरकार ने बिहार दुकान और प्रतिष्ठान रोजगार विनियमन तथा सेवा शर्त अधिनियम को समाप्त कर दिया है। अब दुकान और प्रतिष्ठानों में 10 से कम कर्मी होने पर दुकानदारों को निबंधन नहीं कराना होगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन की सहमति के बाद इसकी अधिसूचना जारी हो गई है। अधिसूचना के अनुसार अब नए लेबर कोड में 10 और इससे अधिक कर्मी रखने पर ही दुकानदारों को निबंधन कराना होगा। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को नियमों का अनुपालन करते हुए सरकारी आवास खाली करना होगा। श्रीमती सिंह ने पटना में जदयू कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राबड़ी देवी वरिष्ठ नेत्री हैं, इसलिए उन्हें भी नियमों का सम्मान करना चाहिए। श्रीमती सिंह ने कहा कि सरकारी आवास खाली कराने की कार्रवाई प्रतिशोध और द्वेष की भावना से नहीं की जा रही है। राजद के आरोपों पर उन्होंने कहा कि जदयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुरक्षा कारणों से आवास दिया गया है। इधर राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने प्रेस वार्ता में कहा कि सरकार यदि द्वेषपूर्ण राजनीति करेगी तो राजद के सभी नेता सरकारी आवास और सुरक्षा वापस कर देंगे। बेगूसराय की एमपी एमएलए अदालत ने केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में जमानत दे दी है। उन पर वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है। उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा है कि राज्य में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। पटना के बिहटा स्थित इरेडिएशन सेंटर और इनलैंड कंटेनर डिपो के निरीक्षण के बाद संवाददाताओं से बातचीत में सुश्री सिंह ने कहा कि सरकार प्रदेश में आधुनिक औद्योगिक और कृषि प्रसंस्करण अवसंरचना के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
2: सिर्फ जर्दालू आम ही नहीं, मखाना के उत्पादन और मखाना की खरीद बिक्री और एक्सपोर्ट में बिहार जल्द से जल्द अव्वल नंबर पे पहुंचे, इसकी परिकल्पना हम लोग

0: करते हैं और उस उत्पादन को किस तरह से बढ़ाया जाए, किस तरह की सुविधाएं ताकि किसान से लेकर जो एक्सपोर्टर्स है हमारे उन सबको मिल सके, उसके ऊपर भी हम लोग एक चेन फैसिलिटी बनाने का काम कर रहे हैं। इरेडिएशन सेंटर अभी बिहार में एक है, और भी इरेडिएशन सेंटर हम लोग बिहार के अलग अलग कोने में भी खोल सके, जिससे कि इस एक्सपोर्ट फैसिलिटी को और ज्यादा सुगम बनाया जा सके।
1: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। लोकभवन ने राज्य के 14 विश्वविद्यालयों में प्रति कुलपतियों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 1 जुलाई निर्धारित है। लोकभवन ने स्पष्ट किया है कि आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है। राज्य के दक्षिण पश्चिम हिस्सों में हीट वेव जैसी स्थिति बनी हुई है। पटना, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास और बक्सर सहित कई जिलों में अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर 39.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। इधर मौसम विभाग ने आज राज्य के उत्तरी और दक्षिण पश्चिमी भागों में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान वज्रपात की चेतावनी भी जारी की गई है।
3: 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण एवं उत्तर पश्चिम भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है तथा 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के कई स्थानों पर अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने का पूर्वानुमान है।
1: प्रदेश में 15 जून से 15 अक्टूबर तक बालू खनन और बालू उठाव पर रोक लगा दी गई है। खान और भूतत्व विभाग ने कहा है कि आगामी मानसून के दौरान नदियों के जलस्तर में संभावित वृद्धि के मद्देनजर ये प्रतिबंध लगाया गया है। विभाग ने कहा है कि इस दौरान सभी बालू घाटों पर खनन गतिविधियां पूरी तरह बंद रहेंगी। राज्य सरकार ने सभी जिलों में बालू की उपलब्धता बनाए रखने के लिए बफर स्टॉक बनाने का निर्देश भी दिया है। निगरानी विभाग ने पूर्णिया के नगर प्रखंड कार्यालय में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी रूपक कुमार को 10,000 रूपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार राजस्व कर्मचारी पर जमीन के दाखिल खारिज की प्रक्रिया के लिए राशि की मांग करने का आरोप है। मुंगेर की एक अदालत ने न्यायालय के आदेश की अनदेखी करने के मामले में मुफस्सिल थाना प्रभारी विपिन कुमार सिंह के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है। वर्ष 2010 के इस मामले में मुख्य अभियुक्त की मृत्यु संबंधी रिपोर्ट नहीं देने पर यह कार्रवाई की गई है। बिहार संग्रहालय की ओर से पटना में आज से 7 जून तक समर कैंप का आयोजन किया जाएगा। कैंप में अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा बच्चों को टेराकोटा कला, मुखौटा निर्माण कला तथा कहानी लेखन कला का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कैंप का उद्घाटन महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह करेंगे। अररिया जिले के प्रभारी सचिव मोहम्मद सुहेल ने संभावित बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति से निपटने की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। उन्होंने सहयोग पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निष्पादन पर संतोष व्यक्त किया है। वहीं जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र में छापेमारी कर पुलिस ने एक महिला के साथ उत्पीड़न मामले में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। मधुबनी जिले के फुलहर से प्राप्त अभिलेख युक्त बौद्ध देवी तारा की प्रतिमा और पुरावशेष को मिथिला ललित संग्रहालय को सुपुर्द कर दिया गया है। गोवा में संपन्न राष्ट्रीय महिला मास्टर्स एथलेटिक प्रतियोगिता में

भोजपुर की अंजू कुमारी ने 3 स्वर्ण पदक जीता। अंजू ने 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़ और रिले स्पर्धा में पहला स्थान प्राप्त किया है। पटना में 6 से 10 जून तक बिहार राज्य सब जूनियर फीडे रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन साइट फिर ठप हुई, परेशान रहे विद्यार्थी। दैनिक जागरण लिखता है, करोड़ों की सरकारी दवाओं पर नकली रैपर लगा, बांग्लादेश में तस्करी। दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार और गया समेत कई जिलों के अस्पतालों से आती थी दवाएं। दैनिक भास्कर ने बिहार में काली कमाई से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, काली कमाई से बिहार के अफसरों की प्रॉपर्टी खरीद का खुलासा, मामाजी के जरिए बागडोगरा पहुंच रहा है बिहार के अफसरों का कैश। प्रभात खबर जेई एडवांस परीक्षा परिणाम से जुड़ी खबर को अपनी लीड बनाते हुए लिखता है, गुवाहाटी जोन के सफल छात्रों में 45% बिहार के। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: लिखा है, काली कमाई से बिहार के अफसरों की प्रॉपर्टी खरीद का खुलासा, मामा जी के जरिए बागडोगरा पहुंच रहा है बिहार के अफसरों का कैश। प्रभात खबर जेई एडवांस परीक्षा परिणाम से जुड़ी खबर को अपनी लीड बनाते हुए लिखता है, गुवाहाटी जोन के सफल छात्रों में 45% बिहार के। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज शेखपुरा और मुजफ्फरपुर जिले में विभिन्न विकास योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। आम लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए पंचायतों की तर्ज पर प्रदेश के नगर निकायों में भी आज हो रहा है सहयोग शिविर का आयोजन। राज्य के प्रतिष्ठानों में 10 से कम कर्मी होने पर नहीं कराना होगा निबंधन। राज्य सरकार ने बिहार दुकान और प्रतिष्ठान रोजगार विनियमन तथा सेवा शर्त अधिनियम समाप्त किया। और राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकतर भागों में उमस भरी गर्मी का दौर जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा
1: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है।

0: किएक तऽ इजोतक पहिल किरण संग फुलाय लगैत अछि, फूल प्रकृति में घोराय लगैत अछि, ऊर्जा आबय वाला काल्हि लेल
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप सँ सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतनि।
2: आ मनुख लेल तो बुझो अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नै हैत तो खेती नै हैत, आ खेती जँ नै हैत उपजा नै हैत तो हमरा लोकनि खायब की?
3: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा। कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: भोर होते उठ जाओ।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से।
1: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, थोड़ी दिन में हमारा अगला प्रसारण पटना केंद्र से, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

गजल के बाद फिर हम हाजिर हैं अंजुमन के साथ। सामिन, इस गर्मी में प्यास का एहसास वैसे तो खुद बखुद हो जाता है, पर बच्चे खेल में भूल जाते हैं। उन्हें एहसास ही नहीं होता कि उन्हें पानी भी पीना है, इसलिए उन बच्चों को थोड़े थोड़े वक्त पर पानी पिलाते रहें। सादा पानी उनमें ऊब ना पैदा करे, इसलिए आप उन्हें नींबू पानी, नारियल पानी, ORS और फलों के जूस वगैरह वक्त वक्त पर पिलाते रहिए, ताकि जिसमें नमकियात की कमी पूरी होती रहे। यही काम हमें अपने घर के बुजुर्गों के साथ भी करना ज़रूरी है। हाँ, अगर उन्हें शुगर हो तो फिर चीनी की मकदार का ख्याल रखते हुए उन्हें हाइड्रेट रखिए, क्योंकि जिसमें पानी की कमी ना होने देना ये बहुत अहम हो जाता है। बस इस बात का ख्याल रखिए कि जिसमें पानी की कमी ना हो, ताकि जिस्म बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहे। अक्सर इस गर्मी के मौसम में ज़्यादा पसीना जिस्म में कमज़ोरी पैदा करता है,

0: सूती और हल्के रंग के कपड़े उन्हें पहनाइए और वक्त वक्त पर उनको ठंडे पानी से नहाने की ज़रूर याद दिलाते रहिए। ज़्यादा चुस्त कपड़े ना पहनाएं ताकि उनके जिस्म में हवा ना जा सके। इसलिए ख्याल रखिए कि उनके कपड़े ढीले हों और हल्के रंग के हों, गहरे रंग के ना हों। सामीन, हमारी गुफ्तगू चलती रहेगी, फिलहाल आइए आज की खास पेशकश का वक्त हुआ जाता है। समाप्त करते हैं मुज़ाकरा। उनवान है नौजवानों के सुनहरे मुस्तकबिल की तामीर में वालिदैन का किरदार। स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा मेहमान खसूसी की तरफ कदम बढ़ाते हैं। मेहमान हैं मोहम्मद आकिफ फकास और शहदाई। सामीन, शगुफ्ता आपके रूबरू हाजिर है आज एक मुज़ाकरा लेकर। क्या आप जानते हैं कि नौजवानों के सुनहरे मुस्तकबिल की तामीर में वालिदैन का किरदार किस कदर अहम होता है? जी हाँ, आज हमने इसी मौजू के तहत हमारे स्टूडियो में खास मेहमानों को मदु किया है। सबसे पहले मैं उनसे आपका तारुफ करा दूं। हमारे साथ आज हमारे पहले मेहमान खसूसी हैं मोहम्मद आकिफ वकास, जो कि डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हैं नालंदा से, और हमारे साथ दूसरे मशहूर सहाफ़ी हैं शहदाई साहब। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे आज के इस मुज़ाकरे में।
1: शुक्रिया आपका।
0: सबसे पहला सवाल तो शहदाई साहब आपसे ही है कि हमारे नौजवानों के बारे में हमें बताइए कि ये जो हमारे जो नौजवान हैं, ये नौजवान होने से पहले हम कहीं ना कहीं बच्चे होते हैं। तो कहते हैं कि बच्चों का मकतब सबसे पहला जो होता है वो माँ की गोद होती है, तो वहीं घर और खानदान जो है वो उनका पहला यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल कहलाता है। तो कैसा होना चाहिए हमारे इस घर का, हमारे पहले मकतब का माहौल, जिसमें हमारे बच्चे और नौजवानों के मुस्तकबिल पर अच्छे और बेहतर असरात पड़े?
2: आपने सही फरमाया। दरअसल बच्चा जब आँख खोलता है तो माँ की गोद से ही उसकी तरबियत शुरू हो जाती है, इसीलिए माँ की गोद को पहली दरसगाह कहा गया है। रहा सवाल उसके बाद, जैसे जैसे उसके अंदर होशमंदी के रुझानात पैदा होते हैं तो वो अपने घर के आसपास के माहौल से मुतासिर होता है। अगर घर का माहौल बहुत ही पुरसुकून है, बहुत ही हौसला अफजा है, एक दूसरे से जुड़ाव है, मोहब्बत का माहौल है, तो यकीनन जो बच्चा वैसे माहौल में परवरिश पाएगा वो सारी खूबियां खुद ब खुद उसके अंदर धीरे धीरे परवरिश पाती चली जाएंगी।
0: अच्छा, यही सवाल हम आपसे करना चाहते हैं आकिफ साहब, कि बच्चे जो अक्सर शुरू के वक्त में जो पढ़ना शुरू करते हैं, स्कूल जाते हैं, तो वो सोते हैं, फिर उठना नहीं चाहते हैं स्कूल के लिए, कई बार माँ बाप उनको डांटते हैं, झड़कते हैं, तो उनको किस तरीके से उस वक्त में उनकी तरबियत की जाए कि वो स्कूल की तरफ बढ़ सकें, उनके अंदर रगबत आए स्कूल के लिए और वो आसानी से उठ सकें, कैसा माहौल उनको देना चाहिए?
3: वालदैन का जो किरदार है वो काफ़ी अहम होता है, जैसा कि सर ने ही बताया। तो वालदैन नौजवानों की अखलाकी तरबियत में बुनियादी किरदार अदा करते हैं शुरू से ही, तो उसमें ये होना चाहिए कि अच्छे अखलाक, सच्चाई, ये सब सिखाएं। और जहाँ तक स्कूल की बात कर रहे थे, तो स्कूल के लिए उनको थोड़ा सा एक इंसेंटिव टाइप का दें कि आप स्कूल जाएंगे तो बदले में हम लोग कुछ इंसेंटिव देंगे, इंसेंटिव इन द सेंस के स्पोर्ट्स के लिए भी कुछ आप उनको कुछ फराहम कर रहे हैं या ऐसा कुछ,
0: कुछ ऐसी चीजों की तरफ रुझान दिलाना मुझे लगता है कि जरूरी है। तुम्हारी पसंद का कोई खाना बना देंगे या लंच दे देंगे, या कोई इस तरह की चीजें अगर हम लोग करेंगे तो शायद आसानी हो जाएगी। और सवाल बनता है कि अक्सर बच्चों की पढ़ाई की तरफ माँ बाप पैसे बहुत खर्च कर देते हैं, और ये सवाल आप दोनों से है, तो खर्च तो करते हैं पैसे, लेकिन वो उनको वक्त नहीं दे पाते हैं, वो कभी जान नहीं पाते हैं कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे शहदाई साहब?
2: देखिए, ऐसा है कि जब तक बच्चा, स्कूल की बात तो आप छोड़ दीजिए, अगर वो आला तालीम की दरसगाहों में भी है, तो उस वक्त तक भी ये सरपरस्तों की जिम्मेदारी है कि वो देखें, परखें और अपने बच्चों के रابطے के बारे में जानें कि वो कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, कौन उसके दोस्त हैं, दोस्तों को वो घर पे बुलाए। उससे बच्चों के बहकने के और गलत किस्म के रास्ते इख्तियार करने के ज़राए अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। लिहाजा ये कहना कि सिर्फ स्कूल तक ही निगरानी हो, ऐसी बात नहीं है। निगरानी तो वो आखिरी, जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता है और ख़ुद सरपरस्त नहीं बन जाता है, उस वक्त तक जारी रहनी चाहिए।
0: हाँ, चूँकि अक्सर ये सुनने में आता है ना कि बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, माँ बाप के लिए वो हमेशा ही बच्चे ही रहते हैं, माँ बाप बाहर आते रहते हैं। तो इस पर आकिब साहब आप क्या कहना चाहेंगे?
3: मैं भी वही बात कहना चाहूँगा, वालदैन की मोहब्बत और रहनुमाई ये नौजवानों को गलत रास्तों से बचाती है। तो इसमें दोनों चीज़ होना चाहिए कि वालदैन जो है एक दोस्त बन के भी और एक रहनुमा बन के भी बच्चों को गाइड करें ताकि राह रास्त पर चलें और एतमाद के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ें।
0: ये सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि अक्सर

0: बच्चे जो है वो दोस्त ढूंढते हैं, तो क्या हमारे वालदेन को जो है वो सबसे पहला दोस्त माँ बाप को बनना चाहिए?
1: एग्जैक्टली बनना चाहिए,
0: क्योंकि मुझे लगता है अगर वो दोस्त रहेंगे तो फिर ज्यादा उनके लिए आसानी हो जाएगी चीजों को समझने में। सवाल और ये भी आता है कि अक्सर वालदेन चाहते हैं मेरा बच्चा बड़ा हो तो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, किसी बहुत हाई लेवल के पोस्ट पर पहुंचे, लेकिन कई बार बच्चे और नौजवान जो होते हैं उनका इंटरेस्ट अलग जगह पर होता है, उनकी ख्वाहिश कुछ और करने की होती है, कुछ को पेंटिंग्स वगैरह में कॉम्पिटिशन में अगर मान लीजिए इंटरेस्ट है, तो आप उनके बारे में बताइए कि वैसे जो वालदेन हैं जो अपने बच्चों की उसके जो पसंद की जो फील्ड है उसके साथ में अपने आप को मैनेज करना चाहते हैं, तो फिर वालदेन उनके साथ कैसी तरबियत का निज़ाम करें कि जिससे उनके बच्चे आगे बढ़ सके ना कि पीछे हो जाएं?
1: इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि वालदेन बच्चों को जो इंटरेस्ट है उसकी तरफ आगे लेके जाएं। सपोज बच्चा अगर जैसे पेंटिंग ही के फील्ड में या इवन स्पोर्ट्स के फील्ड में भी आगे बढ़ना चाहता है, तो वालदेन को चाहिए, यहाँ पे उनकी जिम्मेदारी है कि उसी फील्ड में आगे बढ़ें जिसमें उसका इंटरेस्ट हो और पैशन हो। इससे ये फायदा होता है कि उसमें लगन से और मेहनत से वो काफी ज्यादा वो जोश भी रहती है। अब जबरदस्ती आप उसको सपोज इंजीनियर बनना चाह रहा है, आप उसको डॉक्टरी करवा रहे हैं, तो फिर वो इंटरेस्ट उसमें उतना डेवलप नहीं हो पाएगा, आप चाह कर भी उसमें नहीं कर पाएंगे। तो ये ज्यादा जरूरी है कि बच्चों का जो इंटरेस्ट है उसके तरफ अगर आप थोड़ा भी कुछ फोर्स लगाते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये ज्यादा बेहतर है।
0: एक सवाल आपसे ही है आकिफ साहब, जो बच्चे यूपीएससी बीपीएससी वगैरह की जो कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन करते हैं उसमें वक्त काफी लगता है, उस सिचुएशन में जहां पे एक बार में बच्चे कम्पीट नहीं कर पाए, दो बार में नहीं कर पाए, तो उस सिचुएशन में वालदेन को क्या करना चाहिए?
1: ऐसे सिचुएशंस अक्सर आते हैं जो बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा लोग करते हैं तो सक्सेस रेशियो इसमें भी कम होता है। तो ऐसे सिचुएशंस में वालदेन को यह भी बताना चाहिए कि आप एक प्लान बी रखें। सपोज आपका नहीं होता है इनकेस दो तीन अटेम्प्ट्स के बाद, तो प्लान बी रखें, और ऐसा नहीं है कि एक दो अटेम्प्ट करके आप छोड़ दें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हम लोग के साथ भी रहे हैं, जो थर्ड अटेम्प्ट फोर्थ अटेम्प्ट में भी क्वालिफाई करते हैं। यूपीएससी में 6 अटेम्प्ट्स होते हैं जनरल के लिए, इसी तरह से बीपीएससी में भी काफी ज्यादा अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं, एज क्राइटेरिया होती है तब तक आप दे सकते हैं। तो उसमें वालदेन की यही जिम्मेदारी भी है कि आप बच्चों को रोकें नहीं तब तक आप प्रिपरेशन करवाएं जब तक वो दे रहे हैं, लेकिन उसमें चेक करना जरूरी है कि आपका मार्क्स जैसे प्रीलिम्स दे रहे हैं आप, तो कितने मार्क्स से आपका छूट रहा है। बहुत ज्यादा छूट रहा है तो आपको लगना चाहिए कि नहीं, या तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं तो ये फील्ड आपके लिए नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि एकदम सारे अटेम्प्ट्स देते जा रहे हैं, आप 5 साल बर्बाद कर रहे हैं फिर शुरू से बैक टू द पवेलियन वहीं पे पहुंच जा रहे हैं, तो ऐसे केस में प्लान बी रखना चाहिए। तो दोनों चीज चेक एंड बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वही असेसमेंट हो जाता है प्रीलिम्स के बाद ही कि आप थोड़ा सा से छूट रहे हैं या बहुत ज्यादा से छूट रहे हैं, तो मार्जिन पे डिपेंड करता है।
0: और कई बार ऐसा भी होता है कि वो जब बहुत ज्यादा जब छूटते हैं बच्चे हैं वो कई बार हिम्मत हार जाते हैं, और फिर अचानक से आप सुनते ही हैं कई बार कि उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है, कोई भी ऐसी चीज हो गई किसी भी तरह के कॉम्पिटिशन के लिए, सिर्फ वो बीपीएससी यूपीएससी की नहीं, मतलब नीट वगैरह के लिए भी है, इंजीनियरिंग के लिए भी है। तो उस टाइम में जो कहते हैं ना कि बच्चों के अंदर एक हौसला, तो वो हौसला वालदेन किस तरीके से पैदा करें, क्या करके उनको मोटिवेट रखें कि नहीं भाई जिंदगी बहुत कीमती है?
1: जाहिर सी बात है जो भी काम हम लोग कर रहे हैं तो जिंदगी चलाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन बच्चों में वो कमी पाई जाती है, क्योंकि बच्चे जो खास करके 10th या 12th लेवल के बाद जो एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, वर्ल्डली एक्सपोजर नहीं होता है, तो ऐसे केस में वो गलत कदम उठा लेते हैं। तो इसमें ज्यादा जरूरी है कि एक दोस्त बन के वालदेन उनको सपोर्ट करें और ये बताएं कि जिंदगी इन एग्जाम से ज्यादा बड़ी है, जिंदगी अपने आप में खुद एग्जाम है, इसीलिए ये छोटी मोटी फेलियर्स को ऐसा ना बनाएं कि ये लाइफ एंड हो जाएगा, क्योंकि फेलियर के बाद ही सक्सेस होता है। तो ऐसे बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, हम लोग जानते हैं बहुत सारे ऐसे पर्सनैलिटीज हैं जो शुरू में फेल किए बाद में बहुत अच्छा किए हैं, तो इसलिए उनको मोटिवेट करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है।
0: पर आप क्या कहना चाहेंगे शादी साहब?
2: जी ऐसा है कि जो बच्चे हैं वो भले ही अपने मुस्तकबिल के बारे में एक अपनी मंजिल तय करते हैं, लेकिन उसमें वालदेन की रहनुमाई, उनकी हौसला अफजाई और सबसे बढ़कर उनका जो माहौल है वो, या जो असाज़ा हैं वो, ये सारे लोगों की मुश्तरका जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को ये बताएं कि सिर्फ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम ही ज़िंदगी का मकसद नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मैदान हैं जिसमें कामयाबी के बेपनाह इम्कानात हैं। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो नाकाम हो गए फिर जब वो दूसरी लाइन में गए तो बहुत बड़े ओहदे पर वो पहुँचे और उन्होंने

0: अपनी एक शनाख्त बनाई, पहचान बनाई, तो बच्चों के दिमाग में महदूद सोच पैदा नहीं होने देना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि एक जिंदगी गुजारने के लिए बहुत वसी मैदान है। सिर्फ अफसरान और ब्यूरोक्रेट ही वो शोभा नहीं है। आज मान लीजिए कि अगर साइंस के लीजिए तो साइंटिस्ट हैं, कला के लीजिए तो रक्स है, मौसिकी है, और भी बहुत सारा जो है फिल्म साजी है, जिसमें हमारे मुल्क में बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता लोग पैदा हुए। तो अगर हम सिर्फ ये बच्चों को बता दें कि डॉक्टर बनना है, वकील बनना है और अफसर बनना है, तो फिर बाकी शोबे जो हैं वो खाली हो जाएंगे ना, अगर सब लोग वही बनने लगेंगे तो। और इससे मुल्क का वकार जो है वो तो उस वक्त बुलंद होगा जब हर शोबे में एक नुमाया शख्सियतें होंगी। तो बच्चों की ये जो महदूद सोच है उससे उनको निकालना पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।
1: अच्छा, अभी जो मौसम है उस हिसाब से एक बहुत अहम सवाल आ जाता है, अक्सर इतनी तपिश वाली गर्मी होती है तो वालिदैन कहते हैं अरे बहुत गर्मी है मत जाओ, जैसे ट्यूशन का टाइमिंग या कोचिंग का टाइमिंग उस तरह से हो गया, तो फिर वैसे ही सर्दी होती है, तो ये कहीं ना कहीं जो ओवर प्रोटेक्शन जो बच्चों के लिए जो करते हैं वालिदैन या उनको उनके कंफर्ट जोन से नहीं निकलने देते हैं, तो ऐसे वालिदैन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इस तरह का ओवर प्रोटेक्शन उनके मुस्तकबिल में रुकावट बनता है?
2: कोई भी चीज अगर ओवर हो जाती है तो वो थोड़ी रुकावट तो हो जाती है, इसलिए ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स की वजह से भी बच्चे ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। और इकबाल का एक शेर है, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। तो गर्मी रहे, बरसात रहे या सर्दी रहे, मेहनत करनी ही होगी, बाहर जाना ही होगा, आपको फील्ड में आना होगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे, नहीं तो ऐसे तो मुश्किल है।
1: मतलब ये कि बच्चों के लिए वालिदैन को कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करना होगा कि भाई बाहर निकलो, धूप है तब भी, पर आप क्या कहेंगे इस पर शहराई सर?
0: नहीं, ऐसा है कि देखिए, वो जो आपका सवाल है वो शहरी हदूद तक ही आपको देखने में मिलेगा, वरना जो हमारे गांव के इलाके हैं, देही इलाके हैं, मैंने देखा है तपती धूप में और लू में बच्चियां साइकिल से जाती हैं और आती हैं। तो वहां का जो कल्चर है वो मेहनत कशों का कल्चर है, वहाँ ये सवाल या इस किस्म के रुझान बहुत कम देखने को मिलेंगे। और फिर वापस आके वो अपने वालदेन की खिदमत करती हैं, अगर लड़कियां हैं तो अपने माँ के कामों में हाथ बटाती हैं। तो ये जो शहरी और देही कल्चर के बीच में जो फर्क है, शहर है हमारे जो नाम नेहाद कहिए, वहाँ के जो बच्चे हैं या वहाँ का जो माहौल है वो हमारे उससे मेल नहीं खाता है।
1: कई बार ये वन चाइल्ड जहाँ पे रहता है वहाँ पे भी ये मसला,
0: और जो सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है बल्कि अगर इसको आप वसी पैमाने पे देखेंगे, शहरी इलाकों का जो कल्चर है वो अपने तक महदूद रहना और बहुत ज्यादा लोगों से नहीं मिलना जुलना, तो ऐसी कई बुराइयां हैं, कमजोरियां हैं जो के अंदर अंदर बच्चों को खोखला बना रही है। लेकिन आप देखेंगे कि जो रिजल्ट आते हैं बहुत हाई फाई, जो अपने दिल्ली में जो है 5 साल से 10 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके मुखर्जी नगर में रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, लेकिन कामयाब कौन हो रहा है? सब्जी बेचने वाले का लड़का, ठेला चलाने वाले का लड़का, छोटे मोटे रोजगार करने वालों का लड़का क्यों हो रहा है? इसकी वजह यह है कि वो बच्चे जो हैं वो वेस्टर्न आपके सोच है, उनके रख रखाव है, वो हमारे यहाँ मेल नहीं खाता है। वालदेन का ये फर्ज है कि उनको जो है मेहनतकश बनाए और हार्ड से हार्ड लेबर करने का आदी बनाए। मान लीजिए कि अगर वो बन भी जाते हैं अफसर तो उनको कहीं भी भेजा जा सकता है।
2: एग्जैक्टली
0: जब इतनी जब इतनी ठंड में हम आप कंबल से और लिहाफ से सर बाहर नहीं निकालते हैं, सियाचिन में हमारे सैनिक मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?
1: कभी तो वो तरबियत कहीं ना कहीं घर से ही मिली।
0: तो मैं जो अहम मुद्दा है वो वालदेन की तरबियत का है। वो आपका सवाल एकदम सही है कि वो लू है तो बस अंदर चले जाओ और ये है तो जा, इस तरह के जो रुझान है बच्चों में वो नहीं होने चाहिए।
1: तो बेटियों के बारे में जैसे अक्सर लोग ये कहते हैं कि अरे ये तो बेटियां हैं, बराई धन है, तो इनकी तो शादी हो जाएगी, तो बेटियों का जो मुस्तकबिल है वो सिर्फ शादी तो नहीं है, कहीं ना कहीं जब बात बराबरी की आती है कि बेटा और बेटी दोनों बराबर हैं, तो क्या बेटियों को उनके ख्वाब पूरे करने के लिए वालिदैन को मौका और वक्त देना चाहिए?
0: ये सवाल तो आपका बहुत अच्छा है लेकिन हकीकत इससे ज्यादा कड़वी है, क्योंकि हमारे सोसाइटी की जो बनावट है माशरे की वो बहुत सारी फरसूदा रिवायतों पर अब तक मुनहसिर है। जैसे मिसाल के तौर पर आप अच्छे पढ़े लिखे घरों में भी जाएंगे और अगर बेटियों पर बातचीत आप देखेंगे होती हुए तो अच्छे पढ़े लिखे लोग भी ये कहते हुए पाए

0: कि नहीं, लड़कियां तो बहुत नाजुक होती हैं और वो सारा काम नहीं कर सकती हैं वगैरह वगैरह, जबकि धीरे धीरे लड़कियों ने ही रिवायत को तोड़ा है
1: जी
0: और अब तो हवाई जहाज चला रही है, सेना में है।
1: हाँ
0: कोई ऐसा काम नहीं है, एक एक काम मुझे बता दीजिए जो अब तक लड़कियों ने कहा है कि मुझसे नहीं हो, ऐसा नहीं है। तो ये जो सेहतमंद रुझान है, ये धीरे धीरे माशरे में को पैदा करना चाहिए और इसको तकवियत बख्शना चाहिए। इसके लिए जो असाज़ा हैं वो करें, जो मीडिया वाले हैं वो करें, जो और भी दूसरे शोबे के जो निगरान हैं वो करें, जो हमारे रहनुमा हैं वो करें। तो इस तरह से ये जो पैटर्न है ये चेंज होगा और फिर वाकई वो बराबरी वाला दर्जा उनको मिलने लगे।
1: आकिब साहब, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बेटियों को इस तरीके से उसके इल्म को हासिल करने में वक्त देना चाहिए, फिर मान लीजिए वो कंपटीशन को प्रिपरेशन करना चाहती हैं तो शादी कहीं ना कहीं बीच में एक ब्रेकर की शक्ल में उनको लगता है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनको वालदेन को उनके साथ कैसा सलूक रखना चाहिए वहाँ पर फिर?
2: देखिए, दीनी पॉइंट से भी और दुनियावी पॉइंट से भी बेटियों को भी पढ़ाई के शोबे में बराबर मौके फराहम करने चाहिए। जैसा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इल्म के हुसूल को तमाम मर्द औरत के लिए वो फ़र्ज़ करार दिया
1: फर्ज
2: गया है
1: जी,
2: और इकरा से कलाम पाक की
1: इकरा में
2: शुरुआत हुई है।
1: जी
2: और गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखें, खासकर आजकल इवन बिहार गवर्नमेंट का आप देखें तो 35% रिजर्वेशन टू वीमेन है इन डिफरेंट गवर्नमेंट फील्ड्स। चाहे आप बीपीएससी का देख लें तो उसमें भी मिनिमम 35% गर्ल्स आ रही हैं और बाकी फील्ड में भी गर्ल्स आ रही हैं। तो यही है।
1: इसके अलावा और क्या है?
2: इसके अलावा ये है कि इस्लाम तालीम के फ़रोग़ का हामी है और औरतों की तालीम तो घर को बनाने और बच्चों को संवारने के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है।
1: चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, अगर वो स्पेशली एकदम बीपीएससी और यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करना चाहती हैं तो वालदेन किस तरीके से, किस ढंग से उनकी परवरिश करें? वालदेन कैसे उनको तरबियत दें या किस तरीके का उनको माहौल दें घर में, जिससे कि वो सही मायने में एक दो चार अटेम्प्ट मान लीजिए अगर है तो उसमें कम से कम वो कामयाब हो जाएं वैसे बच्चे?
2: एकदम 100% तो गारंटी कोई नहीं दे सकता, बट हाँ, तालीमी माहौल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि घर में एक तालीमी माहौल हो, शाम में मगरिब के बाद एकदम पढ़ाई का माहौल हो। और इसमें यह हो सकता है कि आप उसको फ़रोग़ दें, जैसे कि वो पढ़ाई कर रहे हैं तो बाकी जो घर के काम होते हैं कभी कभी एक्स्ट्रा काम जो हम लोग लेने लगते हैं तो उससे थोड़ा बचें, खास करके एग्ज़ाम टाइम में या एग्ज़ाम करीब है आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक तरह से होता है ना कि आपका लय जो है वो टूट रहा है, तो उस तरह से ना हो। बाकी इसमें वालदैन की कोशिश यही होनी चाहिए कि बच्चे को शुरू से ही जब 10th कर रहे हैं 12th कर रहे हैं उसी टाइम से ही आपको जनरल नॉलेज की तरफ, आजकल तो इंग्लिश स्कूलों में क्लास 1 से 1 स्टैंडर्ड से ही जीके
1: जीके
2: वगैरह
1: शुरू हो जाता है।
2: पढ़ाए जाते हैं। तो उसमें उस तरह का इंटरेस्ट, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो आर्ट्स जो सब्जेक्ट होते हैं, आजकल ज़्यादा लोगों का इंट्रैक्शन साइंस की तरफ हो रहा है, तो
1: जी
2: कुछ आर्ट्स पे भी आपकी पकड़ होनी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में हर तरह के सवाल आते हैं। आजकल के बच्चे आप देख रहे होंगे कि इंजीनियरिंग की तरफ ज़्यादा रुझान है ओवरऑल, हम लोग देखेंगे 12th के बाद तो उसमें। लेकिन इंजीनियरिंग के अलावा भी बाकी आप आर्ट सब्जेक्ट्स, सोशल साइंस है
1: सोशल साइंस
2: मेरी मुराद है, तो उसमें आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी सब पे पकड़ होनी चाहिए। तो शुरू से ही उस तरह की चीज़ें बताई जाएं। उस तरह के चैनल्स भी हैं, इवन टीवी चैनल्स भी हैं, जैसे आप न्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करें, आप चाहें तो उसमें टीवी में आप मूवीज़ भी देख सकते हैं, सीरियल्स भी देख सकते हैं, न्यूज़ भी देख सकते हैं। इवन एक लोकसभा और राज्यसभा का भी चैनल है,
1: जी
2: उससे कौन कौन सा बिल पास हो रहा है, उसमें क्या प्रोविज़न है या एंटी डिफेक्शन लॉ का क्या प्रोविज़न है। जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई बंदा एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चला गया,
1: चलाइए
2: के क्या रूल्स हैं, तो वो धीरे धीरे सीखेगा तो एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड सवाल आते हैं। इवन जो यूपीएससी बीपीएससी का मेंस होता है तो जो करंट अफेयर्स चल रहा होता है उससे सवाल आते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से सवाल आते हैं। तो आप न्यूज़ पे और न्यूज़पेपर पे अगर आपकी पकड़ रहेगी, एक वालदैन की जिम्मेदारी ये भी है कि घर में एक न्यूज़पेपर रहे, उस तरह का माहौल रहे, ताकि वो लोग एक तरह से प्रिपेयर्ड रहें और करंट अफेयर्स से रूबरू रहें शुरू से ही।
1: अच्छा, इसमें क्या ये भी एक लैंग्वेज के ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है?
2: लैंग्वेज के ऊपर पकड़ होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश से ही हो जाएगा। यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, आप किसी भी मीडियम में लिख सकते हैं, बीपीएससी में तो उर्दू में भी आप लिख सकते हैं। हाँ, बेसिक इंग्लिश तो आनी चाहिए क्योंकि आपको मल्टी डायमेंशनल काम करना होता है, काफ़ी सारी चीज़ें इंग्लिश में भी होती हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज जो स्टेट का है तो हिंदी भी आनी चाहिए
1: हिंदी भी
2: आपको,
1: आनी चाहिए।
2: और अगर आपको उर्दू में पकड़ है तो उर्दू में भी लिख सकते हैं, सारे सब्जेक्ट्स लिख सकते हैं, जनरल पेपर 1 2 सब अलाउड है।
1: अच्छा, यहाँ पर एक और सवाल है, वो शायद आई साहब आपसे। सबसे पहले जैसे कहते हैं ना, बच्चे के साथ हमें बच्चा बनना पड़ता है, तो क्या

0: पढ़ाई के दरमियान में भी बच्चों के साथ में वालदेन को बच्चे बनना चाहिए, मतलब उनको नई जो जो कोर्सेज आ रही हैं, जैसे बच्चा कहता नहीं मैं ये नहीं बनना चाहता ये बनना चाहता हूँ, तो क्या उसके लिए वालदेन को अपडेट रहना ज़रूरी है, उस जो नई जदीद जो कोर्सेज हैं उसके बारे में मालूमात होनी ज़रूरी है?
1: वालदेन की सबसे पहली जिम्मेदारी ये होती है, तमाम वालदेन अपने बच्चों का जायज़ा लें। जो बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके बच्चे, अभी मैं हाल में एक चैनल देख रहा था वो जापान के बच्चों के बारे में, कि वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही ज़िम्मेदार होते हैं, अब जिस शोबे में जाते हैं बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। तो उसकी वजह यह है कि बचपन से ही उनके रुझानात पर वालदेन की निगाह है कि हमारे बच्चे की दिलचस्पी किस, मान लीजिए कि वो लड़ाई भिड़ाई की तरफ है, ज़्यादा शरारती है, तो जारी बात है कि उसकी लाइन दूसरी होगी। अगर वो गाने बजाने की तरफ है, गा रहा है, बच्चे से शुरू से ही गाने का शौक़ है, तो मौसीकी की तरफ जाएगा। अगर वालदेन पूरी ईमानदारी के साथ और बजाय आस पास से मुतासिर हुए बगैर, यहाँ होता क्या है कि उनका बच्चा बैठ रहा था तुम भी बैठ जाओ, वो ऐसा कर रहे हैं आप भी कर लीजिए, आप क्यों नहीं कर रहे हैं, वो कर रहा है, तो ये इस तरह की जो मेंटेलिटी है, जो रुझान है, ये बच्चों पर बहुत ही मनफी असर डालते हैं। वो दबाव की वजह से एडमिशन ले लेगा, कहीं चला जाएगा, तो आप उसके ऊपर जो खर्च कर रहे हैं, जो इनपुट है आपका, उसकी क्या गारंटी है कि उसका आउटपुट आपको मिलेगा, यही वजह है। लेकिन वो जो समझदार वालदेन हैं वो ऐसा नहीं करते। मैट्रिक तक ये मालूम हो जाता है, अगर कोई वालदेन ये कहें कि मुझे पता नहीं चला, तो या तो उसके गफलत का नतीजा है या उन्होंने तवज्जो नहीं दी अपने बच्चे। मैट्रिक तक पहुंचते पहुंचते बच्चे के रुझानात की अलामत मालूम हो जाती है कि वो साइंस की तरफ उसका रुझान है कि आर्ट्स की तरफ है, मौसीकी की तरफ है कि स्पोर्ट्स की तरफ है। तो अगर उस मुनासबत से अगर वालदेन फैसला करते हैं तो मैं नाकामी के बहुत कम चांसेस हूँ, क्योंकि बच्चा खुद अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए दिलचस्पी का मुजाहरा करेगा, उसको किसी दबाव की जरूरत नहीं।
0: मगर साहब आपसे एक सवाल ये है कि जो अभी जो बहुत सारे जो बच्चे देख करके या दोस्तों की वजह कर आ जाते हैं बहुत सारे फील्ड में कि ठीक है हम भी, मेरा दोस्त पढ़ रहा है इस चीज़ का कोर्सेज में, उसने एडमिशन लिया तो मैं भी करूँगा, ऐसा करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वालदेन के कुछ ख्वाब अलग होते हैं, मतलब वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ, अब ये चाहते कि उनका बेटा जो है वो डॉक्टर बने और बेटे को इंटरेस्ट उसमें नहीं है, तो वो दोनों जगह पर जो उलझ जाते हैं जो बच्चे जो नौजवान इस तरह से कि वो दोस्त को देख करके उसके तरफ बढ़ना चाहते हैं और इधर वालदेन का होता है कि नहीं तुम्हारा ये नहीं तुम ये करो, तो इस तरह का जो सिचुएशन होता है इसमें वालदेन को अपने बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए, किस तरीके से वो उस सिचुएशन को हैंडल करें कि उनका बच्चा जो है वो एकदम जैसे बोलते हैं ना नेगेटिविटी का शिकार ना हो या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन कि नहीं हम तो ये करना चाह रहे थे लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं और अब मेरे माँ बाप हमको बढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे ऐसे वालदेन को कि उनके ऊपर अपने ख्वाब थोपने चाहिए या फिर उनको आगे अपना आसमान जो है वो अपने आसमान में उनको उड़ने देना चाहिए?
2: जाहिर सी बात है बच्चा जो चाह रहा है वही इंटरेस्ट उनको डेवलप करने देना चाहिए, आप जबरदस्ती उन पे कुछ थोप नहीं सकते हैं कि आप इसी फील्ड में जाओ या किसी और फील्ड में जाओ। हाँ लेकिन ये जरूरी है कि बच्चे को भी देखना चाहिए कि वो दोस्त अगर सपोज मेडिकल लाइन में जा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो दोस्त के चक्कर में खुद भी मेडिकल लाइन में चला जाए। कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, नॉट कंपैरिजन। बच्चे क्या करते हैं कि वो जा रहा है तो चलो हम भी चलते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका क्या इंटरेस्ट है वो सेल्फ इंटरेस्ट और सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और 10-12 तक बच्चे को भी समझ में आ जाता है, वालदेन को भी समझ में आ जाता है। तो उसी हिसाब से जैसे सपोज आपका मैथमेटिक्स ठीक चल रहा है, साइंस में अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो आप IIT की तरफ जाएं। अगर आपका सोशल साइंसेज में इंटरेस्ट है तो आप कंपटीशन की तरफ जा सकते हैं। इवन इंजीनियरिंग वाले भी करते हैं, हमने ही किया है, तो इंजीनियरिंग करके फिर इधर आए, तो उसमें हर तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए, क्योंकि मेरा शुरू से इंटरेस्ट डेवलप्ड था सोशल साइंसेज की तरफ, तो इसलिए। और वालदेन ने पॉजिटिव सपोर्ट किया, फोर्स नहीं किया कि यही करो, हमने फिर इसकी तैयारी की, तो इस तरह से पॉजिटिव रिस्पांस पेरेंट्स का मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है,
0: बहुत ज़रूरी हो जाता है। अच्छा उन बच्चों के बारे में आप दोनों से सवाल बनता है, उन बच्चों के बारे में आप क्या कहेंगे जो कई बार कंपटीशन का प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो किसी तरह का कंपटीशन हो, चूंकि कहीं भी आपको एडमिशन लेने के लिए एक कंपटीशन से तो गुजरना होगा, चाहे आप इंजीनियरिंग के लिए जाएं, नीट के लिए जाएं, चाहे फिर कहीं से भी, तो वो बिना एंट्रेंस एग्जाम के नहीं होगा। तो कई बार ऐसा होता है वो अपने वालदेन को बताते नहीं हैं कि वो किस ट्रामा से गुजर रहे हैं, किस तरह के सिचुएशन से गुजर रहे हैं, इंटरनली उनको क्या फीलिंग्स आ रही है, एंग्जाइटी हो रही है। तो क्या वैसे बच्चे जिनको हम बाहर भेज देते हैं कि भाई वो बाहर जा करके पढ़ें, ठीक है दूसरे इंस्टीट्यूशन में

0: बैठ करके वहाँ पढ़ाई करें और फिर वो कंपटीशन निकाल लेंगे, इंटरेस्ट निकाल लेंगे ये सोच करके, तो वो बाहर भेजना ज़्यादा बेहतर है या फिर बच्चों को घर में ही ऐसा माहौल दिया जाए कि घर में वो पुरसकून पढ़ सकें? दोनों में से कौन सा बेहतर होगा? सबसे पहले आप बताइए शायद ये सब।
1: देखिए, ऐसा है कि बाहर और घर का कोई सवाल नहीं है। देखा गया है कि अगर बच्चे के अंदर जज्बा है और जुनून है कुछ बनने का, तो वो कहीं भी अपनी तैयारी कर सकता है, उसको किसी किस्म की गाइडेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। और आज के दौर में तो इतना वसी फील्ड है, इंटरनेट है, इंटरनेट सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, कि आप एकदम में पसमानदा इलाके में बैठ कर भी बड़ी से बड़ी तैयारी कर सकते। यहाँ शर्त है उस बच्चे की दिलचस्पी, उसका जुनून। अब मैं आपको महाराष्ट्र की बात बता दूँ या इस तरह के, तो अमूमन आप देखिएगा कि वहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो इतने तरक्की याफ्ता नहीं हुए जो बाहर से गए। ज़्यादातर डॉक्टर आपको बिहार के मिलेंगे, ज़्यादातर डॉक्टर आप यूपी के मिलेंगे, मध्य प्रदेश के मिलेंगे। तो ये क्या मतलब हुआ, वहाँ क्यों नहीं हुआ? वहीं पढ़ के, वहीं पढ़ा उन्होंने जाके, लेकिन वो नहीं होना, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं उनके अंदर एक जज्बा जुनून था, उनके पीछे माली बैकग्राउंड भी था कि मुझे अपने वालदेन की माली हालत को बेहतर बनाना है, बहनों की शादियों की जिम्मेदारियाँ थीं। तो इस तरह के जो बच्चे हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का एहसास है, कुछ कर गुजरने का जज्बा है, वो कहीं भी रहकर कर सकते हैं। अब सवाल ये है आपका, ये सवाल भी बहुत जेन्युइन है कि घर के अंदर, घर में रहकर या बाहर, तो जाहिर सी बात है कि बाहर एक वसी मैदान उसको मिलता है, तो जाहिर बात है कि जो जेएनयू का जो माहौल है वो बिहार के यूनिवर्सिटी को हासिल नहीं है। तो जो बच्चा वहाँ जाएगा, अब आपको सुनकर ताजुब होगा कि वहाँ रात भर लाइब्रेरी खुली रहे, तो जाहिर सी बात है कि उसके तरक्की के मौके, उसके कंपटीशन के एतबार से वसी हैं बाहर में। वो अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि सिर्फ वसी माहौल होने से नहीं होता है, उसकी अपनी मेहनत है, लगन है, मैंने बताया शुरू से। तो अगर वो जज्बा होगा तो मौके के लिए बाहर जाना उसका लाजमी है, क्योंकि हमारे बिहार में जो माहौल है, जो ख़ास तौर से मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का, उसमें कंपटीशन की तैयारी करने के इम्कान बहुत कम होते हैं। घर का माहौल ठीक नहीं होता है, बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, मोहल्ले टोले के जो माहौल होते हैं वो मुनासिब नहीं होते हैं।
0: दोस्तों करके बुला के लेके,
1: हाँ, लेके चले जाते हैं। और कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत ज़हीन बच्चे जो शुरू में बहुत अच्छे थे, मैट्रिक तक उन्होंने फर्स्ट किया और अच्छे नंबर से पास हुए, फिर वो उनका जवाल शुरू हो गया, और उसकी वजह यह है कि उन पर तवज्जो नहीं दी गई, उन्हें खराब माहौल से निकाला नहीं गया, वालदेन ने उनके लिए मौके फराहम नहीं किए। तो मौके फराहम करना भी लाजमी होता है और उसके लिए बड़े शहरों में जाना ज़रूरी हो जाता है।
0: इस पर आप क्या कहेंगे आकिब सर?
2: काफ़ी हद तक मैं मुत्तफिक हूँ, जैसा कि सर ने बताया, तो बड़े शहरों में आपको एक्सपोजर मिलता है, लेकिन हाँ, ये गारंटी नहीं है कि कामयाबी आप 100% हो जाएगी। ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग पहचानें अपने कैपेबिलिटी को कि हम लोग कहाँ से कर सकते हैं। सर ने पहले भी बोला, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, इंटरनेट का दौर है। इसमें क्या होता है कि जो भी, सपोज आप कुछ भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की या कंपटीशन की, उसमें होता है कि आप मॉडल आंसर सेट आप बुक्स खरीदते हैं, अब आजकल आप मोबाइल से ही निकाल सकते हैं, उसके आंसर कीज निकाल सकते हैं, उसके बनाने का तरीका, इवन पूरे कोर्सेज आप ऑनलाइन कहीं से भी रह कर देख सकते हैं। तो ये एक चीज़ है। दूसरा, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अलग अलग टीचर से खुद भी पढ़ सकते हैं, इवन मोबाइल से ही पढ़ सकते हैं। हाँ, लेकिन एक्सपोजर की बात हुई तो एक्सपोजर वो आपको थोड़ा कंपटीशन से पहले कंपटीशन आप दोस्तों के बीच में या उस तरह का जो माहौल होता है उसके वजह से पॉजिटिव इफेक्ट होता है उसका। और दूसरी चीज़ है, जैसे हमको पता रहना चाहिए कि हमारे आसपास, अब ज़रूरी नहीं है कि हम कुछ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दिल्ली या कोटा ही जाएं, हमारे आसपास जैसे पटना में ही हम कोशिश करें कि उस तरह का माहौल बेहतर क्या हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल माइनॉरिटीज़ के लिए मैं देना चाहता हूं कि अब नीट एग्ज़ाम जैसे हो गया, इसी तरह से बीपीएससी यूपीएससी के लिए यहां पर ही हज भवन है, तो आप उसका एंट्रेंस देके उसमें आप दाखिला लें तो उसमें भी लाइब्रेरी 24 आवर्स खुली रहती है। सारे किताब जो मेन होते हैं, ऑलमोस्ट सारे किताब उसमें दस्तयाब हैं उसकी लाइब्रेरी में। साथ ही बाहर के टीचर्स, जैसे दिल्ली जाते हैं लोग मुखर्जी नगर और दीगर इलाके में, तो वहाँ के फैकल्टीज़ को बुलाकर यहाँ पे प्रिपरेशन कराई जाती है। बच्चों को पता होना चाहिए, हमारे ज़रिए ही अगर बच्चों को ये चीज़ पता चले तो इस तरह की जो भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज

0: करें बच्चे, ताकि इनपुट आप जितना लगा रहे हैं आउटपुट उसमें ज्यादा मिले, कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट मिले, क्योंकि एट द एंड आपका रिजल्ट मैटर करता है, आप कहाँ से हैं वो नहीं।
1: हाँ, ये बहुत सारी बातें निकल कर के आई आज हमारे इस गुफ्तगू में। इसके साथ ही सामीन, हम आज के इस मुज़ाकरे को इख्तिताम पज़ीर करेंगे और मैं आज के हमारे खसूसी मेहमान दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, आकिफ साहब आपका भी और शहदाई साहब आपका भी। आप दोनों यहाँ तशरीफ़ लाए और अपने बहुत कीमती बातें बताईं और मुझे यकीन है कि हमारे सामीन इससे इस्तफादा हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
2: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
1: सामीन, धूप और गर्मी से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप बेवजह घर से बच्चों और बुज़ुर्गों को ना निकलने दें, ख़ासकर सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के दरमियान में। उस वक्त की तेज़ धूप बहुत हद तक सेहत को ख़राब करती है। इनके साथ इस बात का भी ख्याल रखिए कि उनकी खुराक ख़ास अच्छी रहे, हल्का हो, खाना ऐसा हो जो हल्का हो, कम मसालेदार और आसानी से हज़म होने वाला हो। बासी खाने से बचाइए था और ताज़े खाने, हरे सब्जियां वगैरह उनकी सेहत बनाने में बहुत हद तक मददगार साबित होंगी। बच्चों और बुज़ुर्गों को कूलर और एसी से फ़ौरन निकलकर धूप में जाने से रोकें, क्योंकि लू जैसी हवाओं से बचाने के लिए आम का पना पिलाएं, तो साथ ही साथ कच्चे आम से उन्हें नहाने की भी आदत दिलवाइए। आम से उन्हें नहाने से बहुत हद तक फ़ायदा हासिल हो सकता है। सामीन, हर मौसम का लुत्फ आप तब उठा सकते हैं जब घर का हर फर्द सेहत याब हो। सबकी अच्छी सेहत तभी होगी जब हमारी छोटी छोटी सी कोशिशें आसानी के साथ हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाएंगी। तो आइए, फ़िलहाल वक्त हुआ जाता है एक प्यारी सी गज़ल का, समाप्त करिए एक खूबसूरत सी गज़ल।

सामीन, बदलता मौसम हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम जुज़ होता है, क्योंकि बदलते मौसम के साथ साथ हमें बदलना भी आना होता है। बस इस बात का ख्याल रखिए कि मौसम कोई भी हो, हमें उससे नफ़ा हासिल लेना है। बस सबका ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत है तो ज़िंदगी है और ज़िंदगी आसान हो जाती है। इन अच्छी बातों के साथ आज अपनी दोस्तों मेज़बान शगुफ्ता को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। सुनते रहिए आकाशवाणी पटना, और आज के लिए खुदा हाफिज़।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

ये आवाज थी मोहम्मद रफ़ी की फिल्म गीत में। गीत रचना हसा जयपुरी की थी और धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। अगला गीत फिल्म आन मिलो सजना से, आवाज लता मंगेशकर की। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

यह अवस्थी यशोदास की फिल्म सावन को आने दो में। आइए अब सुनते हैं अनुराधा पौंडवाल और मन्नू की आवाज़ों में फिल्म आजा सनम का ये गीत, जिसे लिखा है गौहर कानपुरी ने और धुन बनाई है कविता पौंडवाल ने।

यहाँ जे थी अनुराधा पौडवाल और मन्नू की फिल्म आजा सनमी। आइए आप सुनते हैं किशोर कुमार और आरती मुखर्जी की आवाज़ों में फिल्म तपस्या का ये गीत, जिसे लिखा है MG हसमत ने और धुन बनाई है रविंद्र जैन ने।

अभी आप किशोर कुमार को सुन रहे थे फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में। इसके साथ ही फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, लीजिए प्रस्तुत है बज्जी का कार्यक्रम अंगना। आलेख संकलन एवं वाचन विजेता सिन्हा का और प्रस्तुत करता है मितेश कुमार मिश्रा।

अंगना सुने वाला सब श्रोता के हम विजेता सिन्हा प्रणाम करित हती। अपने सबके बजिका के ई साप्ताहिक कार्यक्रम में स्वागत है। हमेशा के तरह आई भी हम अपन समय पर उपस्थित हती। आओ कार्यक्रम में सबसे पहले हम बात करित हती गांव के पुराण लोकगीत आ ओकर महत्व के। तो देखो गांव के पुराण लोकगीत हमर सबके सांस्कृतिक धरोहर है, जे पीढ़ी से मौखिक परंपरा के जरिए चलल आ रहल है। एकर महत्व सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं है, एकर महत्व त सामाजिक समरसता, इतिहास आ भावना के जीवंत दस्तावेज है। ई लोकगीत हमर सबके सांस्कृतिक आ ऐतिहासिक धरोहर है। एकर ई विशेषता है कि ई हमरा सबके अपन पूर्वज के जीवन शैली, रहन सहन आ मान्यता से जोड़ित है। मतलब ई लोकगीत एक पीढ़ी से दोसर पीढ़ी के बीच मजबूत सेतु के काम करित है। गांव के लोकगीत हमर सबके जन्म से लेके मृत्यु तक, जेना विवाह, मुंडन, व्रत, मतलब हर संस्कार में होइया। ई गीत के माध्यम से ही हमर सबके पारिवारिक

आ धार्मिक कार्य पूरा होइया। देखू हमर सबके जे लोकगीत है ई कोनो एक आदमी द्वारा नहीं गायल जाइया बल्कि समूह में गायल जाइया। चाहे धान रोपित समय रोपाही के गीत हो, तीज त्यौहार पर महिला सबके द्वारा गायल गीत हो, ई सामूहिक रूप से गायल गीत सामूहिक उल्लास आ भाईचारा के बढ़ावे के काम आवैया। गांव के महिला चाहे उ घर के काम करे या खेत में अपन लोकगीत गा के काम करत रहत हथिन, जैसे हुनका मन भी लगल रहे आ थकान भी महसूस नहीं हो। देखो हम पहले भी कहत रही कि लोकगीत के ये विशेषता है कि हर अवसर पर हर तरह के गीत गायल जाइया। जेना बच्चा के जन्म पर सोहर गावे के रिवाज है, तब विवाह के अवसर पर समदाउन कोहबर डोमगज जैसन रसम निभावे के गीत होइया, तो छठ गीत होली गीत बारिश के मौसम के आनंद लेवे के लेल कजरी आ झूमर गीत। ई लोकगीत हमर सबके गांव के मिट्टी के खुशबू के फैलावित है। तो समय कितनो बदल जाए हमर सबके गांव के लोकगीत हमरा सबके अपन समाज घर परिवार रीति रिवाज तीज त्योहार ई सब से हमरा सबके जोड़े रखे में अपन योगदान देत है। तो आओ लोकगीत के ई महत्व के समझे कार्यक्रम में आनंद लेत हती इंदु बाला शर्मा के गायल ई झूमर गीत।

0: अखनी अपने सब सुनित रही इंदु बाला शर्मा के ई झूमर गीत। अब बात करे थती गर्मी से बचाव आ सेहत के देखभाल के विषय में। गर्मी अपन चरम सीमा पर है, कहियो कहियो तनका बारिश होइया त गर्मी से तनका राहत मिलैया, लेकिन जैसे धूप बढ़ैया त फिर से गर्मी से परेशानी बढ़े लगैया। धूप इतने तेज हो जाइया कि घर से निकलना मुश्किल हो जाइया, लेकिन जिनका बाहर के काम रहैया हुनका ला की गर्मी की बरसात आ की जाड़ा, हर मौसम में जे कामकाजी लोग हथिन उनका निकले के परैया। तनका सावधान रह के तनका होशियारी से अगर काम कैल जाए तो हमरा सबके काम पर भी कोई बुरा असर नहीं पड़त आ हम सब गर्मी के मौसम में स्वस्थ रह सकत हती। बस तनका सावधान रह के पड़त। अब जेना कि कामकाजी लोग के बाहर जाए के रहे तो हुनका साथ में छाता टोपी धूप के चश्मा अपना संगे रखे के चाही, साथ में पानी के बोतल भी रखे के चाही। पानी के बोतल साथ में रखे से ई फायदा होइया कि अगर प्यास लगे तो तनका तनका पानी पियत रहे से शरीर में पानी के कमी नहीं होइया आ डिहाइड्रेशन से बचल जा सकैया। अगर धूप से वापस घर आबे थती चाहे वो बच्चा रहे कामकाजी लोग रहे चाहे कोई और, तुरंत धूप से आवे पर फ्रिज के ठंडा पानी पिए से बचे के चाही। काहे कि इहे ठंडा गरम सर्दी खांसी आ बुखार के कारण बनैया। तो धूप से जब भी आई तो तनका देर बैठ के सुस्ता लेवे के चाही आ तब जाके पानी पिए के चाही। ई गर्मी के मौसम में जितना हो सके ठंडा सामान खाए पिए के चाही। अपन भोजन में दही सलाद के जरूर शामिल करे के चाही। मौसमी फल जे भी होए तरबूज संतरा खीरा ककड़ी ई सब के शामिल करे के चाही। कोल्ड ड्रिंक के बदला नारियल पानी कच्चा आम के शरबत पिए के चाही। ई स्वादिष्ट भी होइया आ एकरा पिए से लू से भी बचाव होइया। तो ई मौसम में कच्चा आम के शरबत जरूर पिए के चाही। देखू जे महिला कामकाजी हथिन हुनका सबके भी घर से निकले समय अपना संगे लंच बॉक्स पानी छाता सूती स्टॉल आ धूप के चश्मा संगे रखे के चाही, जैसे धूप से हुनकर बचाव हो सके। आ जे महिला घर पर रहे थतीन हुनका सबके तनका तनका देर पर कुछ कुछ हल्का फुल्का खायत रहे के चाही। काहे कि ई गर्मी के दिन में बेसी देर तक भूखे रहे से गैस के समस्या हो जात रहैया, जैसे बहुत तरह के परेशानी बढ़ सकत है। तब बेसी देर तक भूखे रहे से बचे के चाही। बाहर के अगर काम रहे तो या तो सुबह सुबह कर लेवे के चाही आ नहीं तो शाम 4 बजे के बाद करे के चाही, ताकि धूप से बचल जा सके। अगर तनका तनका सावधानी बरतल जाए तनका सतर्क रहल जाए तो ई गर्मी के मौसम से परेशान होए के बदले हम सब एकर आनंद उठा सकत हती। तो ई मौसम में सावधान रहू आ स्वस्थ रहू। देखू जब हम स्वास्थ्य के बात करे थती तो हमरा सबके सयान लोग के संगे संगे नवजात शिशु के भी ख्याल रखे के चाही। हुनका माय के दूध पिलावे के चाही, जैसे कि वो बच्चा हर मौसम में स्वस्थ रहे। हुनका अंदर से हर बीमारी से लड़े के लेल शक्ति प्राप्त होइत रहे। तो नवजात बच्चा के लेल माय के दूध के की महत्व है आओ सुनित हती।
1: माय के दूध छोटा बच्चा के लेल बहुत जरूरी होइ छै।

0: माय के चाही हमेशा अपन दूध पिलावे के। अपन दूध पिलावे से बच्चा निरोग रहे छै, स्वस्थ रहे छै। कम से कम 6 महीना तक माय के अपन दूध पिलावे के चाही। बच्चा के हमेशा माय के दूध मिलत रहे। प्रचार भी खूब होइ छै, हर जगह बताएल भी जाए छै। कई माय ऐसन है अपन दूध न पियो जे डिब्बा वाला दूध पियाबे छै, जे बच्चा के लेल सही न। छोटा बच्चा के बीमारी से लड़े के क्षमता माय के दूध बढ़ाबे छै। छोटा बच्चा माय के दूध पिला से हर बीमारी से लड़ सकै छै। जे माय के दूध न होइ छै, माय अपन खाए पिए पर ध्यान दे, अच्छा से खाए जरूर दूध होते। दूध हो या न हो, बच्चा के दूध में मुँह लगाला से धीरे धीरे से दूध उतर जाए छै। माय के ममता में वो ताकत होइ छै, दूध उतर आबै छै। दूध के लेल माय के खान पीन पर जरूर ध्यान देवे के चाही। जितना पौष्टिक भोजन करथिन, दाल उल पीथिन, उनका जरूर दूध होते। उनका ही करे के चाही ताकि छोटा बच्चा के दूध मिल सके। लोग अक्सर बाजार के दूध, पाउडर वाला दूध ज्यादा प्रयोग करे लगे। हाँ, बाहर के दूध कैसन है न है कोई न जाने है। माय के दूध में तो पूरा ताकत होइ छै। ध्यान रखे के चाही, जलम से लेके 6 महीना तक माय के अपने दूध देवे के चाही। बच्चा के हमेशा माय सीना से लगा के रखे के चाही। छोटा बच्चा के देखभाल ठीक से करे के चाही। बच्चा जैसे सुसु कर देलक, तुरंत कपड़ा बदले के चाही। बच्चा रोइया तो काहे देखे के चाही जल्दी कि कौन कारण से रो रहा है। बच्चा के साफ सुथरा रखे के चाही, डेली नहावे उहावे के चाही, मच्छरदानी से तोप के सुतावे के चाही, मच्छर ना काटे, बिस्तर ओकर साफ रहे के चाही। जहाँ तक रहे दूध के बात, माय के अपने दूध देवे के चाही।
1: तो अपन नवजात शिशु के अपन दूध अवश्य पिलाई, अपने भी स्वस्थ रही आ शिशु के भी स्वस्थ रखे के चाही। कार्यक्रम में अब आगे बढ़े थती, अब अपने के सुनवावे थती रेणु सिन्हा के खिस्सा। शीर्षक है संतोष के गाछ में मेवा।
2: श्रोता भाई बहन, आई हम अपने के अंगना में उपस्थित हती एगो कहानी लेके। हमर कहानी के शीर्षक है संतोष के गाछ में मेवा। दीपक बाबू, अपने हमरा भैया से कह दियो कि हमरा हुनका से कोई शिकायत न है। हम हुनका से कोई हिसाब किताब भी न लेम आ न कुछ कहब। व्यापार में जे घाटा भेल है उ हमर है, जे भी कर्जा है उ हम सधाएब। उ अपन व्यापार के ठीक से चलावत आ हमर चिंता करे के हुनका कोई जरूरत न है। अब कैसन चिंता, जे भेल से अच्छा भेल, जे हो रहल है उ भी अच्छा हो रहल है और आगे भी जे होई उ अच्छा ही होई। हम हुनका पर भरोसा कैली, विश्वास कैली से बहुत बड़का गलती कैली। अब हुनका पर तो भरोसा आ विश्वास हम करब न। हाँ, भगवान पर हम जरूर विश्वास आ भरोसा करैत हती। दीपक बाबू, कृपा करके यहाँ से चल जाए जाओ। हमरा अपने से आराम भैया से कोनो नाता रिश्ता न रखे के है। इतना कह के श्याम उठ के चल देलन। राम और श्याम दोनों भाई हतन। राम बड़ भाई और श्याम छोट भाई आ दीपक बाबू राम के मैनेजर हतन। ये लेल दीपक बाबू राम के कहला पर श्याम के कुछ समझावे आयल रहलन हा। भेल ई रहे कि राम जे व्यापार श्याम के साथे मिलकर करैत रहलन ओ में घाटा लग गेल। त राम उ घाटा के पूरा करे के लेल श्याम के ही धन संपत्ति के बेच के पूरा क लेलन। बाकी श्याम से एक ऐसन कागज पर हस्ताक्षर करा लेलन जैसे ये साबित होइत रहे कि श्याम अपना इच्छा से उ धन संपत्ति हुनका के बेचे ला देले हलन हा, जैसे व्यापार में लागल घाटा के पूरा कैल जा सके। श्याम भाई के चतुराई के न समझ सकलन आ हुनकर सब संपत्ति बिक गेल। श्याम के ई बात के पता चलल तब तक बहुत देर हो गेल रहे। इतना बड़ा विश्वासघात के उम्मीद न कैले रहलन। श्याम अपना भाई से विश्वासघात मिलला पर हरदम दुखी रहे लगलन। बाकी भगवान पर हुनका बहुत भरोसा आ विश्वास रहे, जेकरा कारण उ हिम्मत न हारलन। श्याम के मन में कोई छल कपट न रहे, उ हृदय के सीधा साधा इंसान हतन। ठीक एकरा विपरीत राम बहुत ही चालाक, चतुर और छल प्रपंची वाला स्वभाव के आदमी हतन। श्याम के दोस्त सब बहुत समझावे के कोशिश कैले रहस आ कहलन कि श्याम, तू भाई पर इतना भरोसा विश्वास न कर, तू तो अपन सब धन संपत्ति आँख बंद करके आ पूरा भरोसा करके हुनका हाथ में दे दिल हा। बाकी भविष्य में कहीं हुनकर नियत खराब हो गेल तो तोरा बहुत घाटा होतवा। तब श्याम कहलन कि दोस्त, हम भगवान पर भरोसा और विश्वास करके अपन सब धन संपत्ति राम भैया के दे दिली हा।

0: अब आगे जे भगवान के मंजूर होतन उहे होते। श्याम अपना भाई से तो कौनो रिश्ता नाता न रखे के सोचिए लेलन, बाकी राम के छल परपंच वाला स्वभाव के कारण हुनकर सब रिश्तेदार भी संबंध तोड़ लेलन। श्याम हरदम इहे बात के सोचित रहलन कि हम तो भैया के साथ कभी कोई खराब व्यवहार न कैली है, तो ऊ हमारा साथे काहे ऐसन कैलन। हुनकर निश्चल स्वभाव के ऊ फायदा उठा लेलन। राम तो छल परपंच करके धन इकट्ठा करके अपन कारोबार के तो चला लेलन, बाकी श्याम बहुत कर्जा में पड़ गेलन। ऐसन दिन भी देखे के पड़ल हुनका परिवार के साथ कि खाएला रोटी भी नसीब ना हो। कितना दिन ऐसन हो गेल कि दिन में भोजन मिलल त रात में उपासे रहे पड़ल। पहने ला अच्छा कपड़ा नसीब ना होए, साधारण कपड़ा पहन के पूरा परिवार कैसहु समय बितावे लगलन। लेकिन इतना दुख के बाद भी श्याम ईश्वर पर पूरा भरोसा और विश्वास बनवले रहलन कि भगवान एक दिन हुनकर दुख दूर कर देथिन। इहे दुख के दिन में श्याम के पत्नी मोहल्ला टोला के लड़की और बच्चा सब के घर में ही बुला के ट्यूशन पढ़ावे लगलिन। आ जे लड़की और महिला सिलाई बुनाई सीखे के चाहे ओकरो सब के सिलाई बुनाई कढ़ाई पेंटिंग आदि के शिक्षा दे के कुछ अर्थोपार्जन करे लगलिन, जैसे हुनका घर में बच्चा सब के साथ साथ अपनों दोनों पति पत्नी के दोनों साँझ भोजन मिले लगलिन। बाकी इतना से तो जीवन चले वाला न रहे। भगवान पर भरोसा रखे वाला श्याम के बचपन के एगो दोस्त एक दिन आयल और श्याम के सब हाल परिस्थिति सुन के बहुत दुखी भेलन और श्याम से कहलन, तू दोस्त चिंता न कर, हम तोरा के रुपया पैसा से मदद करब आ तू कोई व्यापार शुरू कर, बाकी उ चालाक आ चतुर भाई से कौनो नाता रिश्ता न रखी है, न तो उ फिर तोहरा से सब कुछ ठग लीहन। दोस्त के बात सुन के श्याम के मन में एक नया उत्साह जाग गेल और भगवान पर भरोसा रखे के फल हुनका मिललन। उ दोस्त श्याम के पास भगवान के ही भेजल दूत रहे। श्याम के मदद कैलन उ दोस्त और श्याम मेहनत आ लगन से एक नया व्यापार शुरू कैलन। दिन रात के मेहनत कैला पर श्याम के व्यापार खूब चले लागल। हुनकर पत्नी भी हुनका व्यापार के काम में हाथ बटावे लगलिन। दिन रात दोनों पति पत्नी खूब मेहनत करे लगलिन। हुनका सबके मेहनत कैला से व्यापार में दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति होए लागल। अब श्याम के दुख के दिन बीत गेल, लेकिन श्याम अपन दुख के दिन न भूलेलन और अपना कमाई के रुपया में से गरीब आ असहाय सबके भी भरपूर मदद करे लगलन। इससे गरीब सबके हृदय से निकलल आशीर्वाद श्याम के मिले लागल। व्यापार में श्याम के बढ़त गेलन आ खूब लाभ भी होत गेलन। जैसे जैसे श्याम के व्यापार में उन्नति होए लागल, तैसे तैसे राम के व्यापार में फिर से घाटा होए लगलन। बेईमानी या छल परपंची स्वभाव के कारण धोखाधड़ी के कारण हुनकर सब दोस्त संबंधी साथ छोड़ दिलन, जे कारण राम फिर से व्यापार में घाटा लगला के कारण कंगाल हो गेलन। एक दिन राम फिर से अपन मैनेजर दीपक बाबू के श्याम के पास भेजलन कि वो फिर से श्याम के अपनावेला तैयार हतन। बाकी श्याम यह लेल न मानलन। निश्चल हृदय के श्याम एक बार मन में सोचलन कि भैया के मदद कह देवे के चाहे, लेकिन वो दोस्त जे श्याम के व्यापार में मदद कैले रहे फिर से समझेलक, न श्याम ई गलती फिर दोबारा तू न कर, तू हुनका के अपन कर्म के फल भोगे द। श्याम अपन दोस्त के बात मान के दीपक बाबू से कहलन, दीपक बाबू राम भैया जे हमरा साथ विश्वासघात कैलन उ हुनका न करे के चाहत रहलन हा, बाकी उ अपन गलती के कारण पश्चाताप कर रहलन हा, तब भगवान हुनका के वैसा ही मदद करथिन जैसे हमरा के मदद कैलन हा। हमरा अब अपन कमाई से बहुत संतोष है, हम हुनका से कुछ मांगे न जायत हती आ न हुनका से हमरा कोई शिकायत है, बाकी अब हम हुनका साथे न कोई व्यापार करब और न कोई संबंध रखब। दीपक बाबू जे हम हुनका पर पूरा विश्वास करके व्यापार कैली आ संबंध रखली ओकर फल तो हम भोग लेली, देखली हुनका विश्वासघात कैला पर कितना कर्जा में हम डूब गेली, कितना दुख के दिन हमरा देखे के पड़ल, लेकिन हम संतोष से रहली आ भगवान पर पूरा भरोसा आ विश्वास कैली, तब भगवान हमरा के मदद करके फिर से सुखी जीवन देलन हा। दीपक बाबू यही से कहल गेल है कि संतोष के गाछ में मेवा फड़ल।
1: अखनी अपने सब सुनित रही रेणु सिन्हा के खिस्सा, शीर्षक रहे संतोष के गाछ में मेवा। अब कार्यक्रम में आगे बढ़े थती आ बात करे थती बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर के विषय में।

महाबोधि मंदिर जे कि बिहार के बोधगया में स्थित है, ई एगो पवित्र स्थल है जहाँ भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्त भेल रहे। ई मंदिर बौद्ध धर्म के चार प्रमुख तीर्थस्थल में से एक है। ई मंदिर के 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के दर्जा देल गेल। ई मंदिर के निर्माण मौर्य सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कैल गेल रहे। ई प्राचीन भारत के ईंट से बनल वास्तुकला के सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ई मंदिर के ठीक नीचे स्थित एगो पवित्र पत्थर है जहाँ बैठ के भगवान बुद्ध अपन ध्यान लगावत रहतीन आ ज्ञान प्राप्त कैले रहतीन। आ मंदिर परिसर के पश्चिम में स्थित उहे विशाल पीपल के पेड़ है जेकरा नीचे भगवान बुद्ध तपस्या कैले रहतीन। ई मंदिर के साथ सजावट बड़ा ही भव्य है। कहे के मतलब है, मंदिर के मुख्य शिखर लगभग 50 मीटर ऊंचा है जे पिरामिड के आकार के है आ एकर शीर्ष पर स्तूप के कलश लगल है। ई मंदिर परिसर में बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से जुड़ल 7 अलग अलग पवित्र स्थल मौजूद है जहाँ भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद एक एक सप्ताह बीतैलन। बोधगया मंदिर के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी प्रभावशाली रहल। मतलब ई मंदिर के वास्तुकला के प्रभाव पूर्वी आ दक्षिण पूर्वी एशिया के कित्ते देश पर पड़ल। चीन आ थाईलैंड के कित्ते बौद्ध मंदिर एकरा से प्रेरित भेलन। तो एनाहिते ई महाबोधि मंदिर आज दुनिया भर के अनुयायी आ ध्यान करे वाला लोग सबके लेल सबसे महत्वपूर्ण आ श्रद्धा के केंद्र बनल है। तब बात अपन धरोहर में आई हम बात कैली बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर के, जेकरा भारत के विश्व धरोहर स्थल में शामिल कैल गेल है। तब बात अपन धरोहर में बस इतनी। अब समय हो रहल है शब्द सरिता की। बज्जिका के शब्द सरिता में सबसे पहले एगो शब्द आयल है निम्मन, जकर मायने होइए अच्छा। जेना कि लोग कहत हथिन कि गर्मी के दिन में हमरा सूती कपड़ा पहनना बड़ा निम्मन लगैया, मतलब अच्छा लगैया। तो निम्मन के मायने भेल अच्छा लगना। एनाहिते एगो औरो शब्द है झमटगर, एकर मायने भेल घना। जेना लोग कहत हतन कि झमटगर पेड़ के नीचे, मतलब घना पेड़ के नीचे छाया रहैया, जेकरा नीचे बैठ के ई धूप के समय आराम कैल जा सकैया। तो झमटगर के मायने भेल घना। बज्जिका के एगो और शब्द है हहरू, जेकर मायने भेल मन छोटा होना। जेना लोग कहत हतीन छोट बच्चा अगर खिलौना के लिए रोए तो हुनका खिलौना दिलवा देवे के चाही, नहीं तो बच्चा हहरू हो जाइए, मतलब हुनकर मन छोट हो जात है। तो हहरू के मायने भेल मन छोटा होना। गुमान, एकर मायने भेल गर्व होना। जेना लोग कहत हतीन कि उ लड़का के अपन होशियारी पर, अपन तेज बुद्धि पर बहुत गुमान है, मतलब बहुत गर्व है। तो गुमान के मायने भेल गर्व होना। शब्द सरिता के अंत में एगो शब्द है जोगा के, एकर मायने भेल संभालना। जेना लोग कहत हतीन ई महंगाई के जमाना में रुपया पैसा जोगा के रखे के चाही, मतलब संभाल के रखे के चाही, उहे पैसा मुसीबत के समय काम आवैया। तो जोगा के मायने भेल संभाल के रखना। ई रहे शब्द सरिता के कुछ खास शब्द आ ओकर मायने। अब कार्यक्रम अपन समाप्ति पर है। अंगना कार्यक्रम अपने के कैसन लगैया, अपने अपन विचार के एगो चिट्ठी आ हमर ईमेल आईडी के माध्यम से हमरा भेज सकत हती। हमर पता है बज्जिका कार्यक्रम अंगना द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा। पिन कोड है 8460004। ईमेल आईडी है akashwanidarbhanga@gmail.com। तो अब समय हो रहल है अपने से विदा लेवे के। प्रस्तुतकर्ता मितेश कुमार मिश्रा के संग हम विजेता सिन्हा एक बेर फिर से अपने सबके प्रणाम करे थती।

अभी आप बज्जी का कार्यक्रम अंगना सुन रहे थे। आलेख संकलन एवं वाचन विजेता सिन्हा का था और प्रस्तुतकर्ता थे मितेश कुमार मिश्रा। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी दरभंगा है। अभी आप सुन रहे हैं पहली सभा के कार्यक्रम। कार्यक्रमों को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवाते हैं उपशास्त्रीय संगीत। आज की कलाकार हैं ढोंडुताई कुलकर्णी।

आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे थे धुंडुताई कुलकर्णी का गायन। ये गायन हम आपको सुनवा रहे थे उप शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार। बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जहाँ पेड़ और पानी साथ हों वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी ऐसा ही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों वहाँ जीवन में भी खुशहाली आ जाती है।
3: बहुत बहुत सुंदर संदेश आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों में हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ सरगुजा से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिवा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा।
2: बोरखेड़ा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नैना जैन, दीपक, मयंक मूणत और चेतन नाहटा।
3: अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का। बड़ी सुंदर प्रतिक्रिया भेजी है, आइए सुनते हैं।
2: नमस्कार। एक सप्ताह में उमंग कार्यक्रम हमें इतनी अधिक जानकारी से समृद्ध कर देता है कि कार्यक्रम की समीक्षा में आपसे किस अंक की चर्चा करें और किस अंक को छोड़ें ये दुविधा हो जाती है, क्योंकि उमंग का प्रत्येक अंक अपनी खासियत लिए होता है।
3: आपने आगे लिखा है, हम हर एक अंक को नियमित

0: से सुनते हैं। 27 अप्रैल सोमवार को भारत की प्रथम महिला पायलट सरला ठकराल के प्रेरक व्यक्तित्व की नाट्य प्रस्तुति सुनी और जान सके कि उनके ससुर श्री के एस शर्मा जी का कितना बड़ा योगदान उनको पायलट बनाने की मुहिम में रहा। आपने आगे लिखा है,
1: 28 अप्रैल को उमंग कार्यक्रम में भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा के अंतर्गत गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था पर सरल शब्दों में पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई। 30 अप्रैल को नालंदा विश्वविद्यालय और 1 मई को तक्षशिला विश्वविद्यालय पर दुर्लभ संग्रहणीय जानकारी मिली। उमंग की पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद और आभार।
0: तो कृष्ण कुमार गुप्ता जी, आपको भी हमारा आभार इस प्रोत्साहन से भरे संदेश के लिए। हम आपकी उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाओं की सचमुच सराहना करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा जी का।
1: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी और प्रमोद कुमार डूडी।
0: आप सभी श्रोताओं को संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब प्रस्तुत है हमारी रोचक जानकारी से भरी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। आप सबका स्वागत है श्रृंखला में। श्रोताओं, पिछले कई हफ्तों से हम कर रहे हैं भूगोल यात्रा।
1: हमने रोचक चर्चा की समुद्रों की, वर्षा वनों की और मैंग्रोव वनों की। तो अजीत जी, आज हम अपनी भूगोल की यात्रा में उमंग कार्यक्रम के माध्यम से कहाँ चल रहे हैं?
0: विमलेश जी, आज ही नहीं, इस पूरे सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
1: शीत मरुस्थल? ये कैसी बात हुई अजीत जी? हमने तो अक्सर सुना है कि मरुस्थल गर्म होते हैं और वहाँ रेती रेत होती है।
0: जी विमलेश जी, दरअसल होता यह है कि जब भी हम मरुस्थल सोचते हैं ना, तो अक्सर हमें रेत के टीले और गर्मी याद आती है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन तथ्य कुछ और है।
1: जी।
0: दरअसल मरुस्थल की पहचान गर्मी और रेत से नहीं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि कहा जाए तो कम वर्षा से होती है।
1: जी, तो आज हम किस शीत मरुस्थल की बात करेंगे
0: बताइए।
1: मैंने पढ़ा था कि पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका।
0: जी वो तो है।
1: श्रोताओं, आपको बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। ये दुनिया के सबसे अद्भुत स्थानों में से भी एक है। इसके बारे में जानना ऐसा है मानो किसी दूसरी दुनिया के बारे में जानना।
0: जी विमलेश जी, श्रोताओं, यहाँ सालाना 50 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसका क्षेत्रफल 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 1.42 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ लगातार हिमपात होता रहता है।
1: जी श्रोताओं, इसे पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। यहाँ का सबसे कम तापमान लगभग -90 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। जरा सोचिए, ऐसी ठंड के यहाँ सांस लेना भी एक चुनौती है। ऐसी ठंड है इस जगह पर कि यहाँ के वाहनों के और अन्य मशीनों के इंजनों को भी हमेशा चालू रखा जाता है, क्योंकि इंजन यदि बंद कर दिया गया तो ईंधन मात्र 3 सेकंड में ही जम जाएगा।
0: और श्रोताओं, साथ ही साथ इनकी बैटरीज भी काम करना बंद कर देंगी।
1: जी,
0: आपको बता दें कि यहाँ के लिए वाहन विशेष रूप से बनाए जाते हैं।
1: यहाँ की दो और बेहद रोचक बातें। पहली ये कि यहाँ के कुछ इलाकों में साल भर अक्सर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी गति लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इतनी तेज कि इंसान भी खड़ा नहीं हो सकता।
0: तो ये तो हुई पहली रोचक बात। अब आइए करते हैं दूसरी रोचक बात, क्या है?
1: दूसरी रोचक बात ये है कि यहाँ कई ऐसी घाटियां हैं जहाँ बर्फ बिल्कुल नहीं पड़ती। ये ड्राई वैलीज कहलाती हैं। वैज्ञानिक इसे प्रकृति का अनोखा करिश्मा मानते हैं कि जहाँ पर्वत पर चारों ओर बर्फ पड़ रही है, उन्हीं पर्वतों की घाटियों में भला बर्फ क्यों नहीं पड़ती।
0: विमलेश जी, हमारा उमंग प्रसारण शैक्षिक है।
1: जी,
0: तो जरा बच्चों की भी बात कर लें। एक प्रश्न है मेरा कि क्या अंटार्कटिका के शीत मरुस्थल में बच्चे स्कूल जाते हैं?
1: अजीत जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर है, यहाँ भी बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ कोई स्थायी जनसंख्या तो नहीं है, सिर्फ कुछ शोध केंद्र हैं जहाँ शोधकर्ता वैज्ञानिक और अनुसंधान केंद्र के कर्मचारियों और कुछ सैनिक अपने बच्चों के साथ रहते हैं। यहाँ के कुछ क्षेत्रों में विशेष स्कूल चलाए जाते हैं जिनमें बच्चे पढ़ते हैं।
0: विमलेश जी, आपने कहा कि यहाँ अनुसंधान केंद्र है।
1: जी,
0: हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि वैज्ञानिक यहाँ किस प्रकार का अनुसंधान करते हैं।
1: अजीत जी, यहाँ अनुसंधान के मुख्य विषय हैं जलवायु, शीत मरुस्थल के जीव और अंतरिक्ष इत्यादि।
0: जी
1: श्रोताओं, ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि शीत मरुस्थलों में भारतीय वैज्ञानिकों के दल ने भी 9 जनवरी 1982 को कदम रखा। भारत के अंटार्कटिक अभियान को ऑपरेशन गंगोत्री भी कहते हैं। बाद में यहाँ भारत द्वारा दक्षिण गंगोत्री के नाम से शोध केंद्र की स्थापना हुई।
0: तो अब विमलेश जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, हमारे श्रोताओं की ओर से है ये। मेरा प्रश्न है कि अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में पाए जाने वाले जीव कौन कौन से हैं?
1: अजीत जी, यहाँ पाए जाने वाले जीवों में मुख्य हैं पेंगुइन, जो शानदार तैराक भी होते हैं, ध्रुवीय भालू, सील, वेल और

0: समुद्री पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं जो यहाँ के कठोर वातावरण में भी जीवन को बनाए रखते हैं।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच तो ये है कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, जीवन अपना रास्ता बना ही लेता है
0: जी।
1: यही तो जीवन की खूबसूरती है।
0: बिल्कुल।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी।
0: और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है,
1: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए।
1: प्रश्न का उत्तर भेजने के लिए आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे ईमेल के पते पर भी हमें संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: आप CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप NCERT की ध्वनि पाठ्य पुस्तकों को सुनना चाहते हैं तो आप इन्हें दीक्षा और NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है लुई पाश्चर।
0: इस कार्यक्रम में महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उनकी उन खोजों के बारे में बताया गया है जिनके कारण खाद्य सुरक्षा और जीवाणुओं से होने वाले विभिन्न रोगों के प्रति चिकित्सा विज्ञान की अवधारणा में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए।
2: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
3: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पाश्चर आई वुड बी नथिंग।
2: 27 दिसंबर सन 1892, सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान के दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मॉन्सिनर द अबेडी उन्हें यह मेडल प्रदान करेंगे।

0: लोगों ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है। उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
2: रिमेम्बर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
3: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
1: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
3: लुई पाश्चर का बचपन

0: बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
1: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
2: देखो मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते हैं।
3: हाँ ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
2: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
3: हाँ मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
2: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
1: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।
4: चलो
5: अरे भेड़िया, अरे भेड़िया।
1: लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
0: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लोहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
4: चलो चलो चलो चलो,
6: अरे
4: पकड़ो,
6: चलो चलो चलो, मुझे
7: ठहरो, लोहा गर्म हो रहा है।
4: ये लीजिए, बिल्कुल लाल हो गया।
1: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पाश्चर घबरा गए।
0: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
1: 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में 4th स्थान प्राप्त किया।
0: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
1: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
0: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
1: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन

0: नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
1: लुई पाश्चर
2: सर,
1: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
2: कहिए सर।
1: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहाँ बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
2: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
1: ठीक है।
3: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है, और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
0: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है। और अच्छी बात यह है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन है।
3: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
0: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
3: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
0: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
3: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
0: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
3: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
0: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
3: तो फिर उन्होंने क्या किया?
0: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
4: अरे आजा आजा आजा।
5: हाँ,
4: इंजेक्शन लगा दूं?
5: आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगी।

0: और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी। हाँ,
1: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताई।
2: सर, सर ये टेलीग्राम।
0: अच्छा, लाओ दिखाओ। हाँ, अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
2: क्या हुआ सर?
0: देखो, टीके वाली सभी भेड़े बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
2: कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो सर।
0: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़े मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं?
2: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
0: हाँ चार्ल्स।
1: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
3: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
4: सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ, पैरों और जांघ पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
0: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
4: डॉक्टर साहब, कुछ तो करिए, वरना मेरा बेटा।
0: देखिए आप,
4: ओ गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
0: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ,
4: मेरा अच्छा, बेटा।
0: अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा। हाँ।
1: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
3: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
1: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
3: पाश्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पाश्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
1: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, जब नाजियों ने पाश्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पाश्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पाश्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
3: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पाश्चर के दिमाग में थे, वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पाश्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
1: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
0: इस तरह मैं और ज्यादा

0: çizecekti.
1: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पास्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पास्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रे डेम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, माई ग्रैंडफादर वॉज द जेंटलेस्ट विद द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट मोस्ट अफेक्शनेट एंड सेंसिटिव इंडिविजुअल ही वॉज अ ह्यूमनिस्ट ऑलवेज वर्किंग टूवर्ड्स द इंप्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन कंडीशन।
2: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लुई पाश्चर और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो मुझे यानी अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। दिन के 12 बजने वाले हैं। अब समय है फिल्म संगीत का। आइए आनंद लेते हैं कुछ नए फिल्मी गानों का।

ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म फतेह से। विशाल मिश्रा और आशीष कौर की आवाजें हैं। सब्बीर अहमद का लिखा ये गीत है, संगीत भी सब्बीर अहमद ने ही दिया है। आइए आनंद लीजिए फिल्म फतेह के इस गीत का।

0: लगे हैं अपने 50 साल।
1: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
0: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
2: आकाशवाणी दरभंगा।

0: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
1: कार्यक्रम में आप सुन रहे थे सोनू निगम को फिल्म एनिमल में। ये नए गाने आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है रविवार 12 मई 2026 को प्रसारित हेलो जिंदगी का संपादित अंश।

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: ये कामयाबियाँ, ये इज्जत, ये नाम तुमसे है ऐ मेरी माँ, मेरा सारा मकाम तुमसे है। तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब, मेरे वजूद का सारा निज़ाम तुमसे है। ये कामयाबियाँ, इज्जत, ये नाम तुमसे है ऐ मेरी माँ, मेरा सारा मकाम तुमसे है। माँ जिसे सृष्टि का आधार कहा गया, माँ जिसे करुणा और त्याग का स्वरूप कहा गया, माँ जिसे ममता की प्रतिमूर्ति कहा गया, माँ जिसे परिवार का संबल कहा गया, माँ जिसे साक्षात ईश्वर का रूप कहा गया। यूं तो अपने देश में अपनी सांस्कृतिक परंपरा के अनुकूल मातृदेवो भवः की सर्वोच्च मान्यता रही है और हर दिन माँ पिता के प्रति कृतज्ञ भाव के साथ उन्हें प्रणाम कर आशीर्वाद लेने की परिपाटी भी रही है। किंतु लगातार बदलती सोच और बदलते पारिवारिक सामाजिक ताने बाने के बीच कतिपय अंधानुकरण की दौड़ में हम अपने ही पारंपरिक दायित्वों और कर्तव्यों को भुलाने में लगे हैं। छद्म आधुनिकता की तामझाम में माँ अपनी संतान के प्रति उच्च आदर्श सम्मत दायित्वों और कर्तव्यों के निर्वहन कर पा रही हैं क्या? माँ और संतान के पारस्परिक संबंध, उनके दायित्व और कर्तव्य हैं क्या? इन्हें समझने और इस पर अमल करने की आवश्यकता आखिर हमें क्यों है? गांव से लेकर शहर और महानगर तक टूटते बिखरते परिवारों की दास्तानों में क्या माँ की सुबकियाँ भी शामिल नहीं हैं? क्या हमारे बदल रहे पारिवारिक सामाजिक मानकों और दरकती मान्यताओं के बीच माँ उपेक्षित और पीड़ित नहीं है? इन जैसे अनेक बेहद महत्वपूर्ण तथ्यों पर केंद्रित है आज का हमारा ये कार्यक्रम जिसका नाम है हेलो जिंदगी। श्रोताओं नमस्कार, संजय की तरफ से माँ एवं संतान के पारस्परिक संबंध और दायित्व, यही है आज की हेलो जिंदगी का विषय। और इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए आप श्रोताओं की जिज्ञासाओं से भरे प्रश्नों के उत्तर और परामर्श देने के लिए बतौर विशेषज्ञ आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं जानी मानी शिक्षाविद प्रोफेसर पुष्पम नारायण। प्रोफेसर पुष्पम नारायण, आपका स्वागत, नमस्कार।
2: नमस्कार संजय जी,
1: कैसी हैं आप ये बताइए।
2: मैं अच्छी हूँ।
1: प्रोफेसर पुष्पम नारायण जी कहाँ से आती हैं और जहाँ तक का ये सफ़र है, एक शिक्षाविद के तौर पर जहाँ पहुँची हैं आप?
2: मैं एक वैसी माँ की पुत्री हूँ जिन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, साथ ही समाज में सेवा किया और

0: शिक्षा के क्षेत्र में उच्च पदों को आसीन रहते हुए भी उन्होंने हम सबों का बड़ा ही संस्कारिक रूप से पालन पोषण किया, और मैं उसके बाद पढ़ लिख कर संगीत के क्षेत्र में आगे आई। अच्छा। साहित्य के क्षेत्र में आगे आई, विज्ञान के क्षेत्र में आगे आई, और जहाँ रोजी रोटी का सवाल हुआ तो मैं विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग में अध्यापक के पद पर ज्वाइन किया, और आज उस पद पर निरंतर आगे बढ़ते हुए मैं प्रोफेसर के पद पर हूँ, और विश्वविद्यालय ने हमें एकेडमिक डीन के रूप में उन्होंने मुझे सुशोभित किया है, और मैं उस पद पर सफलतापूर्वक कार्य कर रही हूँ। इसके साथ साथ मैं एक कुशल गृहिणी भी हूँ।
1: अच्छा।
0: और जी जी। हाँ। दो बेटियों की माँ भी हूँ, और एक संस्कारिक रूप से अपने बच्चों का भी पालन पोषण कर रही हूँ। और मेरे जीवन का एक ध्येय है कि जहाँ भी कोई भी ऐसी बच्ची जो आगे बढ़ने के लिए इच्छुक है, ऐसे बच्चियों को आगे बढ़ाना, ये मेरा एक अपना, ऐसा कहा जाए कि एक मेरा जुनून है।
1: आज बहुत अहम विषय है, जो माँ है उनके लिए भी और जिनकी माँ है उनके लिए भी, दोनों के लिए बड़ा बेहद महत्वपूर्ण है।
0: देखिए संजय जी, माँ शब्द जो है ना, ये एक ऐसी प्रतिमूर्ति है जिसको सिर्फ एहसास किया जा सकता है। ऐसा भी आप सुने होंगे कि जब माँ किसी बच्चे को जन्म देती है तो उस माँ का पुनर्जन्म होता है। तो ईश्वर, चूंकि हर जगह माँ किसी के साथ नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने दूसरे भगवान के रूप में उन्होंने माँ को भेजा है।
1: सही।
0: तो माँ बिल्कुल मातृ देवो भव जो आप बोलते हैं, तो बस ये उसी की परिकल्पना है। और माँ जो करुणा की मूर्ति है, त्याग की प्रतिमूर्ति है, आप उनको जो भी कह लें, जितने भी वैसे शब्दों से सम्मानित कर लें, वो कम पड़ जाएगा एक माँ के लिए।
1: सही बात है।
0: माँ एक एहसास है। देखिए, आज ऐसा संयोग है, पिछले महीने
1: जी
0: आज की तारीख को ही मैं माँ के महाप्रयाण यात्रा में थी। आज के दिन ही मेरी माँ यहाँ से विदा हो ली थी।
1: कॉल आया हुआ है, बात कर लेते हैं फिर।
0: हाँ, जरूर।
1: जी नमस्कार। हेलो।
2: हेलो, नमस्कार सर। जय हिंद।
1: जय हिंद
2: जी। मैं मोहन पासवान गांव बसतपुर से प्रखंड बहादुरपुर जिला गंगा सिंह सर बोल रहा हूँ।
1: जी मोहन पासवान जी, बताइए।
2: जानना चाहता हूँ कि एक माँ के लिए दूध में पल रहे बच्चे, उम्र बढ़ने पर बंदरों की तरह खेल रहे बच्चे, किसी किस तरह के विचारों से सच्चे सूत्र में डाले जाए, जिससे माँ और संतान का पारस्परिक जीवन को मजबूत बनाया जा सकता है सर। दूसरा सर, कि विज्ञान विकास का कारण है तो विनाश का सूत्रधार विज्ञान में है सर, तो इस वैज्ञानिक युग में माँ और संतान के साथ समाज के जो संबंध को किस तरह से मजबूत किया जाए, जिससे डिजिटल सेवा के दुरुपयोग और होने वाले हानि से बचा जा सके। तीसरा है सर, कि एक माँ का ही संतान होता है, एक भारत वही संतान भारत माता के संतान कहलाता है। इस बच्चों सामाजिक संबंध को मजबूत रखते हुए इनको किस प्रकार का दायित्व और कर्तव्य निभाने का दायित्व दिया जाए सर?
1: पूरे कार्यक्रम की बात आपने रख दी है, सुनिएगा ध्यान से, बढ़िया से मोहन पासवान जी, अच्छे से सुनिएगा। प्रोफेसर पुष्पम नारायण आपकी बातों को सुन रही हैं और वो एक एक कर सारी बातों का जवाब देंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहन पासवान जी।
2: जी प्रणाम सर।
1: जी प्रणाम आपको भी। तो ये सारे सवाल आ गए, एक और श्रोता जुड़ गए हैं, तो पहले उनसे भी बात कर लें। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं। हेलो। जी प्रणाम, अपना नाम बताइए। हाँ, कौन बोल रहे हैं? क्या पूछना है अक्षरा सिंह, क्या जानना है ये बताइए।
3: मम्मा के बारे में पूछना चाहती हूँ।
1: हाँ पूछिए ना।
3: मेरी मम्मा प्यार करती है, हाथ में बना देती है।
4: आपकी मम्मा बहुत अच्छी
3: है, नहा देती है।
1: क्या बात है।
3: प्यार करती है।
1: अच्छा, आप क्या करती हैं मम्मा के साथ, ये बता दीजिए। आप अच्छा अच्छा ये सब आप मम्मा के कहने पर करती हैं, है ना? तो ऐसे ही जो जो मम्मा कहें वो किया।

0: कीजिए, आपके लिए बहुत बेहतर है। पढ़ाई करती है अक्षरा? अच्छा, किस क्लास में है? चलिए, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। सुनिएगा, अक्षरा की मम्मा जो है सो बहुत अच्छे से इनको प्यार करती हैं, दुलार करती हैं, ये बदले में ABCD की पढ़ाई भी करती है। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षरा। रेडियो पर सुनिए क्या बोल रही हैं पुष्पम मैम, ठीक है ना? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत अच्छी बात है, माँ की बात माननी चाहिए। माँ हमेशा अच्छी बात करती हैं, पढ़ने को बोलती हैं, आपको खाना प्रेम से खिलाती हैं, समय से स्कूल भेजती हैं। तो आप भी खूब मन से पढ़िए और अपनी मम्मी की बात मानिए, जो मम्मी कहें वो बात मानिए, तो आप बहुत अच्छी बच्ची बनेंगी, आगे बहुत अच्छा आगे करेंगी। ठीक है अक्षरा।
0: फ़ोन तो डिस्कनेक्ट हो गया है और इस समय सुने कि हमारे अगले श्रोता कौन है। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
2: मेरा नाम है चंद्रेश्वर सा ब्रह्मपुर जाने प्रखंड से बोल रहा हूँ सर। दुनिया में हम लोग को भी और आगे आने वाला पीढ़ी को भी माँ और बाप दुनिया में सबसे बड़ा स्थान है, सबसे बड़ा स्थान है।
0: सही,
2: पुस्तकालय पुस्तकालय कुछ रखा रहता है कि हम लोगों को काम देता है, आगे वाले बच्चों को काम देता है, तो सही माँ बाप का आशीर्वाद और दुर्वचन भी शुभ होता है
0: जी। चंद्रेश्वर शाह जी, आपने जितनी बातें कही बहुत अच्छी बातें हैं और हर किसी को ये बातें सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए और करनी भी चाहिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। माँ बाप डांट देते हैं, डपट देते हैं, कभी कभी ऐसी बातें भी कह देते हैं जो बहुत तीखी लगती हैं, लेकिन इन्होंने खुद ही कहा है ये सारी बातें हमारे लिए ही होती हैं और उसे भी आशीर्वाद ही समझना चाहिए।
1: आशीर्वाद होता ही है, अपनी अपने लाभ के लिए कुछ नहीं कहते।
0: सही बात है। और आते हैं मोहन पासवान जी की बातों पर।
1: ये मैं पहले सवाल का आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब बच्चा छोटा होता है तो माँ से ज़्यादा संपर्क उसका होता है, लेकिन बच्चा जब बड़ा होता है तो बच्चे का भी दायित्व बन जाता है, उसे पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो वो पढ़ाई की ओर झुकाव होता है। उस परिस्थिति में माँ के स्वभाव में बदलाव थोड़ा बहुत इसलिए आता है कि बच्चा हमारा कैसे अच्छा बने, कैसे वो अच्छा नागरिक बने, कैसे वो सुसंस्कृत बने, कैसे वो अपनी जिम्मेवारी संभाले, तो इसको दूरी नहीं कहा जा सकता। माँ तो हर पल सिखाती है बच्चों को, तो इसलिए ये दूरी नहीं होता है। बच्चे आज के आपाधापी के समय में बच्चों के पास आप देखते हैं बस्ता का बोझ जो बढ़ गया है, उस बस्ते के बोझ को करते हुए एक माँ हमेशा ये देखती है कि उसका होमवर्क तैयार हुआ कि नहीं, कल वो स्कूल जाएगा किस तरह का ड्रेस पहनेगा, आजकल के आज प्रोजेक्ट वर्क ले जाना है तो आज असाइनमेंट ले जाना है, तो एक माँ ये सारी चीज़ों की चिंता करते हुए उस बच्चे को आगे प्रमोट करती है पढ़ने के लिए।
0: उतना ही नहीं, अगर दो दिन टिफिन जो है ना खाना वापस आ जाए
1: तो
0: अगर सबसे ज़्यादा परेशान होती है तो माँ होती है। इतना मनोयोग से बना कर देती हूँ खाने के लिए।
1: हाँ, और वो बच्चा खा नहीं पाता, तो ये दुराव या दूरी नहीं है, बच्चों के ऊपर भी बर्डन बढ़ता जा रहा है और माँ की भी सोच ये होती है कि हमारा बच्चा इस एज में आ रहा है, तो एक उसको उस उम्र की भी एक वो रहती है कि इस उम्र में हमारे बच्चे को अच्छे से परवरिश चाहिए, कहीं रास्ता बिगड़ ना जाए, वो भटक ना जाए, तो ये सारी चिंताएँ माँ करती है। देखिए माँ एक मनोचिकित्सक भी होती है
0: सही
1: अपने
0: है।
1: बच्चे की वो देखती है मेरा बच्चा आज क्यों स्कूल से आया है तो थोड़ा नाराज है, या कॉलेज से आया है तो क्यों इस तरह से, तो वो बहुत ही मनोचिकित्सा के रूप में उस चिकित्सक के तरह वो उसके साथ व्यवहार करती है और फिर उस बच्चे से उस बात को निकलवा लेती है कि हमारा बच्चा क्यों परेशान है।
0: एक बच्ची अगर बच्ची है सामने ना, तो मैंने कई बार माँ को बच्ची बना हुआ देखा है।
1: हाँ,
0: एकदम बच्ची की तरह बात करेगी उससे और धीरे धीरे सारी बातें निकाल लेती
1: है। तो एक माँ तो प्रथम गुरु होती है, उस घर के उस परिवार के उस बच्चे की प्रथम गुरु माँ होती है, तो उसे सब पता है कि मेरे आज मेरे बच्चे क्यों इस तरह से हैं, कहीं ना कहीं जरूर कोई बात है, और वो उसकी चिकित्सा कर देती है और बच्चा संतुष्ट हो जाता है। दूसरा सवाल जो आपने किया है कि इस वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिक युग से मुझे लगता है।

0: का जो तात्पर्य था, आज जो ये डिजिटल दुनिया हो गई है,
1: सही, सही।
0: हर के हाथ में मोबाइल देखेंगे, घर में टीवी देखेंगे, बच्चे पढ़ रहे हैं ना पढ़ रहे हैं, ये महिलाओं की भी कमजोरी हो गई है आजकल। कोई सीरियल नहीं छूटना चाहिए।
1: एक श्रोता जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना।
2: नमस्कार, मैं दिनेश मिश्रा।
1: हाँ दिनेश मिश्रा जी, कैसे हैं ये बताइए। हाँ हाँ, शिक्षक हैं आप।
2: हाँ
1: दिनेश मिश्रा,
2: आपको प्रणाम।
1: आपको भी मेरा सादर प्रणाम। जी
2: आज के जो शिक्षक दिया है पुष्प नारायण जी।
1: हाँ हाँ,
2: पुष्प नारायण जी।
1: जी प्रोफेसर डॉक्टर जी,
2: खास से प्रणाम।
1: उनकी तरफ से भी निवेदित है। जी
2: हाँ बोलिए
0: जी। जी नमस्कार,
2: कर्नाटक की प्रणाम मैम। आज का मेरा प्रश्न है कि आज का जो भौतिकवादी युग है
0: जी,
2: मातृ गर्भ से लेकर के पालन पोषण शिक्षा दीक्षा तक साथ देती है संतान को
0: जी,
2: लेकिन जब एकल परिवार का चलन हुआ है तब से लगभग माता पिता की ओर संतानों का दायित्व कम होते जा रहा है। क्या वजह हो सकता है इसको इसका निराकरण कैसे किया जाए ताकि समाज में समरसता बनी रहे।
1: चलिए आपकी बात स्पष्ट दिनेश मिश्रा जी, ये सिर्फ प्रश्न नहीं है, ये एक बहुत बड़ी एक चिंतनीय बात भी है। बहुत बहुत आभार आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इतने बढ़िया जिज्ञासा को व्यक्त करने के लिए भी बहुत बहुत नमस्कार जी, धन्यवाद।
2: प्रणाम।
1: एक सवाल भी था हमारा, क्या एकल परिवार की परिकल्पना ने माँ के प्रति दायित्व और कर्तव्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। ऑलरेडी हम इस पर चर्चा करने वाले थे भी, दिनेश मिश्रा जी की भी बातें आ गई हैं।
0: हाँ।
1: लेकिन बात वहीं से शुरू कीजिए जहाँ आपने छोड़ा है, आधुनिकता के इस कालखंड में।
0: नहीं मैं देखती हूँ घरों में देखने को ये मिलता है कि माँ बैठ गई, टाइम हुआ बिल्कुल सीरियल देखने बैठ जाती है, बच्चे आए बस्ता पटके खुद से जूता मोजा खोल रहे हैं, खाने को चिल्ला रहे हैं। बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है उस बच्चे पर कि वो बच्चा पढ़ के आया उसके बाद उसको अपनी माँ से प्रेम चाहिए, प्यार चाहिए, समय पर भोजन चाहिए। तो माँ के लिए मुझे ये कहना है कि वो डिजिटल दुनिया में रहें, अपने को अपडेट रखें, लेकिन अपने बच्चों अपने दायित्वों को ताक पर रख के नहीं। और एक तीसरा सवाल आपका था कि हर माँ को ये शिक्षा देनी चाहिए। मैं तो माँ हूँ लेकिन जिस धरती पर मैं खड़ी होती हूँ वो मेरी धरती माँ है। उसने मुझे आश्रय दिया, उसने मुझे जगह दिया, खड़े होने के लिए एक जमीन दी है।
1: सही।
0: तो हमें उस माँ के लिए भी सोचना है, उस माँ की रक्षा के लिए भी हमें तत्पर रहना है।
1: ये हमारी तो, हमारी जो है ना सांस्कृतिक परंपरा रही है, धरती को हम माता
0: कहते हैं, सुबह उठकर धरती माँ को स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं।
1: श्रोता जुड़े हुए, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
3: नमस्कार संजय, मैं किशुन कुमार मंडल मुंबई से बोल रहा हूँ।
1: किशुन कुमार मंडल जी बताइए, क्या जिज्ञासा है या कुछ कहना है?
3: यही कहना है मदर डे पे सबको प्रणाम। मैं बोला कि अभी मदर डे तो मनाते हैं, आपका फादर्स डे क्यों नहीं मनाते?
1: फादर्स डे भी है, ऐसा नहीं है, है। और आप चाहेंगे हाँ बिल्कुल, और फादर्स डे भी लोग उसी मनोयोग से पूरे विश्व भर में मनाते हैं
3: है। और बच्चे लोगों के क्या, माँ के प्रति क्या कर्तव्य है, आप माँ का क्या कर्तव्य?
1: पूरा कार्यक्रम उसी पर है किशुन कुमार मंडल जी, सुनिएगा। किशुन कुमार मंडल जी जुड़ने के लिए, कार्यक्रम सुनने के लिए बहुत आभार, धन्यवाद आपका। दायित्व पर चर्चा करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, अधिकार तो सब है, माँ के प्रति अधिकार तो है, लेकिन दायित्व की समझ और एकल परिवार की चिंता जो आई थी ना उस बात में, दिनेश मिश्रा जी जो कर रहे थे वो भी एक है। लेकिन सवाल वही है कि ऐसी माँ जो कामकाजी है, ऐसी माँ जो आपकी तरह है, सुबह उठती हैं, तैयार होती हैं, कौन कौन से क्लासेस हैं, है ना, पढ़ानी है, फिर आपके लिए भी बच्चे की तरह प्रोजेक्ट वर्क है, छात्र छात्राओं को तैयारी करानी है, कौन सा राग कहाँ से शुरू करें, आलाप मध्य लय द्रुत गति, ये सारी चीज़ें आपसे भी जुड़ी हुई हैं। तो एक कामकाजी महिला होने के नाते आपसे बेहतर इस सवाल का जवाब कौन दे सकता है?
0: जी जरूर, मैं ये कहना चाहती हूँ मैं कामकाजी हूँ लेकिन मैं बच्चों को उस तरह से मेंटली तैयार रखती हूँ
1: सही
0: कि मेरा भी एक काम है लेकिन उसके साथ

0: मेरे परिवार में तुम्हारी देखभाल करना भी मेरा एक दायित्व है। और बच्चे, आजकल के बच्चे खास करके, वो समय से पहले इतने मैच्योर हो जाते हैं, वो समझते हैं कि जब अगर माँ काम करके नहीं आएगी तो सिर्फ पिता के तनख्वाह से होने वाला नहीं है आज के इस भागदौड़ और इतनी महंगाई के समय में। तो उसे भी ये पता है कि माँ को नौकरी करनी जरूरी है।
1: सही बात है।
0: हाँ, लेकिन माँ का दायित्व दोहरा हो जाता है। आज तो देख रहे हैं कि आप जहाँ भी चले जाएं, बस ट्रेन जहाँ देखें, आज 60% से ज़्यादा महिलाएं नौकरी कर रही हैं।
1: सही बात है।
0: हाँ, लेकिन यहाँ एक दो बातें और हुई हैं। महिलाएं नौकरी तो कर रही हैं, घर परिवार भी संभाल रही हैं, लेकिन बिखराव भी आ रहा है।
1: एक और श्रोता जुड़ गए।
2: माँ का अधिकार होता है।
1: माँ का अधिकार क्या होता है? ठीक है, कौन बोल रहे हैं?
2: बताइए।
1: उमा शंकर ठाकुर जी, माँ का क्या अधिकार होता है? सीधी सी बात है, माँ का भी अधिकार होना चाहिए।
0: जी
1: जी, क्या अधिकार है माँ का?
0: माँ ने अगर हमें इस धरती पर लाया है तो माँ का सर्वस्व अधिकार है। लेकिन माँ के अधिकार की जहाँ तक बात आती है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ के अधिकार को लेकर थोड़ा डवाडोल होने लगते हैं, है ना? वहाँ तब बात आ जाती है। एक माँ चार बच्चों की परवरिश करती है, लेकिन चार बच्चे मिलकर एक माँ की परवरिश नहीं कर पाते आज के समाज में। तो जहाँ तक माँ के अधिकार की बात है, माँ तो एक उम्र के साथ बिल्कुल शांत मूक बनकर सब कुछ देखती है। एक उम्र के पड़ाव पर आकर माँ बिल्कुल चुप हो जाती है, किसी तरह चाहती है कि बस मेरी ज़िंदगी बिल्कुल सहजता के साथ अच्छे से चल जाए। तो माँ के अधिकार, माँ तो अधिकार कभी मांगती नहीं है। जब माँ अगर संतान को उन्होंने जन्म दिया तो संतान का ये कर्तव्य हो जाता है, ये दायित्व तो हो जाता है कि मेरी माँ को कोई कष्ट ना हो।
1: माँ अपने बच्चों का हाथ जो है ना, वो उसके बचपन तक ही भले पकड़े थामे, लेकिन उनका दिल हमेशा के लिए थामे रहती है।
0: जी बिल्कुल।
1: शाम ढले एक वीरानी सी साथ मेरे घर जाती है, मुझसे पूछो उसकी हालत जिसकी माँ मर जाती है।
0: जी जी, बहुत।
1: तो जिसके पास माँ नहीं है ना, ये पीड़ा उसका दिल ही जानता है।
0: जी।
1: तो ये कहना चाहेंगे हम कि आज के दिन कि अगर आपकी माँ है ना,
0: आप सबसे बड़े धनवान हैं।
1: बस एक श्रोता जुड़ गए। जी नमस्कार।
3: मैं राम कुमार शाह सिमरिया भिंडी कल्याणपुर समस्तीपुर से बोल रहा हूँ।
1: जी राम कुमार शाह जी, बताइए।
3: माँ के बारे में कहा गया है कि माँ तो चरित्र निर्माण की सूत्रधारिणी होती है, और बहुत पूर्व काल में जो माँ पुरुष पैदा हुए, जैसे राम है, कृष्ण है, तो उन सबों पर माँ की ही विशेषता है। जैसे कि राम हमारे घरों में जन्म, तो उसके लिए कौशल्या की जरूरत है।
1: सही बात है।
3: कृष्ण का अवतार देवकी की शक्ति है, जो महाभारत के कर्ण है, अर्जुन है और भीम है, इनका यदि हम पुनः दर्शन करना चाहें तो कुंती तैयार करनी पड़ेगी।
1: सही बात।
3: हनुमान चाहिए तो अंजना प्राप्त करनी होगी। अभिमन्यु का निर्माण तो कोई सुभद्रा की कोठी कर सकती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
3: शिवाजी की आवश्यकता हो तो जीजाबाई कर सकते, तैयार होना चाहिए। तो हमने कहा कि पूर्व में जो हो चुके हैं, जैसे लव कुश है या भरत है या शिवाजी है या नेपोलियन बोनापार्ट है, ये इतने जो ये सब जो व्यक्तित्व है, तो उनकी माता की भी विशेषताएं छबर रही। मेरे कहने का यही अर्थ है कि वर्तमान समय में भी तो मन को जिस प्रकार संस्कार भरना जाए अपने पुत्रों में, जो वो उनके सदृश बन सके।
1: सही बात है।
3: ये चली रह गई है,
1: बिल्कुल सही। जी जी बिल्कुल सही। आप मतलब आपने जितनी बातें कही हैं बिल्कुल सारगर्भित बातें कही हैं, और इन बातों को कहने के बाद किसी और उदाहरण की जरूरत नहीं है। राम कुमार शाह जी, आपने जितने दृष्टव्य दिए हैं ना अपनी बातों में, वो सारे परिपूर्ण हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राम कुमार शाह जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी, एक बार किसी भवन की नींव मजबूत हो जाए तो फिर वो कोई भी आंधी कोई भी तूफान सह सकता है,
0: उसको डिगा नहीं सकता
1: है। माँ वो चीज़ है।
0: जी।

0: चलिए वहीं चलते हैं जहाँ पर परिवार के विखंडित होने की बात है, जहाँ पर एकल परिवार पति पत्नी और बच्चे उतने ही रह गए हैं, वहाँ पर जाकर के मान्यताएं जहाँ पर बदल जाती हैं। बच्चा बीमार होता है ना पुष्पम जी,
1: जी जी,
0: तो कामकाजी माँ भी परेशान, कामकाजी पिता भी परेशान, और उस समय लगता है कि हम बड़े तो हो गए लेकिन अपनी माँ से अलग होने का जो दंश है, उस समय पता चलता है कि माँ के लिए भी पोता और पोती की जरूरत थी। ये भी बात है, क्या कहेंगे आप?
1: देखिए, एकल परिवार एक शौकिया भी है और दूसरी मजबूरी भी है। जब बाहर नौकरी के लिए निकल जाते हैं, दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाता है, तो वो सब उठकर जा नहीं सकते, क्योंकि एक कहीं व्यवस्थित परिवार होता है और उस परिवार को फिर छोड़ करके बच्चों के साथ निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में तो बहुत मुश्किलें आती है, जब कुछ घर में बिगड़ता है, जब बच्चे बीमार हो जाते हैं या खुद बीमार हो जाते हैं, तब आवश्यकता पड़ती है। तो एकल परिवार का नुकसान तो है, लेकिन दूसरी ओर एकल परिवार मजबूरी भी है, साथ ही एक जो बच्चों को अच्छे जगह पढ़ाने की बात होती है, आगे ले जाने की बात होती है, तो वहाँ ये आवश्यक हो जाता है।
0: कार्यक्रम में समय तो अब बिल्कुल समाप्ति पर है, लेकिन चलते चलते एक चर्चा तो कर लेनी चाहिए हमें
1: जी।
0: वो ये कि आज भी अगर दो चार बच्चे हैं ना, तो एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, माँ कहाँ रहेगी?
1: मैंने अभी चर्चा की थी आपको कि एक माँ चार बच्चे को संभाल सकती है, लेकिन चार बच्चे मिलकर एक माँ को संभालने के लिए वो सोचते हैं कि माँ कहाँ रहेगी। तो मुझे लगता है कि अगर उस परिवार का जो मुखिया, जिसे मुखिया मानते हैं, उसका बेटा उसी जगह, ये ज्यादा समस्या आती है, ज्यादा समस्या वही आती है। चूंकि
0: मुनव्वर राणा की एक बात याद आती है, किसी को घर मिला हिस्से में
1: जी,
0: या
1: हाँ,
0: कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था,
1: मेरे हिस्से में
0: मेरी माँ आई।
1: वो बहुत सौभाग्यशाली होगा जिसके हिस्से में माँ आती है। सारे चीज धरे रह जाते हैं, लेकिन माँ, माँ की यादें, माँ का आशीर्वाद, इससे बढ़कर कुछ नहीं होता है।
0: दायित्व की चर्चा हो रही थी,
1: माता पिता दोनों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है।
0: चलते चलते एक बात और भी, किसके हिस्से में क्या आया, माँ आई नहीं आई, ये तो बात अलग
1: जी।
0: लेकिन जब माँ को वृद्धाश्रम में रहना पड़ता है, ओल्ड एज होम्स में, जो हमारी परिपाटी नहीं रही है
1: जी,
0: हमारी परंपरा नहीं रही है, वो क्या है?
1: इसे क्या कहेगा, ये बिल्कुल एक तरह से घृणित बात है। जो माँ या पिता हमें किसी लायक बनाता है, और वो लायक बनने के बाद हम अपनी माँ, अपने उस किए हुए माँ के सपनों को साकार करने के लिए आगे तो निकल जाते हैं, लेकिन उस माँ को वहाँ छोड़ करके, मैं एक बार स्टेशन में, मैं जा रही थी दिल्ली
0: जी,
1: मैंने देखा कि एक माँ दौड़ रही है, मेरा बेटा चढ़ गया, मुझको छोड़ दिया। मुझे लगा कि अरे बाप रे, ये इस स्टेशन में कहाँ जाएगी और बेटा उसको छोड़ के जा रहा। तो यहाँ थोड़े मुझे ये कहना है कि वृद्धाश्रम वाली जो बात है, ये बहुत ही असहनीय बात है किसी माँ के लिए, किसी पिता के लिए। देखिए, पाश्चात्य देशों में तो एक अलग बात है कि इस एज के बाद उनको अलग होना है।
0: माँ पर हम चर्चा करें तो समय बहुत कम पड़ जाता है, लेकिन समय से हम बंधे हैं
1: जी।
0: तो ये बताते हुए कि आज हेलो जिंदगी का विषय था माँ एवं संतान के पारस्परिक संबंध और दायित्व। ये संबंध नहीं टूटने वाले हैं, ये दायित्व बोध कभी कम नहीं होने वाला है। इन बातों को याद करते हुए, दुनिया भर की माँ को सलाम करते हुए, ये बताते हुए चलें कि आज हेलो जिंदगी में बतौर विशेषज्ञ प्रोफेसर पुष्पम नारायण, शिक्षाविद, आपने अपना समय हमारे लिए दिया, आपको धन्यवाद कहते हैं, आभार प्रकट करते हैं।
1: आपका भी बहुत बहुत आभार।
0: तो श्रोताओं, मिलेंगे अगले रविवार को दिन में 11 बजे इसी कार्यक्रम में, किसी और विषय, किसी और विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मितेश कुमार मिश्रा, संयोजक असद दाऊद के साथ साथ मुझे संजय को अनुमति दीजिएगा। नमस्कार।
2: जिंदगी कैसी है पहेली हाय।

अभी आप सुन रहे थे रविवार 10 मई 2026 को प्रसारित हेलो जिंदगी का संपादित अंश। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दरभंगा से प्रसारित किया गया।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही साथ न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनते हैं। फिलहाल हम जुड़ते हैं हमारे दिल्ली केंद्र के प्रसारण में हिंदी समाचारों के लिए, कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशातिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशातिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल हैं। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दें तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। गृह मंत्रालय ने आवर्जन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। इसमें आवर्जन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण और समय सीमा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। रिलायंस कम्युनिकेशंस ग्रुप के पूर्व प्रबंध निदेशक अमिताभ झुनझुनवाला को सीबीआई ने करोड़ों रुपए के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार

लिया है। ये मामला भारतीय स्टेट बैंक से लिए गए 1,200 करोड़ रुपए के सावधि ऋण, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लिए गए 500 करोड़ रुपए के लेटर ऑफ क्रेडिट और सिंडिकेट बैंक से लिए गए 350 करोड़ रुपए की क्रेडिट सुविधा के कथित दुरुपयोग से संबंधित है। एजेंसी ने पहले ही 16 व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद में 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये 6 जून तक खुला रहेगा। CBSE ने कहा है कि यह सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपये और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपये का भुगतान करना होगा।

0: मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये 6 जून तक खुला रहेगा। सीबीएसई ने कहा है कि यह सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपये और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपये का भुगतान करना होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 81 अंक गिरकर 74,186 पर, जबकि निफ्टी 44 अंक लुढ़ककर 23,338 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव के 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। अब जानकारी प्राप्त करें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की।

देशभक्ति गीत में अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे महेंद्र कपूर को। समय होगा 1:10 पर। फिल्म संगीत का आनंद आप ले पाएंगे 1:15 से और साथ ही 2:30 से। प्रादेशिक समाचार 2:00 हमारे पटना केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। इलाकाई खबरें 2:05 पर। रोजगार सूचना हम अपने केंद्र से आपको सुनवाएंगे। समय होगा 2:10। बजे आज समय होगा बज का लोकगीत का। इस सभा के कार्यक्रमों के बाद अब नजर डालते हैं दूसरी सभा के कार्यक्रमों पर। दूसरी सभा आरंभ होगा संध्या 5:00 कार्यक्रम तरुण कुसुम के साथ। आज के युवाणी में आप सुनेंगे चर्चा राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी। फिल्म संगीत दूसरी सभा में 5:40 से आप तक हम पहुंचाएंगे। 6:00 हिंदी समाचार होंगे 6:05 पर। आप आज और कल के कार्यक्रमों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। 6:10 पर समय होगा विद्यापति गीत का। मैथिली संवाद का प्रसारण समय होगा 6:25।

6:30 समय होता है ग्रामीण श्रोताओं के लिए हमारे कार्यक्रम गांव घर का। गांव घर के अंतर्गत आज प्रसारित किया जाएगा नव ऊर्जा। चर्चा का विषय होगा अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम और खेती गृहस्थी में 7 बजे आप सुनेंगे ओल की उन्नत खेती के विषय में। प्रादेशिक समाचार दूसरी सभा में 7:30 से प्रसारित होगा। 7:47 समय होगा जिले की हलचल का। सिंगरहार ये कार्यक्रम आप सुनते हैं 8:15।

आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा। सर्वभाषा का ये कार्यक्रम हम अपने केंद्र से प्रसारित कर आपको सुनवाएंगे। देववाणी ये आप सुन पाएंगे 9:45 से, और 10 बजे एक फनकार। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे कुछ फिल्मी नगमे, और फिल्म संगीत के अंतर्गत भी आप सुनेंगे कुछ फिल्मी नगमे। समय होगा 10:30। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के मुख्य कार्यक्रमों की। अब समय हो चला है हम आप तक पहुंचाते हैं देशभक्ति गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा। आकाशवाणी दरभंगा से अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं वो गाने जिन्हें बनाया राज कपूर ने। भारतीय सिनेमा के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर ने भारतीय सिनेमा में अभिनेता, निर्माता और निर्देशक के रूप में कई सुपरहिट फिल्मों का निर्माण किया। कुछ अपने अभिनय में, कुछ अपने निर्देशन में। आज के इस कार्यक्रम में हम राज कपूर के द्वारा ही बनाए गए कुछ गाने आप तक पहुंचाते हैं। राज कपूर की आज पुण्यतिथि है, हम उन्हें नमन करते हैं और उनके गीत के द्वारा उन्हें हम अपनी श्रद्धांजलि देते हैं, उन्हें याद करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं फिल्म मेरा नाम जोकर के इस गाने से, जिसे शब्द से सजाया था नीरज ने, संगीत से सजाया शंकर जयकिशन ने और अपने स्वर से, अपनी आवाज से सजाया मन्ना डे ने।

बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, तर कर नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भावता का डर है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भावता का डर है।

दोस्तों अभी आप सुन रहे हैं वो गाने जिन्हें राज कपूर पर फिल्माए गए या राज कपूर ने जिन गानों का निर्देशन किया। आज हम ऐसे ही गीत आप तक पहुंचा रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। कार्यक्रम का अगला गीत है मुकेश की आवाज़ में नीरज का लिखा ये गीत, शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में। फिल्म का नाम है मेरा नाम जोकर।

कार्यक्रम में अब सुनिए मुकेश को शैलेंद्र के लिखे गीत के साथ शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में फिल्म संगम के लिए।

कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म संगम से। मुकेश की आवाज है, हसरत जयपुरी का लिखा ये गीत है, शंकर जयकिशन का संगीत।

बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल।

0: बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं।
1: संगम, इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे मुकेश को। इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा पटना केंद्र से।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज शेखपुरा जिले के परबिघा में 53 करोड़ रुपए लागत वाली विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। साथ ही वे सामस पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। लोगों की सुविधा के लिए सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर शिक्षा के लिए राज्य के सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे पहले श्री चौधरी ने जिले के सामस स्थित विष्णु धाम मंदिर में पूजा अर्चना की। इधर मुख्यमंत्री आज मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड की परसोनीनाथ पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में भी शामिल हुए। उन्होंने आम लोगों की समस्याओं को सुना और तत्काल समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान 288 करोड़ रुपए लागत वाली विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। आम लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए पंचायतों की तर्ज पर राज्य के नगर निकायों में आज सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें लोगों से प्राप्त आवेदन के आधार पर उनकी समस्याओं का समाधान 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। राज्य की पंचायतों में भी सहयोग शिविर आयोजित किए गए हैं। गया जिला परिषद को ग्रामीण विकास और जनहित से जुड़े उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत राज पुरस्कार समारोह में जिला परिषद अध्यक्ष नैना कुमारी को सम्मानित किया जाएगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में राज्य के अधिकतर हिस्सों के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होने की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान 39.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। इधर विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी चलने और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। बिहार संग्रहालय पटना में आज से समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह कैंप 7 जून तक चलेगा। कैंप का उद्घाटन महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह ने किया। श्री सिंह ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि कैंप में अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा बच्चों को टेराकोटा कला, मुखौटा निर्माण कला और कहानी लेखन कला का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कला और संस्कृति विभाग की ओर से पटना के भारतीय नृत्य कला मंदिर में 5 जून से 10 दिवसीय कृष्णकालीन कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यशाला में 8 से 16 आयु वर्ग के बच्चों को नृत्य, गायन और वादन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों को कला और संस्कृति से जोड़कर उनकी रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करना है।

भागलपुर जिले के सबौर थाना क्षेत्र के लैलख रेलवे स्टेशन के पास से पुलिस ने 200 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। मधेपुरा जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत साहूकट भातु टोला में पुलिस ने छापेमारी कर 258 लीटर प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ दो तस्कर को गिरफ्तार किया है। समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक छात्रा की मौत हो गई। इस हादसे में दो अन्य छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

ये आकाशवाणी पटना है। अब आप शर्फुल हुदा से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने आज शेखपुरा ज़िले के बरबीघा में 53 करोड़ रुपये की

एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक छात्रा की मौत हो गई। इस हादसे में दो अन्य छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

ये आकाशवाणी पटना है। अब आप शर्फुल हुदा से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने आज शेखपुरा ज़िले के बरबीघा में 53 करोड़ रुपये की लागत वाली मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। साथ ही वो सामस पंचायत में मुनक़िद सहयोग शिविर में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत लोगों के फौरी मसाइल के हल के लिए पाबंद अहद है। लोगों की सहूलत के वास्ते इस कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। वज़ीर आला ने कहा कि बेहतर तालीम के लिए सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल की शक्ल में फ़रोग दिया जाएगा। इससे कबल जनाब चौधरी ने ज़िले के सामस वाक़े विष्णु धाम मंदिर में पूजा अर्चना की। इधर वज़ीर आला आज मुजफ्फरपुर के मोतीपुर ब्लॉक के परसौनी नाथ पंचायत में मुनक़िद सहयोग कैंप में भी शरीक हुए। उन्होंने आवाम के मसाइल सुने और फौरी हल के लिए अफसरान को हिदायतें कीं। उन्होंने इस दौरान 288 करोड़ रुपये की लागत वाले मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद भी रखा। आम लोगों के मसाइल के निपटारे के लिए पंचायतों की तर्ज पर रियासत की बल्दियातों में आज सहयोग कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। इसमें लोगों से मौसूला दरख्वास्तों की बुनियाद पर उनके मसाइल का तदारुक 30 दिनों के अंदर किया जाएगा। रियासत की पंचायतों में भी सहयोग कैंप मुनक़िद किए गए हैं। गया ज़िला परिषद को देही तरक्यात और अवामी मफाद से जुड़े शानदार काम के लिए कौमी पंचायत अवार्ड से सरफराज किया जाएगा। कल नई दिल्ली के भारत मंडपम रियासती अवार्ड तकरीब में ज़िला परिषद की चेयरपर्सन नैना कुमारी को अवार्ड से नवाजा जाएगा। राजधानी पटना समेत रियासत के बेशतर हिस्सों में मौसम खुश्क बना हुआ है। महकमा मौसमियात ने कयास आरई की है कि आइंदा 2 से 3 दिनों में रियासत के ज़्यादातर हिस्सों के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत में 2 से 3 डिग्री के इजाफे का इम्कान है। पिछले 24 घंटों के दौरान 39.4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत के साथ भभुआ रियासत का सबसे गर्म जगह रहा। इधर महकमा ने अगले 24 घंटों के दौरान रियासत के जनूब मगरबी खित्तों में कुछ मकामात पर धूल भरी आंधी चलने और बर्फबारी की वार्निंग जारी की है। बिहार म्यूज़ियम पटना में आज से समर कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। ये कैंप 7 जून तक चलेगा। कैंप का इफ्तिताह डायरेक्टर जनरल अंजनी कुमार सिंह ने किया। श्री सिंह ने आकाशवाणी न्यूज़ से बातचीत में कहा कि कैंप में तजुर्बाकार तरबियतकारों के ज़रिए बच्चों को टेराकोटा फ़न, दूसरे फ़नून और कहानी नवेसी के फ़न की तरबियत दी जाएगी। फ़न सकाफ़त महकमा की जानिब से पटना के भारतीय नृत्य कला मंदिर में 5 जून से 10 रोज़ा समर वर्कशॉप का इनेकाद किया जाएगा। इस वर्कशॉप में 8 से 16 की उम्र के बच्चों को रक्स, गीत और तबला की तरबियत दी जाएगी। इसका मकसद बच्चों को फ़न सकाफ़त से जोड़कर उनकी तख्लीकी सलाहियत को फ़रोग देना है। भागलपुर ज़िले के सबौर थाना हलका के लैलक रेलवे स्टेशन के पास से पुलिस ने 200 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक स्मगलर को गिरफ्तार किया है। मधेपुरा ज़िले के सदर थाना हलका के तहत साहूगढ़ भातू टोला में पुलिस ने छापेमारी करके 258 ममनुआ कफ सिरप के साथ 2 स्मगलर को गिरफ्तार किया है। जमुई ज़िले के बरहट थाना इलाका से पुलिस ने एक नौजवान को असलहा के साथ गिरफ्तार किया है। समस्तीपुर ज़िले के रोसड़ा थाना हलका में एक तेज़ रफ्तार ट्रक की जद में आने से एक तालिबा की मौत हो गई। इस हादसे में 2 दीगर तालिबात शदीद ज़ख्मी हो गईं। दरभंगा के ज़िला मजिस्ट्रेट कौशल कुमार ने बहेरी सर्किल के महसूलात मुलाजिम वीरेंद्र यादव को फ़राइज़ की लापरवाही बरतने के इल्ज़ाम में फौरी असर से मुअत्तल कर दिया गया है। और इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से

मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनिए रोजगार सूचना। रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट के पदों पर नियुक्ति के लिए 11,127 पदों पर आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदन शुरू होने की तिथि है 15 मई 2026 और आवेदन करने की अंतिम तिथि है 14 जून 2026। न्यूनतम उम्र है 18 वर्ष, अधिकतम उम्र 30 वर्ष। उम्र की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा 2026 कुल पदों की संख्या है 12,256। आवेदन शुरू होने की तिथि है 21 मई 2026। आवेदन की अंतिम तिथि है 22 जून 2026। न्यूनतम उम्र है 18 वर्ष, अधिकतम उम्र है 32 वर्ष, जिसकी गणना 1 अगस्त 2026 को आधार मानकर होगी। इच्छुक अभ्यर्थी एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भारतीय नौसेना 2026 के लिए कुल 60 पदों पर आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदन शुरू होने की तिथि 29 मई 2026 और अंतिम तिथि है 18 जून 2026। इच्छुक अभ्यर्थी इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन के लिए अभ्यर्थी की आयु, जिसकी गणना इस आधार पर होगी 2 जुलाई 2007 से 1 जनवरी 2010 के बीच जिनका जन्म होना चाहिए, ऐसे अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। रोजगार सूचना समाप्त हुई।

0: घर घर केरवाणी आकाशवाणी हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी एक कई क्लिक पर हमर स्टेशंस लाइव मनक बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर नव भारत नव आकाशवाणी आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति गाम घर संध्या 6:30 पर 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा। कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
1: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तब सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है बल्कि ये युवाओं को सपनों को देखने का अधिकार देती हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्तियां उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलती हैं जिनमें अपार प्रतिभा है लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे प्रगति करने से वंचित रह जाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्ज्वल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी जड़ों को न भूलें।
1: भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य के प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं समाज और राष्ट्र के निर्माण में आपका सक्रिय योगदान रहना चाहिए।
0: गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशाटिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशाटिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री

0: पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोकभवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द या दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल है। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। केरलम विधानसभा में कांग्रेस नेता शानिमोल उस्मान उपाध्यक्ष चुने गए हैं। शानिमोल उस्मान को 99 वोट मिले जबकि विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मोहसिन को 34 वोट प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी के तीनों सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जाँच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। शहजाद भट्टी के गिरोह ने मोहम्मद शेख को एक राजनीतिक पार्टी की महिला नेता को धमकाने और उसकी हत्या करने का काम सौंपा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रवर्तन निदेशालय

0: ईडी मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने सलीम इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ ये कार्रवाई की है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। निदेशालय ने विदेश से लाए गए 2 किलो 600 ग्राम सोने को जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 4,20,00,000 रुपए है। खुफिया जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने दुबई से आए 2 यात्रियों को पकड़ा। मामले की जाँच की जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 1 वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए संघर्ष विराम पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। समझौते के बाद क्षेत्र में तनाव कम होने की संभावना थी, लेकिन हाल के सैन्य उल्लंघनों से इसकी स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: ईरान ने लेबनान में इजरायली हमले जारी रहने पर अमेरिका के साथ सभी प्रकार की बातचीत रोक दी है। अमेरिका के साथ किसी भी युद्ध विराम समझौते के लिए ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमले रोकने की पूर्व शर्त रखी थी। उसने होर्मुज जल डमरो मध्य पूरी तरह से बंद करने और लाल सागर के मुहाने पर स्थित बाब अल मंदेब जल डमरो मध्य सहित अन्य मोर्चे खोलने की बात कही है। ईरान का कहना है कि लेबनान और गजा में इजरायली हमले पूरी तरह बंद होने तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। लेबनान में जारी संघर्ष अमेरिका और ईरान के बीच संभावित युद्ध विराम समझौते में एक बड़ी बाधा बन चुका है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेगा। मुलाकात का उद्देश्य दोनों पार्टियों के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और जन केंद्रित राजनीतिक पहुंच पर विचारों का आदान प्रदान करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में पहले गिरावट और फिर 0.5% से अधिक की तेजी देखने को मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 508 अंक के उछाल के साथ 74,775 जबकि निफ्टी 140 अंक की वृद्धि के साथ 23,523 पर कारोबार कर रहा था। और अब बात खेलों की। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज बारिश का अनुमान है। अगले 2 से 3 दिन तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। एक बार फिर से हम हाजिर हैं फिल्म संगीत के साथ। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पहला गीत फिल्म जिस्म 2 से, जिसे आवाज दी है सोनू कक्कड़ ने। गीत को लिखा है मिथुन ने और संगीत से भी सजाया है मिथुन ने।

साजना लम्हा फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे हैं मीका सिंह और चिन्मयी की आवाजों में। फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से आप सुन रहे हैं। कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत हम आपको सुनवाएंगे फिल्म वजह तुम हो से तुलसी कुमार मिथुन और अल्तमस फरीदी की आवाजों में।

वजह तुम हो। इस फिल्म का भी गीत सुन रहे थे आप तुलसी कुमार मिथुन और अल्तमस फरीदी की आवाजों में। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आज आपने सुना लम्हा वजह तुम हो, जिस

में दो अनवर इन फिल्मों के गाने। आवाजें थी सोनू कक्कर, क्षितिज, शिल्पा राव, अली अजमत की, मीका सिंह, चिन्मयी, तुलसी कुमार मिथुन और अल्तमस फरीदी की। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अब समय हो चला है बज्जिका लोकगीत का। आइए सुनते हैं बज्जिका लोकगीत।

0: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
3: साहित्य, संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन बरतुहार आबै छल कहियो थमहु अगला साल, हमर गर्दन काटि लेला आ अपने बनल मालू मा।
1: गुआ सुपारी के कहल जायत अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनी आनि के दिया था। बहुत कमे लोग हेता जे गुआ बुझ के सुपारी बुझ के आनि के देता।
2: अपन परंपरा, अपन संस्कार, अपन माइटक सुगंध के सहेजित मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।
3: भोर होते उठ जाओ किएक इजोतक पहल किरण संग फुलाए लगत, फूल प्रकृति में घोराए लगत, ऊर्जा आबा वाला काल लेल
4: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतै।
5: आ मनुख लेल त बुझू अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहीं है त खेती नहीं है, आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है त हमरा लोकन खायब की।
6: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
7: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी।

ये आवाज थी रामपालक निराला की। बज्जिका लोकगीत में अभी आपने सुना ब्रजेश कुमार सुमन, रामपालक निराला, मणिमाला कुमारी और अरुण कुमार अकेला को। बज्जिका लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव के 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3:20 हो चुके हैं। समाप्त होती है हमारी आज की पहली सभा। दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ संध्या 5 बजे हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें।

0: 1,000, 2,000, 3,000 हाईएस्ट जो होता था एक ग्रेड
1: उसमें
0: आर्टिस्ट,
1: बहुत बड़ी रकम थी।
0: बहुत बड़ी रकम
1: बहुत बड़ी
0: थी, तो
1: रकम
0: उसी
1: थी।
0: में गुजारा करती थी और थिएटर करती थी। तो ऐसे मैं, ये मेरा सफर रहा दिल्ली से,
1: जी
0: मतलब देहरादून से
1: देहरादून
0: दिल्ली
1: से
0: तक।
1: दिल्ली तक का, और बहुत ही प्रेरणादायी सफर रहा। हमें लगता है हमारी जितनी सखियां सुन रही हैं, जब कई कई बार वो उदास होती हैं और वो परेशान हो जाती हैं, तो उस समय उन्हें इस बात से इंस्पायर होना चाहिए। अब हिमानी जी, यहाँ पर हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: कोई बात नहीं
1: दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और ये है कार्यक्रम सखी सहेली और हमारे सामने हमारी विशेष सखी विशेष अतिथि हिमानी शिवपुरी जी बैठी हैं और बातें इतनी दिलचस्प हो रही हैं कि गाने की बारी ही नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर हम गाना सुनवाते हैं जिसमें हिमानी जी खुद अभिनय किया है। हिमानी जी ने वैसे उनकी फिल्मों की फेहरिस्त गिनाने चलेंगे तो वक्त कम पड़ेगा, तो पहले हम गाना सुन लेते हैं। ये फिल्म हम आपके हैं कौन, और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि हम आपके हैं कौन में हिमानी जी बड़ी अच्छी लग रही हैं। सुनते हैं ये गाना समधन।

0: हम आपके हैं कौन फिल्म का ये गाना था, और चूंकि हिमानी जी की बातें आज बड़ी दिलचस्प लग रही हैं और हिमानी जी आई हैं तो गाने तो हम आपको रोज सुनवाते ही रहते हैं, तो गानों के अंश हम सुनवाते चलेंगे, हिमानी जी से बातें करते रहेंगे और आपकी टिप्पणियां भी बीच बीच में हम शामिल करते रहेंगे, आपके सवाल भी। एक श्रोता ने लिखा है कि सखी सहेली शब्द सुनते ही एक सुकोमल भावना मन को छूने लगती है। मुझे याद है जब ये कार्यक्रम नया शुरू हुआ था और मेरे शहर में विविध भारती बहुत साफ नहीं सुनाई देता था। मेरी किचन एक खुले एरिया में थी जहां की खुली खिड़की से सटाने पर थोड़ी साफ आवाज आती थी। मैं 2 बजे किचन से फुर्सत होकर, जो मेरे रेस्ट का टाइम होता था, मैं फिर रेडियो लेकर किचन में पहुंच जाती और वहां प्लेटफॉर्म पर बैठकर सखी सहेली सुनती थी। मेरी सासू माँ मुझे किचन के प्लेटफॉर्म पर इस तरह बैठा देखकर रेडियो सुनते हुए देखती तो कहती, ये अजीब पागलपन है तुमको रेडियो सुनने का, पर आज 20 साल हो गए मैं आज भी सखी सहेली उतनी ही तन्मयता से सुनती हूँ। हिमानी जी आज इस कार्यक्रम में मंच पर आई है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। वे अपनी आंखों से जीवंत अभिनय करती हैं और इसी तरह वे अपने जीवन में सक्रिय रहें। हिमानी जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और भी बहुत सारी टिप्पणियां हैं, हम बीच बीच में शामिल करते रहेंगे। तो हिमानी जी, अब हम एक बार फिर आपकी जर्नी की ओर चलते हैं। आपने बहुत सारी बातें एनएसडी की साझा की, अपने बचपन की साझा की। हमें बताइए कि आपका जो बचपन का गाँव है रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड का जो भटवाड़ी गाँव है,
1: भटवाड़ी, हाँ,
0: वहां पर लोग पलायन कर रहे हैं, तो उसके विकास के लिए उस गांव को आपने गोद ले लिया है, एक बड़ी बात है ये, इसके बारे में बताइए ना, क्या है कहानी है?
1: नहीं, मैं आपको बताती हूँ ममता जी, शुरू से ही मेरे मन में ये था, क्योंकि मैं लगभग आप कह सकते हैं पहली महिला थी जिसने
0: अपने गांव से निकली,
1: जिसने मतलब उत्तराखंड से जो निकली फिल्म इंडस्ट्री में, थिएटर रंगमंच में पदार्पण किया। आजकल तो बहुत सारे लोग आ गए हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी देम, लेकिन उस वक्त मैं पहली थी
0: जी।
1: लेकिन मेरे मन में जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो उस टाइम कारण जी, बीवी कारण जी डायरेक्टर थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम क्या करना चाहती, तो मेरा ये उत्तर था कि मैं अपने क्षेत्र में जाके कुछ काम करना चाहती हूँ
0: जी।
1: तो ये मैं क्या, जब एनएसटी में पढ़ती भी थी, स्टूडेंट थी, तभी भी जब छुट्टियां होती थी तो मैं आती थी, और मैं जो वहाँ के हमारे जो थिएटर के एंथुजियास्टिक लोग थे, काफ़ी सारी संस्थाएं थी, उनके साथ वर्कशॉप लेती थी, जो मैंने सीखा था वो उनको सिखाती थी, और आके नाटक भी करती थी देहरादून सहारनपुर, बच्चों के साथ थिएटर वर्कशॉप करती थी, मैं हमेशा कुछ काम करती रहती हूँ। मेरे मन में ये इच्छा थी कि मैं अपनी क्षेत्र के लिए कुछ करूं। अभी फिलहाल जब मैं आई 3-4 साल पहले, एक कॉन्क्लेव हुआ था जो प्रवासी उनको कहते हैं, जो बाहर रहते हैं उत्तराखंड से, तो उनसे कि आप क्या कर सकते हैं, तो हमारे उत्तराखंड, जैसे आपने कहा कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो पलायन की है, मतलब गांव के गांव ऐसे खाली हो गए हैं,
0: निकल जाते हैं लोग शहरों की ओर,
1: क्या करें, और उनको लोगों को आप ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आजीविका के साधन ही नहीं है, और पहाड़ में रहना बड़ा कठिन
0: जीवन
1: है। अभी भी मैं 3 बार देहरादून गई लेकिन अपने गांव नहीं जा पाई क्योंकि सड़क ही खराब हो चुकी थी। अब सड़क नहीं है तो कैसे जाएंगे, और गांव में सिर्फ मैं अपने जब गांव में गई, जो मैंने गोद लिया, तो वहां सिर्फ बूढ़े लोग ही ज्यादातर रहते हैं, महिलाएं हैं 30-35 बूढ़ी महिलाएं, और 3-4 मतलब आई थिंक 10-15 वृद्ध पुरुष थे, क्योंकि जितने भी जो कमाने वाले जो यंग लोग हैं वो चले गए हैं पैसा कमाने के लिए, और जब बच्चों की छुट्टियां होती है गर्मियों की तब वो आते हैं महीने में एक बार गर्मी की छुट्टियों में, तो गांव एकदम खाली, घर खाली पड़े हैं, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। और मैं बचपन में जब जाती थी तो खेतियां होती थी, खेत खाली पड़े हुए, कोई है ही नहीं खेती करने के लिए, और वो है, तो मुझे लगा कि भाई कुछ करना चाहिए अपने गाँव के लिए, तो मैंने इसलिए गांव अडॉप्ट किया। ये एक सपना है, बहुत जाइगेंटिक टास्क है,
0: बहुत ही ये बड़ा सपना देखा है हिमानी जी। यहां पर हम आपको रोक रहे हैं और ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद इस बातचीत को जारी रखेंगे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती और आज है विशेष सखी सहेली 2 जून सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ और हमने आमंत्रित किया है जानी मानी अदाकारा हिमानी शिवपुरी जी को। हिमानी जी, आप बता रही थी अपने उस गांव के बारे में जो अडॉप्ट किया है आपने, गोद लिया है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी घटना है, तो वो बताइए फिर क्या हुआ।
1: हाँ, तो मैं फिर काफी साल के बाद जब गांव में गई, इस मतलब घूमने के इरादे से नहीं, ये कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, तो मैंने सब औरतों से मुलाकात की कि क्या है, तो मैंने उनसे पूछा भाई खेत क्यों खाली है, क्या प्रॉब्लम्स है। तो एक महिला ने मुझे बताया कि दीदी जी, दीदी बुआ जी ऐसे ही बोलते हैं गांव में, कि मतलब मेरे को बुखार हुआ तो मुझे सीधा देहरादून, 5-6 घंटे लगते हैं देहरादून, पहाड़ी रास्ता है, कभी सड़क सही रहती है नहीं रहती है। आप लोगों ने कुछ इंटरनेट में और उसमें सोशल मीडिया में फोटोज भी देखे होंगे, कोई बीमार पड़ रहा है तो चारपाई में लेकर जा रहे हैं, बल्कि मैंने अभी एक सीरीज भी करी है वेब सीरीज उसमें की चारपाई में जा रहे हैं क्योंकि साधन ही नहीं है कुछ, तो कि मुझे देहरादून आना पड़ा बुखार आने के चक्कर में, तो मुझे बड़ा
0: दुख हुआ होगा फिर आपको।
1: और जान, मैंने कहा खेत क्यों खाली पड़े, और मुझे बचपन की यादें में माल्टे बहुत हुआ करते थे, अब एक तो सीजन चेंज भी हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग से, मतलब आम के आम लग रहा है, बताओ पहाड़ों में आम लगते ही नहीं थे कभी पहाड़ में, आम लग रहे हैं, माल्टे गायब हो गए, और श्रोते ज्यादातर हमारे गाँव का श्रोता तो शुक्र है चल रहा है, लेकिन काफी सारे श्रोते भी गए तो और बंदर का है, भालू का, ये सब का मिनेस है, वो सब ये लोग कहते हैं हम कुछ भी उगाते हैं, दीदी जी बुआ जी कुछ भी उगाते हैं सब
0: खा जाते हैं,
1: खा जाते हैं, भालू आते हैं, बंदर आते हैं उखाड़ के, लंगूर आते हैं, चूहे होते हैं, तो क्या हो करे। तो फिर मैंने लोगों से पूछा जो वहां पे कृषि जो करते हैं, तो कहते हैं कि इनको बीज दे सकते हैं आप, जैसे हल्दी हो गई, अदरक हो गई, तो मैंने ये मुहैया गांव के लोगों को दिलवाए हल्दी और अदरक, वो उन्होंने उगाया, अच्छी फसल हुई। और एक मैंने कोशिश की कि एम्बुलेंस भी जाए किसी तरह से, तो ताकि बड़े खुश हुए, मतलब उनको लगा कि आस पास के गांव के लोग भी आ गए, कोई अपना बीपी टेस्ट करा रहा है, कोई शुगर टेस्ट करा रहा है, तो धीरे धीरे। और मेरे को यही कहना है ममता जी कि बहुत ये मैंने बहुत बड़ा टास्क ले लिया है, और मैं
0: सच में
1: अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं बहुत छोटी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि लोग आए मेरी मदद करें, ताकि पहाड़ के जो गांव हैं जहाँ पे पलायन की इतनी बड़ी समस्या है वो फिर से बस जाए, वहाँ पे आजीविका के साधन हो। और एक मैंने बात की है सरकार से, वहाँ पे एक स्कूल है, सरकारी स्कूल जिसमें मेरे पापा भी कभी पढ़ते होते, उसमें सिर्फ 5 बच्चे पढ़ते हैं, और बल्कि जो स्कूल के टीचर्स वहाँ पढ़ाते हैं उनके बच्चे खुद वहां नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वहां वो साधन ही नहीं है, क्योंकि आजकल तो इंग्लिश मीडियम के अलावा कुछ करता ही नहीं है, वो संस्कृत महाविद्यालय है। तो मेरा एक सपना है कि उस स्कूल को मैं थोड़ा सा बेहतर करूं, जिसमें एक सेंटर भी बने औरतें, क्योंकि औरतें ही बची हैं कि वो कढ़ाई बुनाई और कुछ ऐसे काम कर सकती है जिससे उनको आजीविका मिले, और जैसे कुछ गाँव में हो भी रहा है पहाड़ों में, कुछ औरतें काम कर रही है, तो ऐसा कुछ मैं चाहती हूँ कि लोग स्वावलंबी बने, उनको नीचे ना उतरना पड़े, पलायन ना करना पड़े, वो घर बैठ के कमा सके, तो ऐसे ये एक लंबा सा सपना है। और
0: ये सचमुच बहुत बड़ा सपना है, और हम विविध भारती परिवार की ओर से इस बात के लिए मुबारकबाद दे रहे हैं और शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं कि आप इस मुहिम को आगे बढ़ा सकें, ताकि इतनी सारी लड़कियां खासतौर से जुड़ पाएं, और क्योंकि पहाड़ों पर लड़कियों का जीवन ज्यादा कठिन है,
1: हमने तो ये कठिन है सारा काम लड़कियां और औरतें ही करती हैं, घास काटने से लेके जानवर चुगा

0: बैठने से लेके
1: सब कुछ। हमने तो ये भी सुना है कि वहां पर पुरुष वर्ग, बहुत सारे पुरुष वर्ग गांव छोड़कर शहरों में आजीविका के लिए चले जाते हैं और महिलाएं अकेली रह जाती हैं घरों में, और जानवर जो आते हैं, भालू बंदर जिसका जिक्र भी किया, शेर तक आते हैं, तो अकेले फाइट करती हैं, लड़ाई करती हैं उनको अपने बचाव के लिए। तो ये पहाड़ों की महिलाओं को हम सलाम करते हैं।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: सलाम तो हम आपको भी कर रहे हैं कि आप कहां से आई।
0: पहाड़ियों, पहाड़ी महिलाएं बहुत स्ट्रांग होती हैं।
1: जी जी।
0: और जितने भी मैं आपको बताऊं आंदोलन पहाड़ में चले हैं, उनमें सबसे ज्यादा योगदान महिलाओं का रहा है, चाहे वो चिपको आंदोलन जो हमारे भगुना जी ने और चंडी प्रसाद भट्ट जी ने चलाया, शराबबंदी आंदोलन महिलाओं ने ही उसका आगे बढ़कर, सारे पेड़ों से कौन चिपकी थी, महिलाएं चिपकी थी।
1: क्या बात है सचमुच। तो हम इसी बात पर आज आपके हाथों एक पौधारोपण भी करेंगे अभी इस प्रोग्राम के बाद, 4 बजे जब हमारा प्रोग्राम सजीव प्रसारण खत्म होगा यहाँ विविध भारती के परिसर में, और उस पौधे का नाम हम सखी सहेली हिमानीशिवपुरी रखेंगे। तो ये हम सब के लिए गौरव की बात होगी,
0: ये मेरे लिए भी बहुत गौरव की बात है, और धन्यवाद। और पेड़ लगाना ये आपने मुझे कहा, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि सब लोग अगर एक एक पेड़ लगाए तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग और ये जो एनवायरनमेंट, इसके इसमें सुधार होने का, क्योंकि हम ये सोच रहे कि सरकार सरकार ही क्यों करे, सरकार को भी करना चाहिए, जरूर हम टैक्स दे रहे हैं लेकिन हमारा भी कर्तव्य बनता है निजी स्तर पर, कि हम जो आगे पृथ्वी छोड़ के जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए रहने लायक तो रहे।
1: बाप दादे ने जो पेड़ लगाए हैं आम जामुन के, बस वही हम
0: वही हम खा रहे हैं, वो भी कट चुके हैं।
1: जी बिल्कुल। तो आज आपने बहुत अच्छा संदेश और बड़ा संदेश दिया है हमारी सखियों के लिए, सखाओं के लिए। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, हालांकि हमारे लिए आपकी फिल्मों से गाना चुनना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन फिल्मों की लंबी फेहरिस्त है, खामोशी द म्यूजिकल, कुछ कुछ होता है, हम आपके हैं कौन का गाना सुनवा ही दिया, कभी खुशी कभी गम, मैं प्रेम की दीवानी, तो यहाँ पर हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का गाना सुनवाते हैं।
0: जी जरूर।
1: बस इससे पर्दे पर हिमानी जी को देखिए और महसूस कीजिए, वैसे तो फेसबुक लाइव में आप देख ही रहे उन्हें।

0: विविध भारती से ये है विशेष सखी सहेली कार्यक्रम और हिमानी जी के अभिनय यात्रा बहुत बड़ी और बहुत समृद्ध है और मुकम्मल है। बहुत सारे श्रोता भी सवाल पूछ रहे हैं, हम याद दिला रहे हैं हिमानी जी को, हमराही की देवकी भौजाई बहुत मशहूर हुई थी देवकी भौजाई से, यहाँ तक कि लोग अपने घरों में नाम रखने लगे थे भाभी को भौजाई, देवकी भौजाई, है ना, याद है आपको?
1: जी जी बिल्कुल।
0: और ससुराल सिमर का रज्जो द्विवेदी, मिसेज कौशिक की पांच बहुएं मिसेज लाजवंती और राधा जी, सुलक्षणा हसरते की सुलक्षणा, जाने कितने किरदार आपने निभाए हैं। तो हमारे श्रोताओं की ओर से सवाल है कि आपको कौन सा वाला किरदार ज्यादा अच्छा लगता है?
1: देखिए ये तो बहुत ही कठिन सवाल है क्योंकि ये ऐसा है कि क्योंकि मैंने तो 250 से ऊपर फिल्में करी है तो मैं गांधारी का ही एग्जांपल दूंगी क्योंकि आजकल तो पहले तो 10-12 बच्चे होते थे, फिर आजकल तो एक भी होता है मुश्किल से दो। तो गांधारी से कोई पूछता कि कौन सा तुम्हें सबसे प्रिय है, ऐसे मैंने जितने भी किरदार किए हैं वो सब मुझे प्यारे हैं, क्योंकि जैसे माँ को अपने बच्चे, क्योंकि हमारे क्रिएशन होता है, लेकिन जैसे कि आपने अभी जिक्र किया देवकी भौजाई, इसलिए कुछ खास, कुछ किरदार, सारे किरदार बहुत प्यारे हैं लेकिन कुछ किरदार जैसे कि देवकी भौजाई क्योंकि वो पहला किरदार था। क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ कि मैं जब दिल्ली में थिएटर करती थी ना तो एनएसडी रेपर्टरी वो गवर्नमेंट जॉब था ना, तो वो नॉर्मल टाइमिंग वो ही होता था 9 to 5, और जब शोज होते थे हमारे प्लेस तब हम शाम को प्ले करके लेट लौटते थे, नहीं तो चार्टर्ड बसेस, अब गरीब जो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट होते थिएटर, पैसा नहीं होता तो जमुना पार रहते थे मयूर विहार में। आजकल तो मयूर विहार एशियाड के बाद बड़ी पॉश कॉलोनी बन गई है, तो उस टाइम वो थी स्ट्रगलर्स की। तो मैं चार्टर्ड बस से जाके मंडी हाउस आती थी और शाम को जैसे होता था ऑफिस वाले लोग जाते थे तो जैसे बैठे रहते हैं, अब रोज देख रहे हैं मंडे टू फ्राइडे महिला आ रही है, तो ऐसी जैसे बात हो रही कि आप क्या करती हैं, तो मैं बोलती थी थिएटर करती हूँ, तो लोग बोलते हैं नहीं नहीं वो तो ठीक है लेकिन वैसे क्या करते हैं, देखो इमेजिनेंट की आदमी की औरत रोज सुबह कुछ तो करती होगी। लेकिन जब मैंने हमराही किया देवकी भौजाई का, तब मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं क्या करती हूँ, कि पहले से ही लोग बोलने लगे अरे देवकी भौजाई, क्योंकि हम कैरेक्टर आर्टिस्ट ना, हम लोग कैरेक्टर के नाम से हमको जानने लगते हैं। और जो लोग उस टाइम देखते थे, आज भी कुछ लोग जो बुजुर्ग लोग, आजकल के यंग लोग ने तो नहीं देखा दूरदर्शन के टाइम पे, पर उन्हें आज भी देवकी भौजाई याद है। और वो मैं एनएसडी से फ्रेश निकली थी तो इतनी मेहनत से वो तैयार किया था कि वो कैसे बात करेगी, कैसे, मैंने थोड़ा सा राजस्थानी पुट डाला था, मुझे तो नहीं पता था पर मेरे हस्बैंड जयपुर रह चुके थे तो रोज मैं उनको परेशान करती थी अपनी स्क्रिप्ट ले जाके कि इसमें राजस्थानी पुट डालो, क्योंकि वो थोड़ी पढ़ी लिखी कम थी, तो मैंने डायरेक्टर के साथ बात करके, प्रोड्यूसर के साथ, कि जो पढ़े लिखे कम होते तो उनकी जो अपनी रीजनल भाषा है वो आ जाती है और वो किस तरह से आंखें, खूब मेहनत से तैयार किया। वैसे तो जो भी मैंने रोल किया पूरी मेहनत से किया, लेकिन उससे मुझे पहली बार ख्याति मिली थी ऐसी, अगर कहें तो हम आपके कौन, क्योंकि वो मेरी पहली बड़ी कमर्शियल फिल्म थी, तो वो भी मेरा फेवरेट है। वैसे तो मैंने कहा सारे
0: कुछ कुछ होता है और
1: कुछ होता है कि रिफत भी और दिलवाले दुल्हनिया की भी रज्जो बुआ बहुत फेमस है, हीरो नंबर वन की बुआ और परदेश की बुआ और बंधन, बहुत सारे किरदार,
0: उमराव जान में भी आपने काम किया,
1: उमराव जान में भी काम किया और ये मेरा जो धारावाहिक आपने सब बोला वो सुलक्षणा उस टाइम जो मैंने रोल किया था हसरते में, जी तभी आया था, बहुत बोल्ड कैरेक्टर था उस टाइम का सुलक्षणा, और ससुराल सिमर का की जो था, और इन दिनों मेरा एक धारावाहिक चला 7 साल हप्पू की उल्टन पलटन,
0: जी जी जी, वो बहुत किरदार
1: कटोरी अम्मा, वो भी बहुत लोगों ने आज तक उसको सराहा है, पसंद किया है, तो मैं

0: बहुत खुश नसीब हूँ इस मामले में कि मैंने अलग अलग किस्म के रोल किए, चाहे वो फिल्म थिएटर में तो खैर करे ही हैं, लेकिन फिल्मों में बहुत मुश्किल होता है कि आप मैच्योर हैं तो आप माँ के रोल करनी, और एक तरह के रोल होते थे। लेकिन मैं बड़ी इस मामले में लकी हूँ कि मैंने माँ का रोल भी किया, तो बंधन में जो मेरी माँ है और मुझे कुछ कहना है, या मैं प्रेम की दीवानी हूँ या बीवी नंबर वन की माँ, ये बिल्कुल अलग है। ऐसी बुआ का, आई स्टार्टेड विद बुआ या चाची जान, तो बुआ का कैरेक्टर हीरो नंबर वन में बुआ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम परदेश की बुआ या अपने DDLJ की बुआ। तो इस मामले में मैं, क्योंकि मैं कॉमेडी भी किया है, मैंने नेगेटिव भी किया है, सीरियस भी किया है।
1: जी, और अपने श्रोताओं को हम याद दिला दें कि श्याम बेनेगल की फिल्म सूरज का सातवां घोड़ा,
0: सूरज के
1: जो
0: सातवां घोड़ा,
1: कि कला
0: मम्मो
1: मम्मो
0: मम्मो, हाँ
1: कला फिल्म है, इसमें आपने बहुत सशक्त अभिनय किया है, और हमारे श्रोता भी कुछ इसी तरह की बात लिख रहे हैं। और उसके बाद ये कमर्शियल फिल्में, तो वहाँ एक तरफ कला फिल्म, एक तरफ ये कमर्शियल फिल्में, तो कैसा आप कैसे अपने आप को ढाल लेती हैं? हमारे श्रोताओं की ओर से ये सवाल है कि आप जो विविध किरदार निभाती हैं, तो रोने का, हंसने का, फिर नेगेटिव किरदार, ये सब कैसे एक साथ कर लेती हैं? ये बताइए, राज की बात है ये
0: कोई राज की बात नहीं।
1: तो।
0: ये क्या कहते हैं, हम किरदार करते हैं तो क्या करते हैं, जिंदगी जीते हैं ना, उस किरदार में घुस जाते हैं, उसको जीवंत करते हैं। और हर किरदार, जैसे कि लोग कहते हैं कि अरे आप इतने अलग अलग एक साथ कैसे, क्या हम जिंदगी में कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, और कभी हमारे मन में गुस्सा भी होता है तो थोड़े नेगेटिव भी हो जाते हैं, तो ये सब हम में है। और हम ये जिंदगी इतनी बड़ी, मतलब एक थिएटर ही है।
1: जी
0: शेक्सपियर ने
1: जी
0: भी कहा है कि ऑल
1: एक
0: वर्ल्ड
1: रंग
0: इज अ स्टेज,
1: जी रंगमंच है ये
0: रंगमंच
1: दुनिया।
0: है
1: जी
0: जिंदगी। तो आप देखिए, सारे किरदार आपको आप आसपास मिलेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करके वही कर देते हैं। ये
1: बिल्कुल
0: तो जिंदगी सिखाती है।
1: जी, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर एक गाना सुने, या
0: जरूर
1: फिर श्रोताओं की कुछ टिप्पणियां भी आ रही हैं, हालांकि हमारे श्रोता भी आज कुछ ज्यादा उत्साही हैं और लगातार बधाइयां दे रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि एक कलाकार के रूप में सफलता और एक इंसान के रूप में संतोष, इन दोनों में आप किसे अधिक महत्वपूर्ण मानती हैं? हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है।
0: दोनों तराजू अगर एक साथ बैलेंस हो जाए तो क्या बात है, लेकिन अगर दोनों में से चॉइस करने की बात आएगी तो मुझे लगता है इंसानियत ज्यादा बड़ी है, वो सब ज्यादा बड़ी चीज है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और अब एक गाना सुनवाते हैं, जिसे जिसकी फरमाइश आपने ही की है, गाइड फिल्म का गाना
0: जी
1: एक अंश सुनते हैं।

0: ब्राइट फिल्म का ये गाना हमने सुनवाया हिमानी जी की चॉइस पर। और हिमानी जी बताइए कि आज की युवा पीढ़ी जो खासकर लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, अभिनय के क्षेत्र में आगे आना चाहती हैं, तो उन्हें क्या तैयारी करनी चाहिए? आपने तो भाई NSD किया और बिल्कुल छलांग लगा दी आपने, लेकिन उन लड़कियों के लिए कहिए जो गाँव में, छोटे शहरों में, कस्बों में रहती हैं, क्या तैयारी करें, कैसे आए?
1: एक तो ये कि मैं कहना चाहूँगी कि जो ये अभिनय की दुनिया है ये इतनी ग्लैमरस नहीं जितनी लगती है। ग्लैमर है ज़रूर, लेकिन आपको प्रिपेयर करना होगा कि इसमें बहुत हार्ड वर्क चाहिए और सिंसेरिटी चाहिए, मेहनत चाहिए, जो कि किसी भी प्रोफेशन में करने के लिए होता है, लेकिन इसमें खासकर बहुत, और टाइमिंग्स घंटे बहुत है। अभी भी आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी जो हीरोइन है टॉप पे पहुंच के, दीपिका पादुकोण है, 8 घंटे या 6 घंटे के लिए लड़ रही हैं, उनको काम कम मिल रहा है, या मतलब जो लोग दे रहे हैं वो दे रहे हैं, लेकिन लोग एक्सपेक्ट करते हैं काफी सारे लंबे आर्स होते हैं, और खासकर जो नए लोग आते हैं तो उनके तो बहुत लंबे आर्स होते हैं, संघर्ष बहुत होता है। तो अगर आप में संघर्ष करने का मादा है,
0: लियाकत है,
1: हाँ,
0: और
1: सिंसेरिटी है, सिर्फ ग्लैमर की वजह से मत आइए, क्योंकि ये आसान प्रोफेशन नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि अगर आप में अदम्य प्रेम है अभिनय करने का, या आजकल तो बहुत सारी एस्पेक्ट्स हैं, अभिनय कर सकती हैं, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग कर सकती हैं, कैमरामैन, आजकल औरतें कैमरामैन भी हो रही हैं, साउंड इंजीनियर्स, इतनी सारी विधाएं हैं, तो अगर आपकी एम्बिशन है तो आपको मेहनत करने के लिए तैयार है तो जरूर आइए। लेकिन अगर आप इजी वे चाहती हैं कि मतलब रातों रात आप स्टार बन जाए, तो सॉरी, फिर तो आपको मतलब कहना तो नहीं चाहिए, या तो फिर कपूर खानदान से होना पड़ेगा, या शाहरुख खान के खान होना पड़ेगा।
0: जी बिल्कुल,
1: आपको मेहनत करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और अगर आप में टैलेंट है और सिंसेरिटी है और आप मेहनत करने को तैयार है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आउटसाइडर्स भी आए हैं, सक्सीड हुए हैं।
0: बिल्कुल, और आपने खुद नाम लिया शाहरुख खान, तो कहीं आप
1: शाहरुख खान भी आउटसाइडर था, अक्षय कुमार जी आउटसाइडर थे,
0: बहुत संघर्ष था इनके जीवन में भी, और कहीं आप सलमान खान की माँ बनती हैं, कहीं किस कहीं इन बड़े जो हीरो हीरोइन हीरो हैं इनकी भाभी बनती हैं, चाची बनती हैं, इतने बड़े बड़े रोल आपने निभाए हैं। अब हम छोटे छोटे सवाल आपसे जानना चाहते हैं, बताइए हमें कि एक महिला के रूप में आपको किस तरह के संघर्ष करने पड़े, किस तरह की चुनौतियां झेलनी पड़ी?
1: देख, महिला के रूप में मुझे लगता है कोई भी महिला जो घर से बाहर निकलती है तो उसको मर्दों पुरुषों से ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, कि उसको प्रूव करना पड़ता है कि वो सिर्फ एक महिला नहीं है, उसमें टैलेंट है, उसमें अकल है, चाहे आप चाहे आपकी फील्ड में हो, चाहे जर्नलिज्म में हो, चाहे टीचिंग में हो, तो महिला को डबल प्रूव करना चाहिए। और लोग तो ये समझते हैं कि मतलब मैं जब क्लास में मुझे अच्छे नंबर आते थे, अच्छा बिकॉज यू आर, लोग ये सोचते हैं अच्छा बिकॉज यू आर हिमानी भट्ट, मैं भट्ट थी, मतलब आप लड़की हैं, आप देखने में खूबसूरत हैं, तो इसलिए आपको अच्छे मार्क्स मिल गए। क्यों, हमारी मेहनत कहाँ गई, हमने क्या पढ़ाई नहीं करी, या हम जो रोल करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमको डबली प्रूफ करना चाहिए, करना पड़ता है। और महिला के साथ और साथ में जिम्मेदारी भी आती है कि महिला कि अगर शादी होती है, शादी तो होगी और उसके बच्चे होते हैं, तो महिला माँ बनती है, तो उसको घर भी संभालना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है, बाहर का फ्रंट भी संभालना पड़ता है, तो एक ये सब
0: दोहरी तेरी जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती
1: बिल्कुल,
0: है।
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल। और एक स्त्री की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है बताओ हिमानी शिवपुरी?
1: स्त्री की सबसे बड़ी ताकत होती है कि वो स्त्री है, शक्ति का रूप है।
0: बिल्कुल, और अपनी शक्ति को तलाशे, और आपकी इस लंबी यात्रा
1: है और किसी भी चीज का सामना कर सकती है, वो सब औरतों ने प्रूव

0: हिमानी जी, बहुत सारे श्रोता कमेंट भेज रहे हैं, तो हम सबके शामिल तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो मिले जुले कमेंट है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि भट्ट जी तो रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में भी थे, अब पता नहीं वो आपके परिवार से थे या कोई और थे, और आपने जिक्र भी किया अपने पिताजी का, तो शायद इसलिए उन्होंने लिखा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी सादगी, मधुर व्यक्तित्व और शानदार अभिनय ने भारतीय सिनेमा को अनेक यादगार किरदार दिए हैं। विविध भारती पर आपको सुनना अत्यंत सुखद लग रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि आपने चार चांद लगा दिए। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे हिमानी जी के लिए एक वाक्य याद आ रहा है, मेरी मम्मी बिल्कुल हिमानी जी जैसी ही लगती है, तो उनका नाम भी हम लोगों ने हिमानी मम्मी, एक मामी, हिमानी मामी रखा है। तो हिमानी जी को देखकर आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए दी है। कुछ श्रोताओं ने पूछा है कि इन दिनों आप क्या कर रही हैं।
1: सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं श्रोताओं का करना चाहती हूँ, और मैं इतने साल से इस फील्ड में हूँ, 40 साल से ऊपर हो गया है, ये सिर्फ आप लोगों का प्यार है, आप लोग का प्यार जो मुझे मिलता है, आज रेडियो के द्वारा मिल रहा है, मैं सड़क पे चलती हूँ, लोग आते हैं और मिलते हैं और मेरी पुराने किरदारों की बात करते हैं, रंगमंच की बात करते हैं जिन्होंने थिएटर, तो ये आपका प्यार है, प्रोत्साहन है, इसी की वजह से मैं आज ये काम कर रही हूँ।
0: हिमानी जी, आपकी अभिनय यात्रा और आपकी निजी यात्रा इतनी दिलचस्प है, हमें तो लग रहा है कि अब ये बातचीत खत्म ना करें, तो बस अब ये आपसे हम वादा करते हैं, और आप वादा कीजिए कि आप विविध भारती के स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए आएंगे।
1: जरूर
0: जरूर आऊंगी। अब आपने सबके सामने वादा कर दिया, हाँ। तो हमारा वादा पक्का रहा। अब बिल्कुल वक्त नहीं, अब चलने से पहले हम बता दें कि आज के फेसबुक लाइव की कमान जुबैर खान और तनिष्का नाइक ने संभाली, तकनीकी सहयोग किरण बंग, भावना सिंदल, अनुश्री गुप्ता, समृद्धि नाइक का था, और हमारे उद्घोषक साथी मंदाकिनी जोशी, जयंत पात्रिकर, यूनुस खान, और हमारी बहुत सारी सखियां सहेलियां जो नियमित रूप से इस कार्यक्रम में शामिल होती हैं। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, कार्यक्रम प्रमुख श्री संतोष जाधव की प्रेरणा और सहयोग से यह प्रसारण सफल हुआ, और हेड ऑफ द इंजीनियरिंग राजेश बेलदार सर, और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हमारे अधिकारी सोपान तायडे जी, और साथ में किशोर, किशन, एकता और हमारी विविध भारती की पूरी टीम, हमारी जो सखियां हैं इस कार्यक्रम में नियमित रूप से आया करती हैं। विविध भारती के फेसबुक पेज पर आपसे अभी थोड़ी देर बाद मुखातिब होंगी, तो विविध भारती के फेसबुक पेज को का दामन थामे रखिए। फिलहाल अब हम इजाजत ले रहे हैं, आप सभी को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। हिमानी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: नमस्कार।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में गूंजेगी बांसुरी की तान। फिल्मी गानों में बांसुरी के टुकड़े होते हैं जो हमें अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। एक ऐसे कलाकार हैं जो फिल्म संगीत, गजलें, फ्यूजन और शास्त्रीय संगीत सभी मंचों पर अपनी बांसुरी की तान से सबको मोहित किए हुए हैं। उन्होंने जब वी मेट फिल्म के इस गाने में बांसुरी बजाई। फिल्म दम लगा के हईशा। फिल्म ओ माय गॉड। बांसुरी की इस मीठी तान को सुनकर आपको लग रहा होगा कि आज के सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आखिर कौन से बांसुरी वादक आए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने बांसुरी वादक पारस नाथ। ये है पारस नाथ से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। तो चलिए विविध भारती के स्टूडियो में स्वागत करते हैं बनारस घराने के जाने माने बांसुरी वादक पारस नाथ जी का। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर?
1: मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ कि इतने संगीतमय माहौल में आपने मुझे याद किया। इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ।
0: दिल्ली में जब तक आप रहे तो कितने ऐसे कलाकार थे, बड़े कलाकार, जिनके साथ आपकी बहुत यादगार मुलाकातें रहीं संगीत की दुनिया के?
1: ईश्वर के आशीर्वाद से जितने भी दिल्ली के जितने बड़े कलाकार हैं उन सभी के साथ मुझे मौका मिला कि मैंने सबसे आशीर्वाद लिया, सभी के साथ संगत भी की और सबके साथ ट्रैवल भी किया, टूर भी किया, रिकॉर्डिंग्स भी की। चाहे आप म्यूजिक डायरेक्टर्स के नाम ले लीजिए, चाहे दिल्ली में क्लासिकल म्यूजिक रिकॉर्डिंग, डिवोशनल फोक म्यूजिक के साथ साथ बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है वो है क्लासिकल डांस का। जहाँ बहुत बड़े बड़े जैसे उमा शर्मा जी हैं और शोभना नारायण जी हैं, सोनल मानसिंह जी हैं और बिरजू महाराज जी का पूरा इंस्टीट्यूट है वहाँ, और बहुत सारे इनके बैलेज में बजाना, इनके प्रोग्राम में बजाना। और जब बैलेज में रिकॉर्डिंग होती थी तो हमारे पास 20-20 पेज का, 30-30 पेज का नोटेशन आता था बैले का, तो वो पढ़ के बजाना लाइव रिकॉर्डिंग में, और दैट वाज अ चैलेंजिंग जॉब
0: बिल्कुल।
1: और उसके बाद फिर दिल्ली रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री में जैसे जो फोक इंडस्ट्री है पंजाब की, यूपी की और गढ़वाल की, वहां पे बहुत सारे लद्दाख से लोग आते हैं,
0: अच्छा
1: आसाम से लोग आते हैं, कजाकिस्तान से लोग आते हैं अपने तरीके के रिकॉर्डिंग करवाने के लिए। वहां हमने कितनी रिकॉर्डिंग्स की है वहां पे,
0: वाह वाह।
1: और दिल्ली इंडस्ट्री में जो नामचिन म्यूजिक डायरेक्टर का आप बोल लीजिए, स्टूडियोज बोल लीजिए, जैसे कि चरण जी जहूजा जी और

0: मेरे चाचा जी दिनेश कुमार जी
1: जी
0: और जसपाल मुनी जी, हरि ओम जी और पंडित ज्वाला प्रसाद जी और बहुत गुणी म्यूजिक डायरेक्टर, मेरे पिताजी के बहुत पुराने दोस्त श्री चरणजीत आहूजा जी भी, पूरा मतलब

0: अरेंजमेंट का।
1: अच्छा
0: हाँ, पिताजी को देख के, मेरे चाचा जी को देख के, मेरे चाचा जी श्री दिनेश कुमार जी,
1: जी जी
0: वो भी बांसुरी वादक हैं और म्यूजिक डायरेक्टर, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर उन्होंने दिल्ली में, पंजाब में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं।
1: जी जी।
0: सो ये सब माहौल पूरा देख के वो फिर मुझे भी शौक चढ़ा कि मुझे भी अरेंजमेंट करना है। तो फिर धीरे धीरे मैंने भी कोशिश की फोक म्यूजिक में और डिवोशनल म्यूजिक में, और कुछ कुछ गजल वगैरह भी मैंने कुछ अरेंज किया, कंपोज किया, दिल्ली में रिलीज किया। तो ये इस तरीके का रहा सफर,
1: ये सफर इस तरह से चलता रहा
0: जी दिल्ली।
1: हमारी बातचीत के सफर में अब एक गाने की जगह बनाते हैं
0: जरूर।
1: तो आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाया जाए?
0: आप बताइए आपकी पसंद का कोई गाना।
1: अच्छा देखिए, आप ही का पसंदीदा गाना मैं बता रहा हूं
0: जी,
1: और वो है तुम्हें देखती हूं तो लगता है ऐसे। ये आप बांसुरी पर काफी बजाते रहे हैं
0: जी जी जी,
1: है ना
0: जी। जो मैं आपको बांसुरी सुना रहा हूं ना
1: जी,
0: ये बांसुरी भी मेरी ही बनाई हुई है।
1: क्या बात,
0: पिताजी के साथ।
1: वाह।
0: और ये बांसुरी कम से कम नहीं तो मैं बचपन से इस बांसुरी पर रियाज कर रहा हूँ।
1: वाह,
0: आप देख रहे होंगे इस पे ये निशान।
1: जी जी जी।
0: और ये आप जब रियाज करते हैं तो ये भी निशान पड़ जाते हैं।
1: हाँ हाँ हाँ, उंगलियों के।
0: ये बहुत पुरानी बांसुरी मेरी।
1: वाह।
0: और ये जो थ्रेडिंग है
1: जी,
0: ये देख रहे हैं, ये वैकुंठ वेणु की थ्रेडिंग है।
1: अच्छा।
0: तो वैकुंठ वेणु जो है, लॉकडाउन के समय पे पिताजी, मेरे भाई और हमने सोचा कि अपने घराने को, अपने बुजुर्गों को, अपने दादा गुरु को और अपने संगीत को और अपने सास को एक इनिशिएटिव डेडिकेट करना चाहिए। तो तब एक बहुत बड़ा ये इनिशिएटिव लिया था हमने, जिसके नाम से चैनल रिलीज किया वैकुंठ वेणु। तो वैकुंठ तो हम सब जानते हैं,
1: बिल्कुल,
0: जहां से ना वापस आने का मन होता है, ना अगर उस तरफ मन और दृष्टि चली जाए और आपको एहसास हो जाए कि वो क्या है, तो फिर आप वापस नहीं आते वहां से। तो जब मैं बांसुरी बजाता हूं तो मुझे वो जो होना है, जो प्रेजेंट टाइम पे वो जो सेंस है, जो इमोशन है, वो जो जुड़ाव है संगीत और सुर के और सांस के साथ
1: जी,
0: तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे वापस नहीं आना है मुझे।
1: क्या बात है।
0: इसके लिए उसका नाम रखा वैकुंठ
1: वेणु
0: और वेणु, क्योंकि मानसरी को वेणु भी बोलते हैं
1: जी जी,
0: तो इसलिए वैकुंठ वेणु नाम रखा हमारे इनिशिएटिव का। वो था धरोवर का, तो हमारे हमने यूट्यूब चैनल रिलीज किया, उसमें अपने संगीत जगत के, मुंबई के इंडस्ट्री के जितने भी बड़े दिग्गज कलाकार, चाहे श्री अनूप जरोटा जी हों, चाहे हरिहरन जी हों, चाहे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी हों
1: जी,
0: और श्रेया घोषाल जी से लेके, सलीम सुलेमान जी से लेके, विशाल शेखर जी से लेके, सब सब सभी ने बहुत आशीर्वाद दिया।
1: वाह।
0: और इस बात की, इस इनिशिएटिव की तारीफ की
1: जी।
0: और उन सभी ने अपने अपने तरीके से सपोर्ट किया। और इस दौरान जब इस इनिशिएटिव का शुरुआत किया था, तो हम सबकी ये प्रार्थना थी कि जितने बांसुरी वादक और शहनाई वादक हैं, कोशिश करूं कि मैं इस इनिशिएटिव में, क्योंकि ये एक पूजा जैसी है।
1: बिल्कुल।
0: जब आप घर पे पूजा कर रहे हैं, अपने मंदिर में पूजा कर रहे हैं, आप चाहेंगे कि उस पूजा की आरती सब लोग लें, और उसमें जो बना कड़ा प्रसाद है वो सबको मिले,
1: सबको मिले,
0: ये आप चाहेंगे। क्योंकि पूजा आप कर रहे हैं, ये आपकी आत्मा से कर रहे हैं, आपका शरीर नहीं कर रहा, आपकी सोच कर रही है, आपकी आत्मा कर रही है, और वो आत्मा आपको ईश्वर से जोड़ रही है।
1: बिल्कुल।
0: और वो ईश्वर का जो आशीर्वाद है वो सबको मिलना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: तो उसी सोच से फिर मैंने कोशिश की कि जितने भी बांसुरी वादक जुड़ सकें, अब उसमें पंडित प्रवीण गोरखिंडे जी ने बड़ा अच्छा योगदान दिया, उन्होंने आशीर्वाद दिया मुझे, वो उन्होंने बड़े प्यार से एक्सेप्ट किया। पंडित अजय प्रसन्ना जी ने किया
1: जी,
0: और अश्विन श्रीनिवासन जी ने किया
1: जी,
0: एंड नवीन अन्ना जी ने किया। ये सब बड़े इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं
1: जी जी,
0: हिंदुस्तान के बड़े नाम हैं। और राकेश जी ने अपना एक इमोशन व्यक्त किया था, वो बजा नहीं पाए थे।
1: अच्छा।
0: हाँ, रोनू जी भी बजा नहीं पाए थे, पर उन्होंने अपना भावना प्रकट की थी, अभिव्यक्त किया था। और फिर उसके बाद मेरे भाई हैं, कजन ब्रदर्स हैं, शहनाई बजाते हैं
1: जी, जी
0: संजीव कुमार जी, श्री संजीव

0: श्री सजेंद्र कुमार जी, अश्विनी कुमार जी, और तीन भाई हैं वो, एक तबला बजाते हैं, दो शहनाई बजाते हैं
1: जी जी।
0: और फिर और भी काफी आर्टिस्ट जुड़े थे, काफी देवप्रिया जी जो हरि जी की शिष्या हैं वो जुड़ी थी, और भी काफी आर्टिस्ट जुड़े थे। फिर मेरे पिताजी ने खुद हाजिरी दी थी इसमें।
1: वाह।
0: उन्होंने राग मालकोस बजाया था
1: जी,
0: मेरे भाई ने राग हंसुदनी बजाया था, और मैंने राग दुर्गा और एक और दो राग बजाए थे। तो ये हमारा वैकुंठ वेणु का बनाया हुआ बांसुरी है।
1: वाह वाह वाह,
0: जो मैं आपको इतनी देर से सुना रहा हूँ।
1: जी जी, क्या बात है।
0: फिर मेरे पास दो और इंस्ट्रूमेंट है
1: जी,
0: जो मैं आपको सुनाऊंगा
1: जरूर,
0: उनके बारे में भी बताऊंगा
1: जी।

0: जी बहुत आनंद आ रहा है आपकी पूरी जीवन यात्रा के बारे में जानकर और इस जीवन यात्रा के दिलचस्प पहलुओं से आप हमें वाकिफ करवा रहे हैं। दिल्ली से मुंबई तक का जो मामला है ये किस तरह से जमा और कब आप समंदर वाले शहर की तरफ आए?
1: जी मैं दिल्ली में जब कुछ साल हो गए काम करते हुए
0: जी,
1: तो कुछ लोग ये प्रस्ताव लेके पिताजी के पास जाते थे, दिल्ली के जो नामचीन काम करने वाले म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, पिताजी के मित्र हैं, कुछ म्यूजिशियंस हैं जो पिताजी के करीबी दोस्त रहे हैं, तो वो प्रस्ताव लेके पिताजी के पास जाते थे कि ये बच्चा केपेबल है आगे बढ़ने के, तो इसको सिर्फ एक लिमिट तक सीमित ना रखा जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए। तो अब ये डिसीजन बहुत बड़ा था पिताजी का और परिवार का कि उस एज में मुझे भेजना। तो फिर हमारे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक दिल्ली के बहुत ही बड़े म्यूजिक डायरेक्टर जसपाल मोनी जी, मैं उनकी रिकॉर्डिंग में ही था, तो जब उनकी रिकॉर्डिंग हुई वो बहुत खुश हुए, बहुत प्यार उन्होंने दिया मुझे, उन्होंने कहा कि चलो मैं आपके साथ चलता हूँ घर पे। तो वो घर मुझे ड्रॉप करने आए, उन्होंने पिताजी के साथ मिले, वो मेरे पिताजी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे पिताजी भी उनको बहुत प्यार देते हैं। सो उन्होंने पहली बार इस तरीके से प्रस्ताव रखा कि पारस को मुंबई आप जरूर भेजिए। वहां से फिर कड़ी बनी मुंबई की आने की।
0: अच्छा, हाँ, तो इस तरह से
1: मुंबई आना हुआ
0: जसपाल मोनी जी।
1: हाँ, इतना आसान जिस तरीके से बताया मैंने, इतना आसान था नहीं
0: जी, जी।
1: बट मैं वो इमोशन आपको मैं बताना चाहूँ तो भी नहीं बता सकता
0: जी,
1: बट इट वॉज डिफिकल्ट डिसीजन फॉर फ्रॉम फैमिली साइड। बट वो बोलते ना कि वो अगर कुछ अच्छा पाना है तो कुछ तो
0: त्याग करना पड़ता,
1: त्याग करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी ममता का, प्यार का, अपने उस लगाव का त्याग किया
0: जी
1: उस चीज में मेरे लिए।
0: बिल्कुल, एक चीज जो बहुत मायने रखती है वो है मुंबई और दिल्ली दो अलग अलग दुनियाएं हैं। मुंबई एक बिल्कुल अलग संसार है और दिल्ली एक अलग संसार है।
1: बिल्कुल,
0: मुंबई में आपकी एक लंबी यात्रा रही है और उस यात्रा के विस्तार में हम नहीं जाएंगे, लेकिन किन किन फिल्मों में जिनका आप जिक्र करना चाहें आप

0: बांसुरी बजाई है उसके बारे में बताइए, और कुछ टेलीविजन सीरियल्स में भी बजाई है उनका भी जिक्र कीजिए।
1: जी, वैसे तो एक समय के बाद अभी वो लिस्ट बनाना छोड़ दिया है।
0: जी,
1: तो अभी चाहे वो दंगल मूवी हो,
0: जी जी,
1: और क्रिश 3 हो, काई पोचे हो, बधाई हो, तलवार हो, ओ माय गॉड हो,
0: ओ माय गॉड के बांसुरी पीस तो बहुत लोकप्रिय हुए।
1: जी जी जी,
0: है ना, गानों में भी और बैकग्राउंड के जो भी पीसेस हैं।
1: जी,
0: जी जी,
1: और ऊंचाई एक पिक्चर आई थी, ऊंचाई,
0: जी जी, राजश्री प्रोडक्शंस की, अमिताभ बच्चन थे।
1: एक मिली पिक्चर आई थी
0: जी,
1: केदारनाथ, नजरअंदाज, धड़क पिक्चर है, मिशन मंगल है,
0: वाह वाह,
1: मुन्ना भाई एमबीबीएस रिटर्न है,
0: क्या बात है,
1: दबंग 3 है, दृश्यम है,
0: ये तो बहुत लंबी फेरिस है,
1: सरबजीत है, फितूर पिक्चर है, नोटबुक पिक्चर है, गुडबाय है, मनमर्जियां है,
0: वाह वाह,
1: शुभ मंगल सावधान, शुभ मंगल ज्यादा सावधान,
0: हाँ दोनों पार्ट,
1: हाँ, दम लगा के हईशा, जॉली LLB,
0: वाह वाह,
1: बहुत सारी पिक्चरें।
0: जी बिल्कुल,
1: बहुत सारी हैं। तो इनमें क्या रहा है कि कुछ मूवीज में मैंने सॉन्ग्स में बजाया है,
0: हाँ,
1: और कुछ मूवीज में मैंने बैकग्राउंड स्कोर बजाया है।
0: जी जी बिल्कुल,
1: बट बिकॉज एज आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट, सो इट्स माई पार्ट ऑफ जर्नी।

0: एक तरफ फिल्मों में आप बजा रहे हैं, दूसरी तरफ शास्त्रीय महफिलों में आप बजा रहे हैं, तीसरी तरफ फ्यूजन की अपनी एक दुनिया है, तो इन सब के बीच में तालमेल कितना मुश्किल है, और सबसे ज्यादा एंजॉय इसमें से किस पहलू को आप करते हैं?
1: एंजॉय तो मैं शास्त्रीय संगीत को ज्यादा करता हूं
0: जी,
1: और उसके बाद फिर फ्यूजन में ज्यादा करता हूं, फिर मैं फिल्म संगीत को मैं एंजॉय करता हूं
0: जी जी।
1: बट क्योंकि शास्त्रीय संगीत में रहते हुए एक सिलसिलेदार जो गाना बजाना होता है उसको उसी तरीके से जीना होता है, उसी तरीके से रियाज करना होता है, वैसे ही आपके संस्कार हो जाते हैं, वैसे ही आप जीने लगते हैं।
0: वो फटाफट संस्कृति नहीं चलती
1: वो, हाँ वो नहीं चलता है वहाँ पे, तो वो आपको एक अनुशासन में लेके आता है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे।
0: बिल्कुल।
1: और फिर उसके बाद फ्यूजन में जब एक खास बात यह है कि आप जितना वास्ट सोच सको, मतलब जितना बड़ा सोच सकते हैं आप, आपके पास कोई बंदिश नहीं है। करेक्ट, क्लासिकल में बंदिश है, शास्त्रीय संगीत में बंदिश है, यहाँ बंदिश नहीं है,
0: बहुत एक्सपेरिमेंट
1: है। और फिल्म म्यूजिक में क्या है कि आप, जैसा कि आपको याद है ओ माय गॉड मूवी,
0: जी बिल्कुल,
1: मैंने तो सिर्फ फिल्म का नाम लिया, आपने ही बोला वो कृष्णा थीम,
0: जी जी,
1: तो वो जो लोकप्रियता है, लोगों तक घर घर तक पहुंचना एक आर्टिस्ट का, वो फिल्म म्यूजिक के जादू है।
0: एक और पहलू है आपका, और वो है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, फिल्मी गानों की ट्यून्स आपने बजाई हैं, और दिलचस्प बात ये है कि हम विविध भारती में बैठे हैं, जहां से जब भी बीच में फिलर्स बजते हैं तो आपकी बांसुरी अक्सर, बल्कि मैं कहूं कि रोज गूंजा करती है।
1: क्या बात है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये जान के कि मेरी बांसुरी, मेरा बजाया हुआ संगीत आपके विविध भारती में रेगुलरली बजता है, तो मैं मतलब यहां हमेशा हूं आपके साथ।
0: बिल्कुल बिल्कुल है। अच्छा, फिल्म म्यूजिक में एक जमाने से बांसुरी एक बहुत जरूरी इंस्ट्रूमेंट रहा है
1: जी,
0: तो पुराने फिल्मी गानों में से वो कौन सा गाना है जो आपके दिल के सबसे करीब है, जो बांसुरी का पीस है
1: जी? पुराने में तो हम सब जानते हैं हीरो धुन, वो एक
0: हीरो का एक बहुत ही शानदार पीस है,
1: वो एक वो पीस है। और फिर उसके बाद एक गाना है जाने जा, उसमें फ्लूट का एक बहुत प्यारा पीस है,
0: वाह।
1: और फिर एक जिसमें मनोहरी दा जो हमारे इंडस्ट्री मुंबई इंडस्ट्री के
0: मेटल फ्लूट बजाया करते थे,
1: मेटल फ्लूट हो नहीं, ये मेटल फ्लूट है सर
0: जी, बिल्कुल,
1: दिस इज सिल्वर प्लेटेड,
0: वाह,
1: सिल्वर प्लेटेड फ्लूट है ये, मतलब सिल्वर प्लेटेड एज इन सिल्वर हेड है इसका, चांदी का हेड है, बाकी सिल्वर कोटेड है
0: जी जी।
1: सो इसका बजाना और इसका टेक्निक और इसकी साउंड एकदम बैम्बू
0: डिफरेंट है, बिल्कुल।
1: सो एज इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, एज पार्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री,
0: ये भी बजाना होता है,
1: अलग अलग साउंड्स भी मैं बजाता हूँ
0: जी।
1: सो जिसमें से इंग्लिश फ्लूट है, इसको मेटल फ्लूट भी बोलते हैं, इंग्लिश फ्लूट भी बोलते हैं
0: जी,
1: और सिल्वर फ्लूट भी बोलते हैं, कॉन्सर्ट फ्लूट भी बोलते हैं
0: जी।
1: सो ये इसका

0: तो ये
1: वाह क्या बात है, क्या बात है।
0: ये ओकेरिनो है
1: जी जी,
0: ये आप देख रहे होंगे इसका शेप ही कुछ अलग है।
1: हाँ ये तो कुछ अलग ही चीज है।
0: दिस इज ओकेरिनो
1: जी।

0: तो उसका ऐसा साउंड है।
1: वाह वाह, ये बिल्कुल अलग साउंड
0: अच्छा,
1: है।
0: ये इसकी खास बात है, ये मैं इटली से लेके आया था।
1: अच्छा,
0: ये एक बहुत कमाल के म्यूजिशियन है, उनके पास में गया था इटली में
1: जी।
0: वो एक बुजुर्ग से अंकल हैं, तो उनकी शॉप जो है इंस्ट्रूमेंट्स की, इट वॉज नॉट ओपन जब मैं था वहां पे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं इंडिया से हूँ और आई एम प्रोफेशनल म्यूजिशियन, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक, सो आप प्लीज मेरे लिए एक मुझे दीजिए क्योंकि मैं दो दिन बाद जा रहा हूँ वापस। तो उन्होंने स्पेशली मेरे लिए शॉप अपनी ओपन की एंड आई ट्रेवल्ड ऑल द वे फ्रॉम फ्लोरेंस टू हिज सिटी एंड आई बॉट कपल ऑफ मोर इंस्ट्रूमेंट, जिसमें से एक ये था।
1: वाह वाह, अच्छा हुआ आप ये हमारे लिए लेकर आए, बहुत ही सुंदर था।
0: और ये आप देख रहे हैं सर, दिस इज कॉल्ड कजू।
1: जी जी,
0: ये इसमें हम गाते हैं।
1: हाँ, ये कजू तो बिल्कुल बिल्कुल
0: इसमें हम गाते हैं, ये तो पता ही आपको।
1: जी जी जी जी,
0: तो अब जैसे पता ही है, फिर भी मैं आपको एक लाइन गा,
1: जरूर बिल्कुल बहुत जरूरी है।
0: अब जैसे एक म्यूजिक है जो इसमें बड़ा अच्छा साउंड करता है,
1: हाँ हाँ,
0: रहमान साहब के गाने का है।
1: हाँ हाँ हाँ,

0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है।
1: एक ऐसा खुद से ही जुगलबंदी कर लेता
0: ये एक अलग वाद्य यंत्र हो गया।
1: सर एक मैंने जब मैं फ्लूट मेरा बहुत बड़ा पैशन रहा है हमेशा
0: जी
1: इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट करना
0: जी जी
1: मैं
0: जी।
1: बहुत घूमा हूँ मतलब अकेले अमेरिका घूमा हूँ लंदन घूमा हूँ यूरोप घूमा हूँ जैसा मैंने कहा इटली में था इटली स्पेशली एक जगह जब मेरा फ्लोरेंस में एक प्रोग्राम खत्म हो गया तो मैं एक जगह से एक जगह गया सिर्फ इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट करने तो मैं ऐसे दुनिया भर में सब जगह घूमा हूँ। सो अच्छा आप जब अकेले घूमते हैं ना तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है जिंदगी का
0: बिल्कुल
1: उसके बारे में फिर हम कभी विस्तार से बात करेंगे वो बहुत अलग अलग मेरे एक्सपीरियंसेस हैं
0: जी
1: और बहुत अलग अलग चीजें मैंने इंजॉय की है जिंदगी में
0: क्या बात है।
1: सो अब जैसे ये बांसुरी है एक तो एक
0: ये तो बहुत बड़ी सी बांसुरी है
1: बड़ी बांसुरी ये बांसुरी ही है ये प्योर अपनी जो शास्त्रीय संगीत की जो कृष्णा बांसुरी है बांसुरी ही है।
0: कहां से लाए
1: नॉर्मल जहां से मैं ये तो मेरे खुद बनाई हुई है।
0: अच्छा अच्छा
1: सो अब ये जो बांसुरी है मैंने जब एक चाइनीज फ्लूट खरीदी जब मैं दूसरे साउंड्स कलेक्ट कर रहा था तो उसमें ऑप्शंस या स्केल्स अलग अलग नहीं मिल पा रहे थे मुझे तो मैंने बहुत साल पहले एक मेरा एल्बम भी आया था जिसका नाम है इटर्नल विंड्स तो उस एल्बम में मैंने वो ये साउंड बहुत पहले रिकॉर्ड करके रिलीज किया है 2011 में
0: जी।
1: हालांकि ये साउंड उससे पहले ही बना लिया था क्योंकि रिलीज करने में तो और 2 साल लगे थे
0: जी जी।
1: तो इसका साउंड देखिए नॉर्मल जो बांसुरी का साउंड है वो आपने सुना है
0: बिल्कुल
1: इसका साउंड में सुना था आपको
0: जरूर

0: साउंड जो है मैंने 2009 में क्रिएट कर दिया था। अब कई लोग इसको डीजी फ्लूट बोल के समझ के बना के वो अपना स्टैंप लगा के उसको फिर इंडस्ट्री में फिर यूज कर रहे हैं और कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, मुझे खुशी उस बात की। बट अगर आप क्रिएशन की बात करते हैं, अगर आप सही बात करते हैं और सही होने की बात करते हैं, तो इस क्रिएशन का जो कि चाइनीज फ्लूट से एडॉप्ट किया हुआ है, तो अगर हिंदुस्तानी फ्लूट में एक्सपेरिमेंट अगर किया है ना इंडिया में, तो वो मैंने किया है। आई एम द फर्स्ट वन इन इंडिया
1: जी जी
0: हु क्रिएटेड इन हिंदुस्तानी बांसुरी इनटू डीजी फ्लूट और चाइनीज फ्लूट, दैट इज क्रिएटेड बाय मी
1: जी।
0: अब ये एक है, और इसका एक दूसरा जो हाई स्केल में ऐसा साउंड है,

0: ये इसका बाज नहीं है। हर साउंड का अपना बाज होता है,
1: बिल्कुल,
0: हर इंस्ट्रूमेंट का अपना बाज होता है, वो बाज समझना चाहिए। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा के उठा के भोपाली नहीं बजा सकते उसमें,
1: बिल्कुल।
0: साउंड जब उठा रहे कोई, उसकी नॉलेज भी तो जरूरी है ना। अब मैंने आपको इंग्लिश फ्लूट सुनाया, अब इसमें अगर मैं, हालांकि इंडियन भी बहुत अच्छा बजता है इसमें,
1: जी बिल्कुल,
0: इसमें मैंने एक इंडियन कंपोजिशन रिलीज किया था, तो मेरे जहन में क्या था कि इंडियन कंपोजिशन इंग्लिश फ्लूट में कैसे साउंड करेगी। अब देखिए, एक ये इसका जो स्टाइल है,

0: ये स्टाइल है इसका।
1: वाह,
0: इस साउंड के स्टाइल के हिसाब से भी एक कंपोजिशन बनाई थी मैंने,
1: और ये फिल्म म्यूजिक में बहुत सुनाई दे रही है।
0: बहुत बजाया मैंने इसको म्यूजिक में, मैंने अपने एल्बम में भी बजाया
1: जी।
0: एल्बम में जो कंपोजिशन था।

0: आजकल क्या है, सुनने से पहले उस्ताद बन जाते हैं, सीखने से पहले। अब ये देखिए, ये बांसुरी भी मैंने बनाई है।
1: ये छोटी वाली
0: आइए
1: जी।

0: ये कंपोजिशन उसमें बजाई।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: तो हर इंस्ट्रूमेंट का अपना रोल है, उसका अपना साउंड है, उसकी अपनी स्टाइल ऑफ प्लेइंग है।
1: बिल्कुल,
0: वो पता होना जरूरी है। और वो पता कैसे चलेगा? वो पता ऐसे चलेगा जब आप म्यूजिक सुनेंगे और स्टूडेंट बन के सुनेंगे,
1: बिल्कुल
0: उस्ताद बन के नहीं।
1: बहुत जरूरी है।

0: वाह वाह वाह वाह, इसकी शार्पनेस बिल्कुल अलग है।
1: क्योंकि सर आप जब एक म्यूजिशियन बनते हैं ना
0: जी,
1: तो मैंने शुरुआत में आपसे एक बात कही थी कि आर्टिस्ट, या आप आर्टिस्ट हो या किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको अपने काम से ईमानदारी रखनी चाहिए
0: जी।
1: और ईमानदारी आप तभी रख पाएंगे जब आप उसके धरोहर से, उसकी धरती से जुड़े हुए होंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उसका बेसिक पता होगा आपको,
0: समर्पण कितना गहरा है।
1: अब जैसे कि अगर मैं सिर्फ ये सोचूं कि मुझे बांसुरी बजानी है, बांस तो जंगल से आ जाएगा, बनाने वाला कोई और होगा, मैं तो सिर्फ बजाऊंगा, तो मेरा प्रेम दिखाई नहीं देगा उसमें। प्रेम तो तभी होगा जब आप जानते हो बांसुरी बनती कैसे है।
0: वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बात बोली आपने।
1: आप जो चीज बजा रहे हैं वो आप खुद बना सकते हैं क्या?
0: जी,
1: अगर मैं बांसुरी किसी से ले रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर वो बांसुरी बनाना बंद कर देगा मेरी बांसुरी छूट जाएगी। मैं डिपेंडेंट नहीं हूं, मेरा प्रेम है उनके साथ, मेरा रिश्ता है उनके साथ। मैं जिनसे बांसुरी ले रहा हूं या जो भी मुझे अपना इंस्ट्रूमेंट, अभी बड़ी प्यार से किसी ने भेजा, मैंने खोला भी नहीं अभी तक।
0: जी जी,
1: अब मैं खोलूंगा इसको, बांसुरी को सुनूंगा, देखूंगा, प्रेम करूंगा, मेरा नाता जुड़ गया अगर,
0: हाँ तो रख लेंगे,
1: रख लेंगे, बजाएंगे।
0: वाह,
1: पर अगर किसी ने प्रेम से भेजा है और वो इंस्ट्रूमेंट जो दिया है वो मेरे भाग्य है, वो बड़े भाग्य से कोई मिलता है आपको, अगर इंस्ट्रूमेंट अगर आपको कोई अच्छा दे रहा है और आपके पास अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, ये आप समझिए कि आपका बहुत बड़ा भाग्य है।
0: क्या प्यारी बात है जी,
1: गुरु मिलना सबसे बड़ा भाग्य है
0: जी।
1: उसके बाद दूसरा भाग्य है कि आपको इंस्ट्रूमेंट सही मिले।
0: जी जी,
1: अब इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है, हम बात करते रहेंगे तो 4 घंटे तक चलता रहेगा, पर सही इंस्ट्रूमेंट मिलना सबसे बड़ा भाग्य है गुरु मिलने के बाद। फिर आपको इंस्ट्रूमेंट से प्यार होना, उससे जुड़ना, तभी आपका साउंड 100 लोगों से अलग सुनाई देगा।
0: बिल्कुल, एक अलग पहचान।
1: सारे गामा पादा नहीं सा, आप सेम बजा रहे। अभी मैं आपको एक चीज, एक दो उदाहरण देता हूं
0: जी।
1: सपोज कीजिए सुबह कर आगे तोड़ी है
0: जी जी,
1: अब सारे गामा ऐसे भी बजता है थोड़ी, पर सिर्फ सारे ही गामा ही है, सिर्फ सरगम ही है।
0: वाह,

0: ये भी सारेगा में
1: जज्बात आ गए,
0: पर इसमें प्यार है।
1: हाँ बिल्कुल,
0: ये जो प्यार है ये सर लेके पैदा होता है आदमी
1: जी,
0: या अगर बताया जाता है संस्कार से बताया जाता है, अगर लेके नहीं आया होता हो तो जो लेके आया होता है उसकी लेयर जो होती है वो होती नहीं है। मतलब जो एक दुनियादारी की लेयर होती है ना, जो इनसेंसिटिविटी की लेयर है
1: जी जी,
0: वो नहीं होती है। तो उसका हिस्सा क्लियर है आत्मा का, तो वो ऑलरेडी महसूस कर रहा है। अब जो लेके नहीं आया संसार में, अब उसको अगर कोई सिखा रहा है, बता रहा है, पढ़ा रहा है, अब चार लोग हैं रूम में, एक को समझ में आ रहा है, एक को ज्यादा आ रहा है, एक को बहुत आ रहा है, एक को आ ही नहीं रहा। तो जिसको आ ही नहीं रहा उसे तब तक मेहनत करती रहनी पड़ेगी जब तक

0: वो लेयर हटे ना उसके ऊपर से, जब तक वो सेंस नहीं कर पाए
1: जी,
0: तो वो प्रैक्टिस जब तक उसकी तब तक ही चलेगी जब तक वो सेंस नहीं कर पाएगा।
1: यस,
0: तो ये संगीत का ये एक आधार है।
1: क्या बात है, बहुत ही सुंदर बातें हो रही हैं। और पारस जी, सबसे अच्छी बातें वो होती हैं जहां और ज्यादा बातों की गुंजाइश आगे के लिए छोड़ दी जाए।
0: क्या बात है,
1: तो आपके साथ जो महफिल है वो कभी खत्म होती नहीं है
0: जी।
1: इस महफिल को यहाँ रोकते हुए,
0: आपका आपका और इस जगह का जादू ऐसा है जी, मेरा खुद का मन नहीं करता जाने का, बट क्योंकि समय का भाव वैसा रहता है।
1: मैं समझ सकता,
0: आपका भी कार्यक्रम है आगे और मुझे भी कुछ कार्यक्रम में है जाना, सो मुझे दिल से एक बार फिर मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ
1: जी,
0: कि मुझे आपने इतनी प्रेम से और इतने सम्मान से याद किया और आमंत्रण किया यहाँ पे। ये मेरे लिए तो जैसा मैंने हमने शुरुआत की, दिस इज होम कमिंग बैक फॉर मी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इतनी आसानी से नहीं
0: जाने, नहीं जाने।
1: एक बहुत अच्छा सा पीस बजाइए
0: तो मैं
1: गाने की फरमाइश कीजिए।
0: हीरो,
1: देखिए फरमाइश भी आ गई।
0: ये तो फरमाइश नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट है।
1: अच्छा, कॉम्प्लीमेंट है, हीरो के गाने की फरमाइश।
0: हाँ, हीरो, मैं तो हीरो जैसा लग रहा हूं उनको शायद।
1: अच्छा। क्या बात है, क्या बात, कॉम्प्लीमेंट आया,
0: कॉम्प्लीमेंट है।
1: जी जी जी जी, तो हमारी टीम ने हीरो के गाने की फरमाइश की
0: जी,
1: और आपको भी हीरो कह दिया है।
0: मुझे निशब्द कर दिया आपने।
1: जी,
0: सो ये हीरो धुन
1: जी
0: स्पेशली डेडिकेशन टू यू,
1: शुक्रिया,
0: एंड टू जिन टीम की आप बात कर रहे हैं उन सबको एक दिल से मेरी तरफ से आप सबको डेडिकेशन है।

0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार।
1: थैंक यू सर। क्या आपको मेरे दिल से मैं आपको सुनाना चाहता हूँ।
0: जी जी जरूर।
1: वो है ओ माय गॉड का थीम,
0: कृष्णा थीम,
1: कृष्णा थीम
0: जरूर।
1: सो दिस अगेन वंस अगेन दिस डेडिकेशन टू ऑल द लिसनर्स जो हमें इतनी प्यार से सुन रहे हैं
0: जी,
1: और इतना प्रेम हमेशा देते आ रहे हैं
0: जी
1: हमारे आकाशवाणी के विविध भारती को,
0: बिल्कुल
1: आए सारे आप सब टीम को, यहाँ आए सारे आर्टिस्टों को, जो ये सारी बुनियाद है ये उन प्यारे लिसनर्स, ऑडियंस और संगीत प्रेमियों पे निर्भर है जो हमें इतना सारा प्यार देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: सो दिस स्पेशल डेडिकेशन टू देम।
0: बिल्कुल, शुक्रिया।
1: एक हमारे बड़े अच्छे भैया हैं, उनका नाम है संजय विद्यार्थी जी।
0: जी।
1: सो बहुत गुणी आदमी हो, तो बहुत पुरानी बात है, तो उन्होंने मुझे किस्सा सुनाया था। ही वॉज रिकॉर्डिंग वन सॉन्ग विद सम अनदर फ्लोटिस्ट, एक किसी बांसुरी वादक के साथ रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो वो रिकॉर्ड करते करते रिकॉर्डिंग हो गई, सब हो गया उनका, फिर जब मिक्सिंग कर रहे थे ना तो उनको एक अलग साउंड सुनाई दे रहा था गाने के बीच में, तो उन्होंने परेशान हो गए वो। फिर ना उस वक्त तो ये सॉफ्टवेयर वाला काम थी ना, डिजिटल था रहा था, तो वो ना एक एक चैनल मिक्सर में देख रहे हैं कि कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है। सो फिर फाइनली उनको एक फ्लूट चैनल पे वो साउंड सुनाई दिया। तो वो क्या साउंड था मैं आपको बताता हूँ
0: जी।
1: जैसे सपोज हो रहा है ना, ये कंपन जो हो रहा है इसको हम विब्राटो कहते हैं।
0: बिल्कुल।
1: अब जो उनको विब्राटो जैसे सुनाई दे रहा था वो साउंड गाने में कैसे दे रहा था मैं बताता हूँ आपको
0: जी।
1: तो विब्राटो इतना दिल से आ रहा था,
0: ये दिल से आ रहा था कि ये झटके से आ रहा था।
1: ये बड़ा कॉमेडी सीन था वो
0: जी।
1: जब उन्होंने सुनाया तो मैं पागल हो गया था।
0: अरे बाप।
1: खैर, ओ माय गॉड कृष्णा थीम फॉर
0: जरूर
1: एवरीवन।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं, आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

जी हाँ दोस्तों, शाम के 5 बज चुके हैं और हम उपस्थित हैं युवा श्रोताओं के साथ कार्यक्रम युवानी को लेकर के, और अभी से लेकर के शाम के 5:40 तक हम आपके साथ बने रहेंगे इस कार्यक्रम में। दोस्तों, अन्य दिनों की भांति आज भी आप सुनेंगे इस कार्यक्रम में कुछ लोकगीत तथा कुछ आपसे बातचीत भी होगी और हम आपसे कुछ चर्चा भी करेंगे। आज का हमारा चर्चा का विषय होगा राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी। जी हाँ दोस्तों, चर्चा तो बहुत ही आनंददायक है, सुनने को, बोलने को सभी तरह के मौकाएं तो हमें मिलेंगे ही,

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कुमुद अखौरी के स्वर में ये लोकगीत। उम्मीद करते हैं आपको ये गीत पसंद आए होंगे। और देखिए ना दोस्तों, जैसा कि कार्यक्रम के आरंभ में ही हमने आपसे चर्चा

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कुमुद अखौरी के स्वर में ये लोकगीत। उम्मीद करते हैं आपको ये गीत पसंद आए होंगे। और देखिए ना दोस्तों, जैसा कि कार्यक्रम के आरंभ में ही हमने आपसे चर्चा की थी कि आज का चर्चा का विषय है कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्र निर्माण हो या फिर अपने घर का निर्माण हो, समाज का निर्माण हो, किसी भी चीज़ के निर्माण के लिए यदि युवाओं को दायित्व दिया जाता है तो यह एक बहुत बड़ा सराहनीय प्रयास तो होता ही है, साथ ही साथ एक लंबी सी बात होती है कि युवा हैं तो यह कार्य आगे भी संपन्न हो जाएगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। क्योंकि यदि किसी व्यक्ति विशेष जिनकी अवस्थाएं यदि बहुत है और वह कार्य तो करते हैं लेकिन अपेक्षाकृत किससे, तो युवाओं की अपेक्षा वह कम कर पाते हैं, क्योंकि उनकी उम्र, सबों के पास अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं। और लेकिन खास करके युवा जो हैं, युवा युवा हैं और उनके पास काम करने की बहुत बड़ी क्षमताएं होती है और विभिन्न प्रकार से इन किसी भी कार्य को करने में वह सामर्थ्यवान हो पाते हैं। तो सचमुच किसी भी राष्ट्र के विकास और उसकी प्रगति में युवाओं की भूमिका रीढ़ की हड्डी के समान होती है। युवा शक्ति केवल देश का भविष्य ही नहीं बल्कि वर्तमान की भी आधारशिला है। उनके ऊर्जा, नवाचार और दृष्टिकोण से एक सशक्त और विकसित राष्ट्र का निर्माण होता है। जैसे कि आर्थिक विकास और उद्यमिता, युवा अपनी तकनीकी दक्षता, रचनात्मक सोच और जोखिम उठाने की क्षमता के माध्यम से नए व्यवसाय और स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। ये रोजगार सृजन करते हैं और राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण, जिससे फलस्वरूप क्या होता है, तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। नवाचार और तकनीकी प्रगति, नवाचार और तकनीकी प्रगति आज के युवाओं में तकनीकी रूप से अत्यधिक उन्नत हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहते हैं, अंतरिक्ष अनुसंधान और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में युवा वैज्ञानिक और इंजीनियर राष्ट्र को वैश्विक मंच पर अग्रणी बना रहे हैं। सामाजिक सुधार और जन जागरूकता, युवा सामाजिक परिवर्तन के सच्चे वाहक होते हैं और वे रूढ़िवादी परंपराओं को चुनौती देते हैं और लैंगिक समानता, पर्यावरण संरक्षण और शिक्षा के प्रसार जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर जन जागरूकता अभियान चलाते हैं। राजनीति और शासन में भागीदारी, लोकतंत्र की मजबूती के लिए युवाओं की राजनीति और शासन में सक्रिय होना आवश्यक होता है। जब युवा मतदान प्रक्रिया में भाग लेते हैं और नेतृत्व की भूमिका निभाते हैं तो नीतियां अधिक प्रगतिशील और भविष्योन्मुखी बनती है। शिक्षा और कौशल विकास, युवाओं द्वारा स्वयं शिक्षित होना और अपने कौशल को निरंतर अपग्रेड करना राष्ट्र की मानव पूंजी को मजबूत करता है। कुशल युवा ही बदलते वैश्विक मानकों के अनुसार देश की उत्पादकता बढ़ाते हैं। सचमुच तो राष्ट्र निर्माण में युवाओं की ऊर्जा और विचारों का

विचारों का अहम योगदान होता है। यदि हम यूं कह लें कि युवा के हाथों में बागडोर होता है तो शायद काम बहुत अच्छे ढंग से या सुचारू रूप से व्यवस्थित क्रम से चलता है और एक निश्चित अवधि पर या समय जो हमारी बाउंड्री लाइन होती है समय सीमा किसी भी कार्य को समाप्त करने का तो लगभग उससे पूर्व ही समाप्त हो जाता है, ऐसा भी देखने को समाज में मिलता है। अस्तु, कार्यक्रम में पुनः फिर हम आपसे बातचीत करेंगे दोस्तों, तब तक आपको हम सुनवाते हैं राखी कुमारी के स्वर में ये लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे अरविंद कुमार झा के स्वर में ये लोकगीत। अब सुनिए जयप्रकाश यादव के स्वर में।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे ममता ठाकुर के स्वर में ये लोकगीत, और उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये गीत पसंद भी आए होंगे। देखिए ना दोस्तों, ऐसे ही गीत सुनते और सुनवाते धीरे धीरे तो घड़ी की सुई आगे की ओर बढ़ती चली जाती है, और अब हम लोग कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे पहुँच चुके हैं। और कार्यक्रम में हम आपसे चर्चा कर रहे थे राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी विषय पर। इस पर जितनी भी चर्चाएं की जाएं दोस्तों, वह शायद समय के अनुरूप कुछ कम ही पड़ जाता है। अस्तु का आज इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप युवानी कार्यक्रम सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब सुनिए कुछ नए फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में आपको सुनवाते हैं फिल्म 777 चार्ली का यह गीत, नोविन पॉल एवं जावेद अली की आवाज में। बोल हैं कार्तिक नैनन दुबे के और संगीत निर्देशन नोविन पॉल का है।

सुनिए दोनों फिल्म का यह गीत अरमान मल्लिक की आवाज़ में, बोल हैं इरशाद कामिल के और संगीत निर्देशन शंकर एहसन का है।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म बंदूक और गुलाब से। गायक कलाकार हैं तान देवन एवं राजा सिन्हा। बोल हैं दिलीप बर्मन के और संगीत निर्देशन शशि कुमार एस का है।